जिसका सब आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होय उधारो। के वस्त जी नह जाई नित नित रख उधारो, तम संसार चरण लग तरिये।

की पांचों नारी पंचम हरख दिशा सुनावे बंगाल मद माधव गावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भात अष्ट पुत्र भैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल को

मालराग कौशक संगलाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशक उभारा खौखट औ पौरानद गाए अष्टमाल कौशक संगलाए पुन आयो हिंडोल पंचनार।

परमानंद पास करे आए चंद्रबिम मंगलन सुहाए सरस बाण औ आए बिनोदा गावे सरस बसंत समोदा अष्ट पुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कांगरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग में गावे पांचों संग बिरंगन लावे।

हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, नानक।

नानक विगसै वे परवाह, साचा साहिब साच नाई, पाखिया पाऊ अपार, आख है मंग है देह देह, दात करे दातार, फेर के अग्गे रखिए जित दिसै दरबार, मुहों के बोलन बोलिए

कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सतियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निदान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहिया समाई।

आई सबना जियां का एक दाता सो मैं बिसर ना जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा बिन पाणी के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा बिन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवे ता वात ना पुछे के कीता अंदर कीत कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई ना सुझे जे तिस गुण कोई करे सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने तत धवल आकाश सुने दीप लो पाताल सुने पोहे ना सकै काल नानक।

पछताई। कागज कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह कर्म विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने सुत हुए मन बुद्ध, मन्ने सग पवन की सो।

जे को मन जाने मन कोई, मन्ने मार्ग ठाक न पाई, मन्ने पथ स्यो प्रगट जाय, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होय, जे को मन जाने

पवह ना पिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावह दर गहमान पंचे सोह दर राजहान पंचा का गुर एक ध्यान।

संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तब लै उपर कीता पार धरती होर परै होर होर तिस ते भार

अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमा।

एक वार जो तुद पावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिय हाथ पैर तन दे पानी धोते उतरस खे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओ धोए भरिय मत पाप।

जगत तीरथ मल नाओ सब गुण के मैं नाही कोई बिन गुण की के भगत ना होई स्वास्थ आथ बाणी बरमाऊ सत सुहाण सदा मन चाऊ कमण सुवेला वखत कमण कमण थित कमण वार कमण से रुती माह कमण जित होवा आकार वेल न पाइया पंडती।

आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा आसुलू एक तात लेखा हुए ता लिखिए लेखे हुए विनाश नानक वड्डा आखिए।

पवह समुंद ना जानिए है समुंद साहा सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होमनी जे तिस मनो ना विसर है अंत न सिफती कहन ना अंत अंत न करने देन ना अंत अंत ना वेखण सुनन ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत अंत ना जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाऊं।

आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना कमाए केते मंगह जोद अपार केतियां गणत नहीं वीच।

एकेई के जिसनो बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह, अमूल गुण अमूल वपार, मूल वपारिये।

आखह पड़े करह वखियान, आखह बरमे आखह इंद, आखह गोपी तै गोविंद, आखह ईश्वर आखह सिद्ध, आखह केते कीते बुद्ध, आखह दानव आखह देव, आखह सुर नर मुन जन सेव, केते आखह आखन पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, केते कीते होर करे ता आख ना सकह के जेवड़ पा।

गावन पंडित पन्न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावह जोध महाबल सूरा गावह खाणी चारे गावह खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेख कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात शाह सहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पत चोली।

आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश दिशा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग बजोग दोए कार चलावह लेखे आवह भाग आदेश दिशा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन केले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवें चलावै जिव होवै पुर

आद अनिल अनाद अनाहक जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए पंडार जो किस पाया सो एकावार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सया देस आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी पौ लख होहे लख होवह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एक राहे पत पवड़िया चढ़िया होए अतीस सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नदरी पा

जोर जोर लागी मन मरन नह जोर जोर ना राज माल मन शोर जोर ना सुती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटे संसार जिस हाथ जोर कर वेख सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्म।

नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद बनोद कोड आनंद सर्म खंड की वाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे

राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारी गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठी।

कामन तुदनो पंडित पढ़नर खीसर जुग जुग वेदा नाली गामन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच्छ पाए आली गामन तुदनो रतन उपाए तेरे अठ सठ तीरथ नाली गामन तुदनो जोध महाबल सूरा गामन तुदनो खानी चारी गामन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले।

सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन अपाई कर कर देखे कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह सहा पत साहिब नानक रहन रजा।

मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धां पुरखां कियां वड्याईया, तुद मिन सिद्धी किनै ना पाईया, कर्म मिलै ना ही ठाक रहाईया।

खाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर शरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर सरन संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास, राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चितम है उद्दम, जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मह जंत उपाए, ता कारजिक आगे कर धरिया, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता, हुए न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पौ करिया, उडे उड़ आवे सह कोसा, तिस पासे बचरे शरिया, तिन कवन खलावे कवन चगावे, मन मह सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमय अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्याव

तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे है हर त्यावे है तुझ जी से जन जुग मह सुखवासी से मुकत भये जिन हर त्याया जी तिन तूती जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सह का जा लोई आसा महला चौथा तू कर

तोए सो कर राख वडाई तोए रहाउ विसे चसिया कड़िया पहरा थिती वारी माह होआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाउ सहस तव नैन नन नैन है तुह को सहस मूर्त नना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए किस दै चानन सब मह चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जो तिस भावे सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभत मनो

क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडाही पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मन

आओ साकत हर रस साधना जानिया इन अंतर हो मैं कंडा ही जो जो चल है चुभे दुख पावे जमकाल सह सिर डंडा ही हर जन हर हर नाम सुमानी दुख जन्म मरण भव खंडा ही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा ही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा ही जन नानक नाम।

कर पहला मोती ता मंदर उसरह रतनी ता होहि जड़ाव कस्तूर को अगर चंदन लीप आवे चाव मत देख भूला विसरह तेरा चेतना आवे नाव हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुरपूछ देखिया अवर नाही थां रहाओ धरती ता हीरे लाल जड़ती।

सिद्ध हुआ सिद्ध लाई रिद आखा आउ गुपत प्रगट हुए बैसा लोक राखे पाऊ मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे नाउ सुल्तान हुआ मेल लश्कर तख्त राखा पाऊ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाऊ मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे नाउ श्री राग महला पहला।

जित बोले पत पाईए सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूर्ख मन अजान जो तिस भाव है से भले होर के कहन बखान तिन मत तिन पत तिन धन पल्ले जिन हिरदै रहिया समाए तिन का क्या सा लाहना।

जित सेवियां सुख पाईए तेरी दरगाह चले मान रहाओ सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा नाम सुने है वखाण है जेतड़ी हौ तिन बलिहार जाऊ ता मन खीवा जानिए जा महली पाए थाऊ नाऊ नीर चंगे आईया सत परमल तन।

पास सो क्यों मनहु विसारिय जाके जी प्राण तिसविन सब अपवित्र है जेता पहनन खान होर गल्ला सब कूड़िया तुद भावे परवान श्री राग महल पहला जाल मोह कच मस कर

आर्य डर गया क्या हुई। श्री राग महला पहला गुणवंती गुण वीथर अवगुणवंती चूर जे लोड़ है वर कामणी नह मिलिय फिर कूर ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना पाइय फिर दूर मेरे ठाकुर पूरा तख्त अडोल गुरमुख पूरा जे करे पाइय साच अतोल रहाउ प्रभ हर मंदर सोहना तिस मेहमान कलाल मोती हीरा निर्मला कंचन कोटरी साल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान निहाल गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुलहा हर नाम गुर सर सागर बोहितो गुर तीरथ दरियाओ जे तिस भावे उजली सत सर नामन जाओ पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास पूरे थान सुहावण पूरे आस निरास नानक पूरा जे मिले क्यों घाटे गुणतास। श्री राग महला पहला आव भैणी गल मिले अंक सहेलड़िया मिलके करह कहानिया समरत कंत किया साचे साहिब सब गुण अवगण सब असहा करता सब को तेरे जोर एक शब्द बिचारी है जा तू ता क्या होर रहाओ जाए पुछो सुहागणी।

जाए। जो तिस भाणा सो थीऐ अवर ना करना जाए। गुरमुख वस्त वे साहीऐ सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणंजिया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास। श्री राग महल पहला धात मिलै फुन धात को, सिफती सिफत समाए। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, सच मिलै संतोखियां हर जप एक पाए। भाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाईऐ मुक्त पदार्थ तेन। रहाओ ऊचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाईऐ दर कर महल प्यार। गुरमुख मन समझाईऐ आत्म राम विचार, त्रिविध कर्म कमाईऐ आस अंदेसा होए। क्यों गुर बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए। निज कार महल पछाणिया नदर करे मल धोए, बिन गुर मैल ना उतरे बिन हर क्यों घर वास। एको शब्द विचारिया अवर त्यागै आस। नानक देख दिखाइए हौं सत बलिहारै।

गुरमुख नाम सलाहिया हौ मैं निवरी पाही रहाउ। सुन सुन गंडन गंडिया लिख पढ़ बुझह पार। तृष्णा अहनिस अगली हौ मैं रोग विकार। ओहो वे परवाहु अतोलवा गुरमुख कीमत सार। लख सियाणप जे करी लख सियों प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया

सरात गुरमुख हर धन जान सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान नित अहनस हर प्रभ सेविया सतगुर दिया नाम कूकर कूड़ कमाई है गुर निंदा पचै पचान परमे पूला दुख कणु जम मार करै खुलहान मनमुख सुख ना पाई है गुरमुख सुख सुभान ऐथै धंध पटाई है सच लिखत परवान हर

रूंग वड्डा मन माही क्यों दरगाह पत पाई जां हर ना वसै मन माही गुर मिलिया सुख पाई अगन मरे गुण माही मन री अहल सहर गुण सार।

गुर मिल पाओ जन लंगिया दरगाह पात परवान नानक ते मुख उजले धुनि उपजै शब्द निशान श्री राग महला पहला वणज करहो वणजारिहो वखर लिहो संभाल तैसी वस्त वसाही है जैसी निबह नाल अगे साहु सुजान है लैसी वस्त संभाल भाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर।

सुख होए, खोटे वणज बणजिए मन तन खोटा होए, ठाही फाथे मिर्ग ज्यो दुख घणो नेतरोए, खोटे पोते ना पवह तिन हर गुर दर्श ना होए, खोटे जात ना पत है खोट ना सी जस कोए, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए, नानक मन समझाई है गुर कै शब्द साला, राम नाम रंग रतिया पार ना भरम तिना, हर जप लाहा अगला निरपव हर मन माह, श्री राग महला पहला कर दूजा, तन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार, पबन केरे पत ज्यो ताल टुल जुम्मन हार, रंग मान लै प्यारिया

आपे रसिया आप रस, आपे रावण हार, आपे होवै चोलड़ा, आपे सेज पतार, रंग रत्ता मेरा साहिब, राव रहिया भरपूर रहाओ, आपे माछी मछली, आपे पानी जाल, आपे जाल मणकड़ा, आपे अंदर लाल, आपे बहु बिदरंगला, सखिए मेरा लाल, नेत्र वै सुहागनी, देख हमारा हाल।

की शोभा इत विधि जन्म गवाया रहाउ ऐब तन चिकड़ो एहो मन मींड को कमल की सार नहीं मूल पाई पौर उस्ताद नित भाखिया

को रह न परिये पाई। सोई काजी जिन आप तजिया, एक नाम किया आधारू, है पी होसी जाए न जासी, सच्चा सिरजन हारू। पांच वक्त निवाज गुजार हैं।

ओहे तू ओ ना का तेरे ओहे असी बोल बगाड़ बगाड़ है बोल तू नदरी अंदर तोल है तोल जह करनी तह पूरी मत करनी बाजो घटे घट प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए

क्या होए आपे सच भावे तिस सच अंधा कच्चा कच न कच रहाओ जाके रुख बिरख आराओ जेहि धात तेहा तिन नाओ फुल भाओ फल लिखिया पाए आप बीज आपे ही खाए कच्ची कंद कच्चा विच राज।

सच घट प्रगट होए, अंतर जिस कै सच वसै, सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना विछड़ है, तिन निज घर वासा होए, मेरे राम मैं हर बिन अवर ना कोए, सतगुर सच प्रभ निर्मला,

परस हुई ज्योति ज्योत समाई, जिनको पूर्व लिखिया तिन सत गुर मिलिया आई। मन भुखा भुखा मत करह, मत तू करह पुकार, लख चौरासी जिन सिरी सब सह दे आधार।

समाए, तिनका जन्म सफल है, जो चल है सतगुर पाई, कुल उधार है अपना, धन जणेंदी माए, हर हर नाम त्याई है, जिसनो कृपा करे रजाए, जिन्नी गुरमुख नाम त्याया, विचो हो आप गुआए, ओए अंदर हो बाहर हो निर्मले, सच्चे सच समाए, नानक आए से परवान है, जिन गुरमति हर त्याई, श्री राग महला तीजा, हर भगता हर तन रास है, गुरपूछ कर है वापार, हर नाम सलाहन सदा सदा, वखर हर नाम आधार, गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, हर भगता अतुट भंडार, भाई रे इस मन को समझाए, ए मन आलस क्या करहे, गुरमुख नाम त्याई रहाओ, हर भगत हर का प्यार है, जे गुरमुख करे विचार, पाखंड भगत ना होवे, दुबदा बोल खुआर, सो जन रलाया ना रले, जिस अंतर विवेक विचार, सो सेवक हर आखी है, जो हर राखे उरतार, मन तन सौंपे आगे धरे, हउ मैं विचो मार, तन गुरमुख सो

अन दिन नाम त्याय रहाउ। साची मैल ना लागई मन निर्मल हर त्याय। गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाय। गुर ज्ञान प्रचंड बुलाया अज्ञान अंधेरा जाय। मनमुख मैले मल परी हम

गुरमुख जप तप संजमी हर कै नाम प्यार गुरमुख सदा त्याई है एक नाम करतार नानक नाम त्याई है सबना जिया का आधार श्री राग महला तीजा मन मुख मोहे व्यापिया बैराग उदासी ना होए शब्द ना चीने सदा दुख हर दरगह पत खोए हौ मैं गुरमुख खोई है नाम रते सुख होए मेरे मन एहन सपूर रही नित आसा सतगुर सेव मोह परज लै घर ही माहे उदासा रहाऊ गुरमुख कर्म कमावै बिगसै हर बैराग आनंद अन दिन भगत करे दिन राती हौ मैं मारनी चंद वड्डे भाग सत संगत पाई हर पाया सहज आनंद सो साधु बैरागी सोई।

नाम निधान सद मन वसै महली पावे थाउ रहाउ मनमुख मन तन अंध है तिसनो ठौर ना ठाउ बहु जूनी पौंदा फिरै यूं सुनै घर काउ गुरमती घट चानना

पाय लाहा हर हर नाम मिले सहजी नाम समाय बिन गुर महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुर लोड लहु जिदू पाईए सच सोए असुर संगारे सुख वसे जो तिस पावे सो होए जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक जोत दोए मूर्ति शब्द मलावा होए श्री राग महला तीजा अमृत छोड़ बिख्या लोवाणी सेवा करह विडाणी अपना धर्म गवावह बूझह नाही अन दिन दुख विहानी मन मुख अंध ना चेत ही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा भजो हर सरनाई गुर का

पाई गुरमुख मेल मलाव श्री राग महला तीजा मनमुख कर्म कमावनी ज्यों दुहागण कन शिंगार सीजै कंत ना आवई नित नित होए खुआर पिरका महल ना पावई ना दिसै घर बार भाई रे एक मन नाम त्याए संता संगत मिल रह जप राम नाम सुख पाए रहाउ गुरमुख सदा सुहागणी पिर राखिया उर धार मिठा बोलह निव चलह सेजै रवै पतार शोभावंती सुहागणी जिन गुर का हित अपार पूरै भाग सतगुर मिले जां भागै का उदौ होए अंतरों दुख भ्रम कटियै सुख प्राप्त होए गुर कै भाणै जो चलै दुख ना पावै कोई गुर के पाणी विच अमृत है सहजी पावै कोई जिन्ना प्राप्त किन पिया हों मैं विचों खोई नानक गुरमुख नाम त्याई है।

फिरे। गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई है, जे लोचै सब कोई रहाऊ।

अंते हुई सखाई, अपने मनचित कह कहाई, बिन गुर आप ना जाई। हर जीव दाता भगत वच्छल है, कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा सुत दे प्रभ आपे, गुरमुख दे वडियाई। श्री राग महला तीजा, तन जननी जिन जाया, तन पिता प्रधान, सतगुर सेव सुख पाया, विचों गया गुमान। दर सेवन संत जन खड़े, पायन गुणी निदान। मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए, गुर का शब्द मन वसै, मन तन निर्मल होए। रहाउ कर कृपा घर आया, आपे मिलिया आई। गुर शब्दी सालाही है, रंगे सहज सुभाई। सच्चे सच समाया, मिल रह ना विछड़ जाई। जो किछ करना

रे गुरमुख बूझे कोए बिन बूझे कर्म कमावणे जन्म पदार्थ खोए रहाओ जिन्नी चाखिया तिन्नी साध पाया बिन चाखे भरम भुलाए अमृत साचा नाम है कहना कछु ना जाए पीवत हूं प्रमाण भया पूरा शब्द समाए आपे दे ता पाई है

कमाए। जात सत संयम नाम है, विण नाम है निर्मल ना होए। पूरे भाग नाम मन वसै, शब्द मिलावा होए। नानक सहजे ही रंग वरतदा।

मुख द्वार, गुर प्रसादी मिल रहा सच नाम करतार। एह मनुआ अत सबल है, छड़े ना कित उपाय, दूजे पाए दुख नाए।

गुवाई, मनमुख कर्म कमावनी, दरगाह मिले सजाई, मन रे दूजा भाव चुकाए, अंतर तेरे हर वसै, गुर सेवा सुख पाई, रहाऊ सच बाणी सच शब्द है, जां सच धरे प्यार।

सदा हर वेख हदूर, जन्म मरण दुख पर हर, शब्द रहे आपरपूर, रहाउ सच सलाहन से सच्चे, सच्चा नाम आधार, सच्ची कार कमावणी, सच्चे नाल प्यार, सच्चा साहु वर्तदा, कोई ना मेटन हार, मनमुख महल ना पाएनी, कूड़ मुठे कूड़े आर, हम मैं करता जग मोआ, गुर बिन घोर अंधार।

अगली मनवा रज्जा सहज सुपाई गुर का शब्द अमृत है जित पीते तिख जाय इहो मन साचा सच रत्ता सच्चे रहया समाय आखण वेखण बोलना शब्दे रहया समाय बाणी वजी चहु जुगी सचो सच सुनाय हम मैं मेरा रह गया सच्चे लया मलाय तिनको महल हदूर है जो सच रहे लिवलाय नदरी नाम ते आई है विन कर्मा पाया ना जाय पूरे भाग सत संगत लह सतगुर भेटै जिस आय अन दिन नामे रत्या दुख बिखिया विचों जाय नानक शब्द मलावड़ा नामे नाम समाय श्री राग महला तीजा अपना भौ तिन पायुन जिन गुर का शब्द बीचार सत संगति सदा मिल रही सच्चे के गुण सार दुबधा मैल चुकाइयन हर राखिया उर तार।

शब्द सवारन हार रहाव सच्चा शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मलाय अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाय ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ ना पाय जिनको पूर्व लिखिया सतगुर पेटिया तिन आय बिन नावे सब डुमणी दूजे पाए खवाय तिस बिन घड़ी ना जीवंदी दुखी रहन विहाय परम पुलाना अंदोला फिर आवे जाय नदर करे।

रहाउ जिन कर कारण धारिया सोई सार करे गुर कै शब्द पछाणी है जाय आपे नदर करे ते जन शब्दे सोहणे तित सच्चे दरबार गुरमुख सच्चे शब्द रत्ते आप मेले करतार गुरमति सच सलाहना जिस दा अंत ना पारावार घट घट।

आई अनंत निरावह फिर अपना सहजी सच समाई रहाउ शब्द रतियां सुहागणी सच्चा शब्द सिंगार हर वर पाइन घर अपने गुर कै हित प्यार सेज सुहावी हर रंग रवे भगत भरे भंडार सो प्रभ प्रीतम मन वसै जे सब सह दे आधार फिर सलाह ने अपना तिनकै हों सद बलिहार।

सोई गुरमुख बाणी ब्रह्म है शब्द मिलावा होय नानक नाम संभाल तू जित सेवे है सुख होय श्री राग महला तीजा जग हों मैं मैल दुख पाया मल लागी दूजे पाए मल हों मैं धोती किवें ना उतरे जे सो तीरथ नहाए।

का निर्मल हुए मनमुख हर हर कर थके मैल ना सकी धोए रहाव मन मैल भगत ना होवे नाम ना पाया जाय मनमुख मैले मैले मोए जासन पत गुआय गुर प्रसादी मन वसै मल हऊ मैं जाए समाय ज्यों अंधेरै दीपक बाली है त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाय हम किया हम करहेंगे हम मूर्ख गावार करने वाला विसरिया दूजे पाए प्यार माया जेवड दुख नहीं सब भव थके संसार गुरमती सुख पाई है सच नाम उरतार जिसनो मेले सो मिले हौ तिस बलिहारै जाऊं ए मन भगती रत्या सच बाणी निज थां मन रत्ते जिहवा रत्ती हर गुण सच्चे गाव नानक नाम ना विसरै सच्चे माहि समाव श्री राग महला चौथा घर पहला मैं मन तन बिरहो अत अगला क्यों प्रीतम मिले घर आए जां देखा प्रभ अपना प्रभ देखिया दुख जाए जाए पुछा तिन सजना प्रभ कित बिद मिले मलाए मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोए हम मूर्ख मुग्ध शरणागति कर कृपा मेले हर सोए रहाउ सतगुरु दाता हर नाम का प्रभ आप मलावे सोए सतगुर हर प्रभ बुझिया गुर जीवड अवर ना कोए हौ गुर सरनाई टह पवा कर दया मेले प्रभ सोए मन हठ किने ना पाया कर अपाव थके सब कोए सहस सियाणप कर रहे मन कोरै रंग ना होए कूड़ कपट किने ना पायो।

खेल मलाई। हो सतगुर बिट्टो वारिया जिन हर प्रभ दी याद खाई। रहाओ हुए नमाणी तह पवा पूरे सतगुर पास। निमाणिया गुरमान है गुर सतगुर करे सबास। हौ गुर सालाहे न रजू मैं मेले हर प्रभ पास। सतगुर नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए। बिन भागा दर्शन ना थी भाग हीन बह रोए। जो हर प्रभ भाणा सो थिया तुर लिखिया ना मेटै कोए। आपे सतगुरे आप हर आपे मेल मलाए। आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए। सब जग जीवन जग आप है नानक जल जल है समाए। श्री राग महला चौथा रस अमृत नाम रस अत भला। कित बिद मिले रस खाए जाए पुछो हो सोहागनी। तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए। ओए वे परवाह ना बोलनी हो मल मल तुआ तिन पाए। पाई रे मिल सज्जन हर गुण सार। सज्जन सतगुर पुरख है दुख कड्डै हो मैं मार। रहाव गुरमुखियां सुहागनी तिन दया पई मन आए। सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए। से वड़ भागी वड़ जानी है जिन हर रस खादा गुर पाए। एहो हर रस वण तिन सबत है भाग हीन नहीं खाए। बिन सतगुर पल्ले ना पवे मन मुख रहे बिललाए। ओए सतगुर आगे ना निमह ओना अंतर क्रोध बलाए। हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए। आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए। सब तन मन हरिया होया नानक हर वस्या मन सोए। श्री राग महला चौथा दिन स चढ़ै फिर आथवै रैन सबाई जाए। आव कटै नर ना बुझै नित मूसा लाज टुकाए। गुड़ मिठा माया पसरिया मनमुख लग माखी पचै पचाए। भाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए। पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोए ना होए। रहाओ गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे सरनाए। उन्नी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए। गुरमुख दरगाह मनी है हर आप लए गल लाए। गुरमुखा नो पंथ प्रगटा दर ठाक ना कोई पाए। हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए। अनहद धुनी दर वज दे दर सच्चै सोभा पाए। जिन्नी गुरमुख नाम सलाहया तिन्ना सब को कह सबास। तिनकी संगत दे प्रभ मैं जाचक की अरदास। नानक भाग वड्डे तिन्ना गुरमुखा जिन अंतर नाम परगास। श्री राग महला पंजवा कर पहला क्या तू रत्ता देख कै पुत्र कलत्र शिंगार। रस भोग है खुशियां करह माण है रंग अपार। बहुत करह परमाइसी वरत है हुए अपार। करता चेतना आवई मन मुख अंध गुवार। मेरे मन सुख दाता हर सोए गुर प्रसादी पाईए। कर्म प्राप्त होए। रहाव कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक। हैवर गैवर बहु रंगे किए रथ अथाक। किस ही चेतना पावे बिसरिया सब साक। सिरजनहार पुलाया विण नावै ना पाक। लेंदा बद दुआए तू माया करह एकत। जिसनो तू पतिया एंदा सो सन तुझै अनित। अहंकार करह अहंकारिया व्यापिया मन की मत। इन प्रभ आप पुलाया
ना तिस जात ना पत, सतगुरु पुरख मलाया, इको सज्जन सोए, हर जन का राखा एक है, क्या मानस हों मैं रोए, जो हर जन पावे सो करे, दर फेर ना पावे कोई, नानक रत्ता रंग हर, सब जग मह चानन होए, श्री राग महला पंजवा, मन बलास बहु रंग घना, दृष्ट भूल खुशियां, छत्र धार बादशाहियां, विच सहसे परियां, भाई रे सुख साध संग पाया, लिखिया लेख तिन पुरख बधाते, दुख सहसा मिट गया रहाव, जेते थान थनंतरा, तेते भावे आया, तन पाती वड भूमिया, मेरी मेरी कर परिया, हुक्म चलाए निसंग हुए, वरतै अफरिया, सब को वसगत कर लयोन, बिन नावे खाक रलिया, कोट ते तीस सेवका, सिद्ध साधक दर खरिया, ग्रंबारी वड साहबी, सब नानक सुपन थिया, श्री राग महला पंजवा, पलके उठ पपोलिया, बिन बुझे मुग्ध अजान, सो प्रव चित ना आयु, छूटैगी बेबान, सतगुर सेती चित लाए, सदा सदा रंग मान, प्राणी तू आया लाह लैन, लगा कितक फकड़े, सब मुकदी चली रैन, रहाउ कुदम करे पस पंखी।

माया का रंग सब फिक्का जातु बिनस निदान जा कै हृदय हर वसै सो पूरा प्रदान साधु की हो रेणुका अपना आप त्याग अपार सियाणप सगल छड गुर की चरणी लाग तिसह प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होए भाग तिसह प्राप्त पाई हो जिस देव प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिनसै हम मैं ताप नानक कौ गुर भेटिया बिनसे सगल संताप श्री राग महला पंजवा एक पछाणु जी का इको रखन हार एक सका मन आसरा इको प्राण आधार।

मात पिता एकस की मन टेक है, जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनोह ना विसरै, जिन सब किस वस कीता घर इको बाहर इको थान तनंतर आप, जी जंत सब जिन किए आठ पहर तिस जाप, एकस सेती रत्या ना हुवी सोग संताप, पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोई, जियो पिंड सब तिसका जो तिस भावै सो होए, गुरपूरै पूरा भया जप नानक सच्चा सोए, श्री राग महला पंजवां जिन्ना सतगुर स्यों चित लाया, से पूरे प्रधान जिनको आप दयाल होए, किन उपजै मन ज्ञान जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम त्याए, सर्व सुखां सुख उपजह दरगाह पैंदा जाए, रहाऊ जन्म मरण का पाऊ गया पाऊ भगत गोपाल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल, जन्म मरण की मल कटी है गुरदर्शन देख निहाल, थान थनंतर रव रहया पार ब्रह्म प्रभ सोए, सबना दाता एक है दूजा नाही कोई, किस सरनाई छुट्टी है कीता लोड़े सो होए, जिन मन वसया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिनकी शोभा निर्मली प्रगट भई जहान, जिन्नी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान, श्री राग महला पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसया मन आई, अंतर ज्योत परगासिया एक सस्यों निवलाई, मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखिया पाई, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाय, मेरे मन गुर शब्दी सुख होए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोई रहाव, मन कियां इच्छा पूरिया पाया नाम निदान, अंतर जामी सदा संग करने हार पछान, गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान, काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभमान, पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम, आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरवान, सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान, भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार, हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार, आठ पहर गुणसार दी रत्ती रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार, श्री राग महला पंजवा पूरा सतगुरु जी मिले पाईए शब्द निदान, कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम, जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान, मेरे मन प्रभ सरनाई पाए हर बिन दूजा को नहीं, एको नाम त्याए रहाव, कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाह, वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द वसाह, कर सेवा सुख सागर है सिर शाह पातशाह, चरण कमल का आसरा दूजा नाही थाव, मैं धर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाव, नीमाणिया प्रभ मान तू तेरे संग समाव, हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद, जी प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद, नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद, श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच सियो, मरै ना आवै जाई ना वे छोड़िया विछड़ै,
सब मह रहे आसमाय। दीन दर्द दुख भंजना सेवक कै सत पाय। अचरज रूप निरंजनु गुर मेलाया माय। भाई रे मीत करहो प्रभ सोय। माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोय। रहाउ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार। सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार। बालक बिरध ना जानिए निश्चल तिस दरबार। जो मंगिए सोई पाईए निधारा आधार। जिस पेखत किल विख हिरह मन तन होवै शांत। एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत। गुण निदान नवतन सदा पूर्ण।

हार करे दया प्राबे आपनी एक निमख ना मनो वसार रहाउ गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कटन हार बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्थार सहजे सिफती रत्या भवजल उतरे पार तीर्थ वर्त लख संजमा पाइय साधु धूर।

सदा सदा आराधी है। एहा मत वसेख मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख। श्री राग महला पंजवां संत जन हो।

नदर निहाल कर्म प्राप्त तिस हुए जिसनो हुए दयाल मेरे मन गुरजे वड्यावर ना कोए दूजा थाओ ना को सुजे गुर मेले सच सोए रहाव सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए गुर चरनी जिन मन लगा सेवड भागी माए गुरदाता समरथ गुर गुर सब मह रहया समाए गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा लई तराय कित मुख गुर सालाही है कर्म कारण समरथ से मथे निचल रहे जिन गुर धारिया हथ गुर अमृत नाम पी आलिया जन्म मरण का पथ गुर परमेश्वर सेवया पै भंजन दुख लथ सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अग खंड जिन गुर सेवया अपना जमदूत ना लागे डंड गुर नाल तुल ना लगे खोज दिथा ब्रह्मांड नाम निधान सतगुर दिया सुख नानक मन मेहमंड श्री राग महला पंजवां मिठा करके खाया कौड़ा उपजया साध भाई मीत सुरद किए बिख्या रचया बाद जांदे बिलम ना होवई विण नावै विस्माद मेरे मन सतगुर की सेवा लाग जो दिसै सो विनसना मन की मत त्याग रहाओ ज्यों कूकर हरकाया तावै दह दिस जाय लोभी जंत ना जाने पाख अपाख सब खाय काम क्रोध मद व्यापिया फिर जोनी पाए।

हर जन हर लिव उदरी नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवां कर दूजा गोयल आया गोयली क्या।

परौहणी उठ चल सह प्रभात क्या तू रत्ता गिरस्त स्यों सब फुल्ला की बागात मेरी मेरी क्या करह जिन दिया सो प्रभ लोड़ सर पर उठी चलना छड जासी लख करोड़ लख चौरासी भ्रमतिया दलब जन्म पायो ए नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो ए श्री राग महला पंजवा पिचर वसह सहिलड़ी जिचर साथी नाल जा साथी उठी चलिया ता तन खाकू राल मन बैराग भया दर्शन देखने का चाऊ तन सो तेरा थान रहाओ जिचर वसया कंत घर जियो जियो सब कहात

किसह त्यागु मन मेरे सर्ब को आधार। गुर के चरण मन मह त्याई छोड़ सगल सियाणपा साच शब्द लिव लाए रहाओ। दुख कलेश ना पौ ब्यापै गुरमंत्र हृदय होए। कोट जतना कर रहे गुरबिन करियो ना कोई। देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहे। हौ तिनके बलिहार ने जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन वसै साच हर का नाऊ। सेवड भागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवां संच हर धन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार। जिन तो साज सवारिया हर सिमर होए उदार। जप मन नाम एक अपार प्राण मन तन जिनह दिया। हृदय का आधार रहाओ काम क्रोध अहंकार माते व्याप्या संसार। पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार।

जिस दे प्रभ निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल

मान अपमान मंदे सो सेवक नाही, तात समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन एहु कीर्त करला, कथन कहन ते मुक्ता

वडियाइया पूरब लिखे आ पाए सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक सचो सच वखाणीए सचो बुद्ध बबेक सर्ब निरंतर रव रहिया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा गुर परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब शार मेरे साजन हर हर नाम संभाल साधु संगत मन वसै पूर्ण होए काल रहाउ गुर समरथ अपार गुर वडभागी दर्शन होए गुरिया गोचर निर्मला गुर जीवड अवर ना कोई गुर करता गुर करनहार गुरम

अपार गुरी उच्चा अगम अपार गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार जितड़े फल मन बांची है तितड़े सत गुर पास

पहला घर पहला अष्टपदियां आख आख मन वावना ज्यों ज्यों जा पैवाई जिसनो वाहे सुनाई है सो केवड़ कित थाई आखण वाले जे तड़े।

कीतड़ा लिखना जाने कोई जे सौ साहिर मिलिए तिल ना पुजावह रोई कीमत किने ना पाईया सब सुन सुन आख सोई पीर पै कामर फालक साधक सुहदे और शहीद सेख मसायक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद बरकत तिन को अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ ना साजे पुछ ना ढाही

तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुर शब्दी शिंगारियां तन मन पिर कै पास दुए कर जोड़ खड़ी तकै सच कह अरदास लाल रत्ती सच पै वसी पाए रत्ती रंग।

खेल मलाओ शब्द रती मन वेदया हों सद बलिहार जाओ सा धन रंड ना बैसई जे सतगुर माई समाई फिर री सालू नौ तनु साचो मरै ना जाय नित रवै सोहागणी

दीपक शब्द विगासिया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार सुबा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पेर पुरख ना जाने साचे गुर कह हित प्यार निस अंधारी सुतिए क्यों फिर बिन रैन विहाय अंक जलो तन जालियो मन धन जल बल जाय जा धन कंत ना राविया ता बिरथा जो बन जाय सेजै कंत मेहलड़ी सूती बूझ ना पाए हों सुती पिर जागना किस को पूछो जाय सतगुर मेली पै वसी

शब्द पछाणिए साच रते गुरवाक तित तन मैल ना लगई सच कर जिस ओताक नदर करे सच पाई है।

रहाउ। सब जग बांधु काल को बिन गोर काल अपार, सच रते से उबरी दुबदहा छोड़ विकार। हौ किन कै बलिहार ने दर सचै सत्यार, सी चाने ज्यो पंखिया जाली बदक हाथ। गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ, बिन नावे चुन सुटिए कोई ना संगी साथ। सचो सच्चा आखिए सच्चे सच्चा थान, जिन्नी सच्चा मन्या तिन मन सच ध्यान। मन मुख सूचे जानिए है गुरमुख जिन्ना ज्ञान। सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मलाए, साजन मिले सुख पाया जमदूत मोए बिख खाए। नावै अंदर हौ वसा नाओ वसै मन आए, बाज गुरु गोबार है बिन शब्द बूझ ना पाए। गुरमति परगास हुई सच।

सोह प्रभ जानिए साचो साचे नाई सा तन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग महली महल बुलाइए सो पिर रावे रंग सच सुहागन सा भली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंघर जाऊं बन मह भूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाऊं नाम भूली जे फिरा फिर फिरे आऊं जाऊं पुछो जाए पंधाऊआ चले चाकर होए राजन जाने अपना दर कर ठाक ना होए नानके को रव रहया दूजा।

निर्मल साचो मन वसे सो जाने अब पीर सहजे ते सुख अगलो ना लागे जम तीर पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए निर्मल साचा एक तू होर मैल भरी सब जाए रहाओ हर का मंदर सोना किया करने हार राव सस दीप अनूप ज्योत त्रिभवन ज्योत अपार हाट पटन गढ़ कोट।

प्रगत सब जानिए जे मन राखे ठाई ऐसा सतगुर जे मिले ता सहजे लई मलाई कस कस वट्टी लाइए परखे हित चित लाए खोटे ठहर ना पाईनी खरे खजाने पाए आस अंदेसा।

दुख अगला मन मुख बूझ ना होए सुख दुख सम कर जानिए शब्द भेद सुख होए वेद पकारे वाचिए वाणी ब्रह्म व्यास मुन जन सेवक साधिका नाम रते गुणतास सच रते से जिन गए हौ सद बलिहारे जास चहु जुग मैले मल भरे जिन मुख नाम ना होए भगती पाए विहूणिया मुह काला पत खोए जिन्नी नाम वसारिया अवगण मुठी रोए खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए आप पछाणे घर वसे हौ मैं तृष्णा जाए नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए श्री राग महला पहला सुन मन भूले बावरे गुर की चरनी लाग हर जप नाम त्याए तू जम डर पै दुख भाग दुख घणो दोहागनी क्यों फिर रह सुहाग भाई रे अवर नाही मैं थाऊं मैं तन नाम निदान है गुर दिया बल जाऊं रहाऊ गुरमत पत साबास तिस तिस कै संग मलाऊं तिस बिन घड़ी ना जीवन।

ज्यो कलर की पीत तब लग महल ना पाई है जब लग साच ना चीत शब्द रपै घर पाई है।

शब्द सलाही मन वसै होमै दुख जल जाऊं सहजे होए मिलावड़ा साचे साच मलाऊं शब्द रत्ते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार नाम सलाहन सद सदा हर राख है उरतार सो क्यों मनहु विसारिय सब जिया का आधार शब्द मरे सो मर रह फिर मरे ना दूजी वार शब्द ही ते पाईए हर नामे लगे प्यार बिन शब्द जग भूला फिरे मर जन्मे वारु वार सब सलाह है आपको बड़ो बड़ेरी होए गुर बिन आप ना चीनी है कहे सुने क्या होए नानक।

जाने सुख से जड़ी बिन पिर बाद सिंगार दुख घणो दुहागणी ना कर सेज पतार मन रे राम जपो सुख होए बिन गुर प्रेम ना पाई है।

सच माने पिर से जड़ी गूड़ा हित प्यार गुरमुख जान सियाणी है गुर मेली गुण चार सच मिन वर कामणी फिर मोही रंग लाए मन तन साच विगसिया कीमत कहण ना जाए हर वार घर सुहागनी निर्मल सच नाए मन मह मनुआ जी मरे तां पिर रावे नार इकतता गहराल मिले गाल मोतियन का हार संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार खिन मह उपजे खिन खपै।

तोली है, कथन ना पाया जाए, व्यापारी बन जा रिया, आए वजोन खाए, कार कमाव है सच की, लाहा मिलर जाए, पूंजी साची गुर मिले, ना तिस तिल ना तमाए, गुरमुख तोल तोलाए सी, सच तराजी तोल, आसा मनसा मोहनी, गुर ठाकी सच बोल, आप तलाए तोल सी, पूरे पूरा तोल, कथन कहन ना छुट्टी है, ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच ना पाई है, बिन हर भगत प्यार, नानक नाम ना विसरे, मेले गुर करतार, श्री राग महला पहला, सतगुर पूरा जे मिले, पाईए रतन विचार, मन दी जय गुरे अपनी, पाईए सर्ब प्यार, मुक्त पदार्थ पाईए, अवगण मेटन हार, पाई रे, गुर बिन ज्ञान ना होए, पूछो हो ब्रह्मे नारद, वेद व्यास कोई रहाओ, ज्ञान ध्यान तुन जानिए, अकथ कहावे सोए, सफलियो बिरख हरियावला, शाम कनेरी होए, लाल जवे हरमान की, गुर पंडारे सोए, गुर पंडारे पाईए, निर्मल नाम प्यार, साचो वखर संचिए, पूरे कर्म अपार, सुख दाता दुख मेटनो, सतगुर असुर संगार, पवजल बिखम डरावनो, ना कंदी ना पार, ना बेड़ी ना तुलहड़ा, ना तिसवान्य मलार, सतगुर पै का बोहिथा, नदरी पार उतार, एक तिल प्यारा विसरे, दुख लागे सुख जाए, जिहवा जलो जलावनी, नाम ना जपै रसाए, घट बिरसै दुख अगलो, जम पकड़ै पछताए, मेरी मेरी कर गए, तन तन कलत न साथ, बिन नावे तन बाद है, भूलो मार गयाथ, साचो साहिब सेवी है, गुरमुख अकथो काथ, आवे जाए पवाई है, पये किरत कमाए, पूर्व लिखिया क्यों मेटी है, लिखिया लेखर जाए, बिन

कै बिन जल मरन तने मन रे क्यों छूट है बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहया बख्शे भगत भंडार रहाव रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यो अधिको त्यो सुख घणो मन तन शांत शरीर बिन जल घड़ी ना जीवै प्रभ जाने अब पीर रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चात्रक में सर पर थल हरियावली एक

खवे दुध कौ खपण ना दे आपे मेल वशुन्या सच वडे आई दे रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मन मुख सो जी ना पवे गुरमुख सदा हजूर मन

गुरमत हुए ता पाईए, सच मिले सुख होए, सच्चा नेहो ना टुटई, जे सतगुर भेटै सोई, ज्ञान पदार्थ पाईए, त्रिभवन सोजी होए, निर्मल नाम ना विसरै,

माया परम भुलाई परम भुली दोहागणी ना फिर अंक समाय रहाउ भूली फिरै दसंतरी भूली ग्रह तज जाय भूली डूंगर थल चढ़ै पर मैं मन डोलाय तुरह विछुनी क्यों मिलै गर्भ मुठी बिल लाय बिछड़िया गुरमेल सी हर रस नाम प्यार साच सहज सोभा कणी हर गुण नाम आधार ज्यों पावे त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ भुली है भेखी बहुत अभमान तीरथ नाता क्या करे मन मह मैल गुमान गुर बिन किन समझाई है मन राजा सुनतान प्रेम पदार्थ पाई है गुरमुख तत विचार सा तन आप गवाया।

सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसिया हूं मैं विचों खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए कर्म मिले ता पाईए आप ना लया जाए गुर की चरनी लग रहो विचों आप गवाए सच्चे सेती।

मैं तुझ बिन अवर न पावई, तू पावह सुख होए रहाउ। नाम सलाही रंग सिउ, गुर कै शब्द संतोख। जो दिसै सो चलसी,

तड़ी गुर बिन बूझ ना होए नाम वडाई जे मिले सच रपै पत होए जो तुद भावे से भले खोटा खरा ना कोई गुर सरनाई छुट्टी है मन मुख खोटी रास अष्ट धात पातशाह की करिए शब्द विगास आपे परखे पारखू पवै खजाने रास तेरी कीमत ना पवै सब डिठी ठोक बजाए कहने हाथ ना लबई सच टिकै पत पाए गुरमत तू सलाहना होर कीमत कहन ना जाए जित तन नाम ना पावई तित

साजिए एक चानण तेहो लोए कर्म मिले सच पाईए तुर बख्शना मेटे कोई साध मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाई अकथ कथा विचारिए जे सतगुर माहि समाए पी अमृत संतोखिया दरगह पैंदा जाए कट कट वाजे किंगुरी अन दिन शब्द सुपाए बिरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए नानक नाम ना विसरे छूटे शब्द कमाए श्री राग महला पहला चित्ते दिसह धौल हार बग्गे बंक द्वार कर मन खुशी उसारिया दूजे हित प्यार अंदर खाली प्रेम बिन तह ढेरी तन शार पाई रे तन तन साथ ना होए राम नाम तन निर्मलो गुरदात करे प्रभ सोए रहाओ राम नाम तन निर्मलो।

मन मुख जाने अपने तिया पूत संजोग नारी देख भगासी है नाले हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले अहनस हर रस भोग चित चले वित जावणु साकत डोल डोलाय बाहर ढूंढ विगुची है कर्म है वस्त सुथाय मन मुख हो मैं कर्मुसी गुरमुख पल्ले पाए साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण रखत बिंद का इहो तनु अग्नि पास पिराण पवन कै वस देवरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगी है मुआ ना लोड़े कोई सुख जीवन तिस आखी है जिस गुरमुख वस्या सोई नाम विहूणे क्या गणी जिस हर गुर दर्स ना होए ज्यो सुपने निस भुली है जब लग निंदरा होए इउं सरपन कै वस जियड़ा अंतर हों मैं दोए गुरमत होए विचारी है सुपना इहो जग लोए अगन मरे जल पाई है जो बारक दूदे माए बिन जल कमल सोना थी है बिन जल मीन मराए नानक गुरमुख हर रास मिले।

जो आया सो चल सी अमर सो गुर करतार पी सच्चा सालाहना सच्चे थान प्यार डर कर महला सोहनी पक्के कोट हजार हस्ती कोड़े पाखरे लश्कर लख अपार किस ही नाल ना चलिया खप खप मुए असार सोयना।

बिन सतगुर को मग ना जाने अंधे ठौर ना काई हर सुख दाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई पेई अड़ै जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया अन दिन भगत करह दिन राती हम मैं मोच काया जिस स्यो राता तै सो हुए सच्चे सच समाया आपे नदर करे पाहु लाई गुर शब्दी बीचार सतगुर सेवे सहज उपजे हम मैं तृष्णा मार हर गुण दाता सद मन वसे सच रखिया उरतार प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाई नाम निधान हर मन वसे हो मैं दुख सब जाई सतगुर शब्द सुनाया हो सद बलिहारे जाऊं अपने मन चित कह कहाई बिन गुरे आप ना जाई हर जियो भगत वशल सुख दाता कर कृपा मन वसाई नानक सु

रहाउ। बिन सतगुर प्रतीत न आवई, नाम न लागू पाउ, सुपनह सुख न पावी, दुख मह सवै समाई। जे हर हर कीचै बहुत लोचिए,

हर का पाणा भगती मन्या से भगत पए दर थाए गुर शब्द दड़ावे रंग स्यों बिन कृपा लया ना जाए जे सौ अमृत नीरिय पी बिख फल लागे ताए से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुर नाल प्यार सतगुर का पाणा कमावंदे बिख होमै तज विकार मन हठ कितै उपाय ना छूटिय सिमरत शास्त्र सुध हो जाए मिल संगत साधु उबरे गुर का शब्द कमाए हर का नाम।

गुर कै पाणे जे चलह ता अन दिन राचह हर नाय रहाउ। पंखी बिरख सुहावड़े उडह चहो दिस जाहे, जेता उडह दुख घणे नित दाजह तै बिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुपाहे। साखा तीन नवारिया एक शब्द लिव लाए, अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना शाओ, तिन्ना पास ना बैसिए ओना घर ना ग्राओ। कटिय तै नित जालिय ओना शब्द ना नाओ, हुक्मे कर्म कमावणे पय किरत फराओ। हुक्मे दर्शन देखना जह भी जह तह जाऊ, हुक्मे हर हर मन वसै हुक्मे सच समाओ। हुक्म ना जान है बपड़े भूले फिर है गवार मन।

सोहनी गुर कै हित प्यार। सच्ची भगती सच रती दर सच्चे सच्यार। आए से प्रवान है सब कुल का करह उदार। सब नदरी कर्म कमावंदे नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा कैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम त्याई है। मनमुख बूझ ना पाए गुरमुख सदा मुख उजले। हर वस्या मन आए सहजे ही सुख पाई है।

सदा सुहाग सुहागणी जे चलह सतगुर पाए सदा फिर निश्चल पाईए ना ओ मरे ना जाए शब्द मिली ना विछुड़े फिर कै अंक समाए हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए पाठ पढ़े ना बूझई भेखी परम पलाए गुरमती हर सदा पाया रसना हर रस समाए माया मोह चकाया गुरमती सहज सुपाए बिन शब्द जग दुखिया फिरे मन मुखा नु गई खाए शब्दे नाम त्याई है शब्दे सच समाए माया भूले सिद्ध फिर है समाध न लगे सुपाए तीने लो व्यापत है अधिक रही लपटाए बिन गुर मुक्त ना पाईए ना दुगदा माया जाए माया किसनो आखिए क्या माया कर्म कमाए दुख सुख एहो जियो बद है हम मैं कर्म कमाए बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हम मैं जाए बिन प्रीति भगत ना होवई बिन शब्द थाए ना पाए शब्दे हम मैं मारिए माया का भ्रम जाए नाम पदार्थ पाईए गुरमुख सहज सुपाए बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए भगत वश्चल हर मन वस्या सहज मिलिया प्रभ सोए नानक शब्दे हर सालाही है कर्म प्राप्त होए श्री राग महला तीजा माया मोह मेरे प्रभ कीना आपे परम पलाए।

गुर पूरा साला ही है, सहज मिले प्रभ सोई रहाऊ। परम गया पौ भागिया, हर चरणी चित लाई। गुरमुख शब्द कमाई है, हर वसै मन आई। कर महल सच समाई है।

भाई दैत पुत कर्म धर्म किस संजम ना पड़े दूजा भाव ना जाने सतगुर भेटे निर्मल हुआ अन दिन नाम बखाने एको पढ़े एको ना बूझे दूजा अवर ना जाने खत दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर परम पलाई

पंडित पर पर वाद विखाण है बिन गुर परम पलाय लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाई जां नाउ चेतै तां गत पाई जां सतगुर मेल मलाय सत संगत मह नाम हर उपजै जां सतगुर मिलै सुपाई मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाई सत बलिहारी गुर अपने बिटो जे हर सीती चित लाई सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर सीती रंग राता प्रभ निकट बसै सबना घट अंतर।

बिन गुर पाया न जाय, पल पल पंडित जोत की थके, भेखी परम पलाय, गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाय। भाई रे गुर बिन सहज ना होए, शब्द ही ते सहज उपजे, हर पाया सच सोई रहाओ, सहजे गाव्या थाई पवे, बिन सहजे कथनी बाद, सहजे ही भगत उपजे, सहज प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजे जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा, सहज समाद लगाई, सहजे ही गुण उचरै।

त्रै गुण भरम भलाय, पढ़िया गुणिया क्या कथिया, जा मुंडो कुत्था जाय। चौथे पद मह सहज है,

सहज मलाईसी शब्द मलावा हुई, बिन सहज सब अंध है माया मोह गुबार। सहज ही सूझी पई सच्चा शब्द अपार, आपे बख्श मलायन पूरे गुर करतार। सहजे अधिष्ट पछाणिय निरपौ ज्योत।

कै शब्द जीवत मरे गुरमुख पव जल तरना वड्डा भाग नाउ पाईए गुरमत शब्द सुहाई आपे मन वसिया प्रभ करता सहजे रहिया समाई इक ना मनमुख शब्द ना पावे बंधन बंद पवाया

शब्द समाय श्री राग महला तीजा सतगुर सेवे मन निर्मला भये पवित्र शरीर मन आनंद सदा सुख पाया भेटिया गहर गंभीर सच्ची संगत बैसना।

सच्चा शब्द पाती उपजय सच्चे सच्चा नाम जिन्नी हऊ मैं मार पछाणिया हऊ तिन बलिहार जाऊं मन मुख सच ना जाननी।

जग जलता देख के भज पए सतगुर सरना सतगुर सच दड़ाया सदा सच संयम रहना सतगुर सच्चा है बोहिथा शब्दे पव जल तरना लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त ना होई पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दूजे पाए पथ खोई सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवर ना कोई जो सच्चे लाए से सच लगे नित सच्ची कार करन तिन्ना निज कर वासा पाया सच्चे महल रहन नानक भगत सुखिए सदा सच्चे नाम रचन श्री राग महला पंजवां जा को मुश्किल अत बने टोई कोई न दे लागू होए दुश्मना साख पे भज खले सबो भजै आसरा चुकै सब असराओ चित आवै उस पार ब्रह्म लगै न तत्ती वाओ साहिब नितानिया का तान आए न जाई तिर सदा गुर शब्दी सच जान रहाओ जे को होवै दुबला नंग

पार ब्रह्म तन मन शीतल होय, काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोभ प्यार, चारे किलविख उन अग किए, हुआ असुर संगार, पोथी गीत कवित किश कदे न करन धरिया, चित आवै उस पार ब्रह्म ता निमख सिमरत तरिया, सास्त सिमरत बेद चार, मोखागर बिचरे तपे तपी सर जोगिया, तीरथ गमन करे खट कर्मा ते दुगणे, पूजा करता नाए रंग ना लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए, राज मिलख सिखदारियां रस भोगण बिसथार, बाग सुहावे सोहणे चलै हुक्म अफार, रंग तमाशे बहु विधि चाए लग रहिया, चित ना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया, बहुत तनाड अचारवंत सोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत पाइया साजन संग परीत, लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगली कीत, चेतना आयो पार ब्रह्म ता खड़र सातल दीत, काया रोग ना छिदर किस ना किस काड़ा सोग, मृत ना आवी चेत तिस अहनस भोगै भोग, सब किश कीतो ने अपना जिए ना संक धरिया, चेतना आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस परिया, कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवै साधु संग, ज्यों ज्यों ओह वधाई है त्यों त्यों हर स्यो रंग, दोहां सिरिया का खसम आप अवर न दूजा थाऊ, सतगुर तुठै पाया नानक सच्चा नाव, तेरी राग महला पंजवा घर पंजवा, जानो नहीं पावै कवन बाता, मन खोज मार्ग रहाव, ध्यानी ध्यान लाव है ज्ञानी ज्ञान कमाव है, प्रभ की नहीं जाता भगौती रहत जुगता, जोगी कहत मुक्ता तपसी तपहराता, मोनी मोन तारी सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता भगत नवै प्रकारा, पंडित वेद पुकारा गृहस्थी गृहस्थ तरमाता, एक शब्दी बहुरूप अवतूता कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता निरहार वर्ती अपरसा, एक लूक ना देवह दरसा एक मन ही ज्ञाता, घाट ना कि नहीं कहाया सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता सगल उकत उपावा, त्यागी सरन पावा नानक गुर चरण पराता, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला घर तीजा, जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत ना पाया सुर्ग मच पाया।

मेरा गुण अवगन ना बिचारिया, रब अपना बिरद संवारिया, कंठ लाए कह रखियोन, लगे ना तत्ती वाऊ जियो, मैं मन तन प्रभु त्याया, जिए इच्छे अड़ा फल पाया, साहा पातशाह सिर कसम तू, जप नानक जीवे नाउ जियो, तुदे आपे आप उपाया, दूजा खेल कर दिखलाया, सब सचो सच वर्तदा, जिस पावे तिसे बुझाए जियो, गुर प्रसादी पाया, तिथे माया मोह चकाया, कृपा करके अपनी आपे लए समाए जियो, गोपी नै गोवालिया, तुदे आपे गोए उठा लिया, हुक्मी भांडे साजिया, तू आपे पन सवार जियो, जिन सतगुर स्यों चित लाया, तिनी दूजा पाहु चुकाया, निर्मल जोत तिन प्राणिया, ओए चले जन्म सवार जियो, तेरिया सदा सदा चंगे आईया, मैं रात देह बड़े आईया, अन मंगिया दान देवना, कहो नानक सच संभाल जियो, श्री राग महला पंजवा, पै पाए मनाई सोए जियो, सतगुर पुरख मलाया, तिस जेवड़े अवन ना कोए जियो, रहाओ गुसाई मेहंडा इठड़ा, अम अबे थाम मिठड़ा, भैन भाई सब सजना, तुद जेहा ना ही कोए जियो, तेरा हुक्मे सामने आया, मैं सत का हल जो आया, नाउ बीजन लगा आस कर, हर बोहल बख्श जमाए जियो, हाँ गुर मिले एक पछाणदा, दुइया कागल चेतना जानदा, हर इक तै कारे लायोन, ज्यो भावे तिवें नभाए जियो, तुसी भोगे हो पुंचो हो भाई हो, गुर दी बाण कवाए पैनाइयो, हौ हो आ माहर पिंड दा, बानियां दे पांज शरीक जियो, हौ आया सामे ते हंडिया, पांज किरसान मुजेरे मेहंडिया, कन कोई कड ना हंगई, नानक बुट्टा को गगराऊं जियो, हौ वारी कुमा जामदा, इक साहा तुद त्याए दा, उजड़ थेहो वसायो, हौ तुद विटहो कुर्बान जियो, हर इत्थे नित त्याए दा, मन चिंदी सो फल पाए दा, सबे काज सवारियन, लाहियन मन की भुख जियो, मैं छड़िया सबो तंदड़ा, गुसाई सेवी सचड़ा, नौ निद नाम निदान हर, मैं पल्ले बद्दा शिक जियो, मैं सुखी हूँ सुख पाया, गुर अंतर शब्द वसाया, सतगुर पुरख विखा लिया, मस्तक तर कै हाथ जियो, मैं बद्दी सच धर्म साल है, गुर सिखा लहंदा पाल कै,

दड़ाया। सब मुक्त हुआ सह सारड़ा, नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो। सब शिष्ट सेवे दिन रात जियो, दे कान सुन हो अरदास जियो। ठोक बजाए सब डिठियां, तुसे आपे नयन छडाए जियो। हुण हुक्म हुआ मेहरवान दा, पै कोई न किसै रयान दा। सब सुखाली बुठियां, इहो हुआ हले मीराज जियो।

पहले पहरे छूटेगा हर चेता, दूजे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा, पर जोबन मैं मत अहमस काम व्यापिया बन जा रहा मित्रा, अंदुले नाम ना चेता, राम नाम घट अंतर नाही, होर जाने रस कस मीठे, ज्ञान ध्यान गुण संयम नाही, जन्म मर हो गए झूठे, तीर्थ वरत सुच संयम नाही, कर्म धर्म नहीं पूजा, नानक पाए भगत निस्तारा, दुबधा व्यापै दूजा, तीजे पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा, सरहंस उलथड़े आए, जोबन घटै जरुआ जिन्ह बन जा रहा मित्रा, आम घटै दिन जाए, अंतकाल पछतासी अंबले, जां जम पकड़ चलाया, सब कुछ अपना कर कर राखिया, खिन मह भया पराया, बुद्ध वसरजी गई सियाणप, कर अवगुण पछताए, कहो नानक प्राणी तीजै पहरे, प्रभ चित हो लिवलाए, चौथे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा, बिरद भया तन खीन, अखी अंध ना दिसई बन जा रहा मित्रा, कन्नी सुने ना वैन, अखी अंध जीव रस नाही, रहे परा कौ ताणा, गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे, मन मुख आवन जाना, खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै, आए चले क्या मान, कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, गुरमुख शब्द पछाण, ओढ़क आया तिन सहया बन जा रहा मित्रा, जर जरवाणा कन, एक रत्ती गुण ना समाणिया बन जा रहा मित्रा, अवगण खड़सन बन, गुण संयम जावे चोट ना खावे, ना तिस जमण मरना, काल जाल जम जोहे ना साके, पाए भगत पै तरना, पत सेती जावे सहज समावे।

बन जा रहा मित्रा हर पाया उधर मंजार हर त्यावे हर उचरे बन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपे आराधे विच अग्नि हर जप जीवया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीवया जिसकी वस्त तिस चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख विचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिए कृपा तार दूजे पहरे रहण कै बन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे भाई मेरा मेरा कर पालिए बन जा रहा मित्रा लै मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा दित्ते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे सो करे विचार हर त्यावे मन लिव लाए कहो नानक दूजे पहरे प्राणी तिस काल ना कबहू खाए तीजे पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा मन लगा आल जंजाल धन चितवे धन संचवे बन जा रहा मित्रा हर नामा हर ना संभाल हर नामा हर हर कदे ना संभाले जे होवे अंत सखाई एहो धन संपै माया झूठी अंत छोड़ चलिया पछताई जिसनो कृपा करे गुर मेले सो हर हर नाम संभाल कहो नानक तीजे पहरे प्राणी जे जाए मिले हर नाल चौथे पहरे रहण कै बन जा रहा मित्रा हर चलन वेला आंदी कर सेवहु पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्रा सब चली रहण विहांदी हर सेवहु खिन खिन ढिल मूल ना करे हो जित अस्थिर जुग जुग हो हर सीती सदमान हुरलिया जन्म मरण दुख खोवो गुर सतगुर स्वामी भेद ना जानो जित मिल हर भगत सुखांदी कहो नानक प्राणी चौथे पहरे सफलियो रहण भगतांदी श्री राग महला पंजवां पहले पहरे रहण कै बन जा रहा मित्रा धर पाए ता उदर है माही दसी मासी मानस किया बन जा रहा मित्रा कर मोहलत कर्म कमाहे मोहलत कर दीनी कर्म कमाणे जैसा लिखत तुर पाया मात पिता भाई सुत बनता तिन भीतर प्रभु संजोया कर्म सकर्म कराए आपे इस जनते वस किस नाही कहो नानक प्राणी पहले पहरे धर पाए ता उदरे माहे दूजे पहरे रहण कै बन जा रहा मित्रा पर जवानी लहरी दे बुरा भला ना पछाणी बन जा रहा मित्रा।

हमारे मन वांछत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारी नाथ के नाते सब कै साथे जप जुए जन्म ना हारी है नानक की बेनंती प्रभ पह कृपा कर पव जल तारी है दखना धूड़ी मजन साधके साई थिए कृपाल लदे हब्बे थोकड़े नानक हर तन माल संत सुंदर स्वामी ताम।

आप मूर्यो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए जाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दोख सब जोहया भगत लखियण कर वस पए मन सर्ब सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बहुड़ ना माया होया कर गहलीने नानक प्रभ प्यारी संसार सागर नहीं।

नाम हर रंग तिन्नी ब्रह्म बीचारिया जियो ब्रह्म बीचारिया जन्म सुवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गहलीने हर जसो दीने जोन ना तावे नह मरी सतगुर दयाल कृपाल भेट तहरे काम क्रोध लोभ मारिया कथन ना जाए अकथ स्वामी सदकै जाए नानक वारिया श्री राग महला चौथा वणजारा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद हर हर उत्तम नाम है जिन सिरिया सब कोए जियो हर जी सबे प्रतपालदा घट घट रमैया सोए सो हर सदा त्याई है तिस बिन अवर ना कोए जो मोहे माया चित लाइंदे से छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सखाई होए मैं हर बिन अवर ना कोए हर गुर सरनाई पाईऐ बणजारिया मित्रा वड भाग प्राप्त होए रहाओ संत जना विन पाईया हर किने न पाया नाउ विच हौं मैं कर्म कमावंदे ज्यों वेसवा पुत निनाउ पिता जात ता होई है गुर तुठा करे पसाउ वड भागी गुर पाया हर अहलस लगा पाउ जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ मन हर हर लगा चाओ गुर पूरे नाम दरडाया हर मिलिया हर प्रभ नाओ रहाओ जब लग जोबन सास है तब लग नाम त्याए चलदिया नाल हर चल सी हर अंते लए छडाए हों बलिहारी तिनको जिन हर मन उठायाए जिन्नी हर हर नाम ना चेत्यो से अंत गए पछताए तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम त्याए मन हर हर प्रीत लगाए वड भागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ हर आपे आप उपाएंदा हर आपे देवैली हर आपे भरम भलाएंदा हर आपे ही मत दे गुरमुखा मन परगास है से विरले के ई के हौं बलिहारी तिनको जिन हर पाया गुरमते जन नानक कमल परगासिया मन हर हर गुठड़ाहे मन हर हर जपन करे हर गुर सरनाई भज पौ जिंदू सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाईऐ कित भत गुरपूरा सतगुर भेटीऐ हर आए वसै मन चित मैं तर नाम आधार है हर नामै ते गत मत मैं हर हर नाम वसाऊ है हर नामे ही जत पत जन नानक नाम त्याया रंग रतड़ा हर रंग रत हर त्याव हो हर प्रभ सत गुर बचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बणजारिया मित्रा गुर हर हर नाम परगास तन तन बणजवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा।

सदा हर सच मन वसै निःचल मत अपार रतन अमोलक पाया गुर का शब्द बीचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर अकार नानक सच्चा सतगुर सेवै सदा सच वापार महला तीजा होर बिरहा सब तात है जब लग साहिब प्रीत ना होए एहो मन माया मोहया वेखण सुनण ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा क्या करे नानक जिन अखी लीतियां सोई सच्चा दे पौड़ी हर इको करता एक इको दीवान हर हर इक सैदा है अमर इको हर चित धर हर तिस बिन कोई नाही डर भ्रम भउ दूर कर हर तिसै नु सलाहे जे तुद रखै बाहर कर हर जिसनो होए दयाल सो हर जप भउ बिकम तर सलोक महला पहला दाती साहिब संदियां क्या चलै तिस नाल इक जा गंदे नाल हन इक ना सुतियां दे उठाल महला पहला सिदक सबूरी साधका सबर तोसा मलायका दीदार पूरे पायसा थाओ नाही खायका पौड़ी सब आपे तुद उपाय कै आप कारै लाई तू आपे वेख विगसदा अपनी वड्याई हर तुदहु बाहर किछ नाही तू सच्चा साई तू आपे आप वरतदा सबनी ही थाई हर तसै त्याव संत जन हो जो लय छुडाई सलोक महला पहला फक्कड़ जाति फक्कड़ नाओ सबना जिया इका शाओ आप हो जे को भला कहाए नानक तां पर जापै जां पत लिखै पाए महला दूजा जिस प्यारे सियोने हो किसे आगै मर चलिया त्रिग जीवन संसार तां कै पाछै जीवना पौड़ी तुद आपे धरती साजी है चंद सूरज दोए दीवे दस चार हट तुद साजिया वाह पार करीवे इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे तिन जम काल ना व्यापई जिन सच अमृत पीवे कोई आप छुट्टे परवार स्यों तिन पिछे सब जगत छुटीवे सलोक महला पहला कुदरत करके वसिया सोए वक्त विचारे सो बंदा होए कुदरत है कीमत नहीं पाए जां कीमत पाए ता कही ना जाए सरै सरयत करह विचार बिन बूझे कैसे पावे पार सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद जेह तिर देखा तेह तिर मौजूद महला तीजा गुर सभा एव ना पाईऐ ना नेड़ै ना दूर नानक सतगुर तां मिलै जां मन रहै हदूर पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा नवखंड चार वेद दस अष्ट पुराणा हर सबना विच तू वरतदा हर सबना पाणा सब तुझै त्यावहै जी जंत हर सार पाणा जो गुरमुख हर अराद दे तिन्हौ कुरबाणा तू आपे आप वरतदा कर चोज वडाणा सलोक महला तीजा कलोम साजनी क्या सदाई है हृदय ही लिख ले हो सदा साहिब कह रंग रहै कबहू ना टूट स्नेहो कलोम साजनी जाए सी लिखिया पी नाले जाए नानक सह प्रीत ना जाए सी जो तुर छोड़ी सच्चै पाए महला तीजा नदरी आमदा नाल ना चलई वेखो को व्यो पाए सतगुर सच दरड़ाया सच रहो लिवलाए नानक शब्दी सच है कर्मी पल्ले पाए पौड़ी हर अंदर बाहर एक तू तू जान है भेत जो कीच

कर्म प्राप्त होए, सत्य रत्ते गुर शब्द स्यों, तिन सच्चे सदा लिव होए, नानक जिसनो मेले ना विछड़े, सहज समावै सोई महला तीजा, सो भगवती जो भगवंत जाने, गुर प्रसादी आप पछाणे, धावत राखे इकत घर आणे, जीवत मरे हर नाम बखाणे, ऐसा भगवती उत्तम होए, नानक सच समावै सोए महला तीजा, अंतर कपट भगवती कहाए, पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए, पर निंदा करे अंतर मल लाए, बाहर मल धोवै मन की झूठ ना जाए, सत

पूर्व लिखिया सु मेटना न जाए, नानक बिन सतगुर सेवे मोख न पाए। पौड़ी सतगुर जिनी त्याया से कर न सुवाही, सतगुर जिनी त्याया से तृप्त अगाही। सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही, जिन को हुआ कृपाल हर से।

प्राणी जरा मरण भौ विसर गया, कटंब देख बिकसह कमला ज्यो, पर कर जो है कपट नरा, दूड़ा आयो हे जमह तना, तिन आग लड़ै मैं रहन ना जाए, कोई कोई साजन आई कह, मिल मेरे बीठला ले बाहड़ी वलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाओ। अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पै अमर पया, माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया, विखम घोर पंथ चालना प्राणी, राव सस तह ना प्रवेशं, माया मोह तब बिसर गया, जा तजियले संसारं, आज मेरा मन प्रगट भया है, देखियले धर्म राओ, तह कर दल करन महाबली।

बदत त्रिलोचन रामैया श्री राग भगत कबीर जियो का अचरज एक सुनोरे पंडिया अब किस कहन न जाई सुर नार गण गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन में खुली लाई राजा राम अनहद किंगुरी बाजे जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया कनक कलस एक पाया तिसमह तार चोय अत निर्मल रसमह रसन चुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटिया प्रखोतम कहो कबीर रंग राता और दुनी सब परम पलानी मन राम रसायन माता श्री राग बाण।

ए नार गर्भ कुंडल जब आसत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मादना एहनस एक अज्ञान सो नागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनहु बिसारिया फिर पछताव हैगा मूड़िया तू कमन कमत भ्रम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरै अनरादा रहाओ बाल बनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोहे प्यापै रस मिस मेद अमृत बिख चाखी तो पंच प्रगट संतापै जप तप संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना अरादिया उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सर अपसर ना पछाणिया उन्मत काम महा बिख भूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख इहो मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो भग मुख जन्म बगोया कुंडर केस कुसुम ते धौले सपत पाताल की बाणी लोचन श्रम है बुद्ध बल लाठी ता काम पव समाधानी ताते बिखै भई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछै पछताना निकुट्टी दे देख तुन उपजै मान करत नहीं बूझै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कशु ना सूझै थाका तेज उड्या मन पंखी तारे आंगन ना सुखाई देनी कह सुनो रे भगत हो मरन मुक्त किन पाई श्री राग तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनक कटक

तुम जो नायक आचुहु अंतर जामी प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी शरीर अराध मोको विचार देहु रवदास सम दल समझावे को राग माज चौपदे कर पहला महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद हर हर नाम मैं हर मन पाया वड भागी हर नाम ते आया गुर पूरे हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चले जियो मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले गुर पूरे हर नाम दड़ाया हर निश्चल हर तन पल्ले जियो हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया कोई आन मलावे मेरे प्राण जीवाया हौरे।

सखाई हौ रह ना सका बिन देखे मेरी माई। हर जियो कृपा करहो गुर मेलो जन नानक हर तन पल्ले जियो। माज महला चौथा मद सूदन मेरे मन तन प्राणा हौ हर बिन दूजा अवर ना जाना। कोई सज्जन संत मिले बड भागी मैं हर प्रभ प्यारा दसे जियो। हौ मन तन खोजी पाल पलाई क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई। मिल सत संगत खोज दसाई विच संगत हर प्रभ वसे जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला हम बारक दीन करहो प्रतपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा गुर जल मेल कमल विगसे जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे। हर हर दया करहु गुर मेलो जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सत संगत हर गुण गाए जग भौजल।

प्रीतम दसे तिसकै हौं वारिया मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन हौं सतगुर विटो कुमाइया जीओ जह जह देखा तह तह स्वामी तू घट घट रविया अंतर जामी गुर पूरै हर नाल देखा लिया हौं सतगुर विटो सदवारिया जीओ एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब इका जोत वरतै भिन भिन ना रली किसै धीर लाइया गुर प्रसादी एक नदनी आया हौं सतगुर विटो बताया जीओ जन नानक बोलै अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पाणी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जीओ सत चौप दे महले चौथे के माज महला पंजवा चौप दे घर पहला मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करे चातरक की न्याई त्रिखा न उतरै शांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जीओ हौं भोली जीओ कोल कमाई गुर दर्शन संत प्यारे जीओ रहाओ तेरा मुख सहावा जीओ सहज धुन बाणी चिर होवा देखे सारिंग पाणी तन सो देश जहां

कीता, आत्मगर बिखम तिना ही जीता। तुम दाते तुम पुरख बधाते, तुद जेवड अवर ना सूरा जियो। रेन संतन की मेरा मुख लागी, दुर्मत बिनसी कुबुद्ध अपागी। सच कर बैस रहे गुण गाए, नानक बिन से पूरा जियो। माज महला पंजवा, विसर नाही ए बड़दाते। कर किरपा भगतन संग राते, दिनस रहन जियो तुद त्याई। एहो दान मोहे करना जियो, माटी अंधी सुरत समाई। सब किश दिया पली आ जाई, आनंद बनोद चोज तमाशे। तुद भावै सो होना जियो, जिस दा दिता सब किश लैना। शक्ति ही अमृत भोजन खाना, सेज सुखाली सीतल पवना। सहज केल रंग करना जियो, सा बुद्ध दी जय जित विसरह नाही। सा मत दी जय जित तुद त्याई, सास सास तेरे गुण गावा। ओट नानक गुर चरना जियो, माज महला पंजवा। सिफत सलाहन तेरा हुक्म रजाई, सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाई। सोई जप जो प्रभ जियो पावे, भाणे पूर ज्ञाना जियो। अमृत नाम तेरा सोई गावे, जो साहिब तेरे मन पावे। तू संतन का संत तुम्हारी, संत साहिब मन माना जियो। तू संतन की करह प्रतपाला, संत खेल है तुम संग गोपाला।

आस पिया सा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो यो बारक पी खीर अगावे ज्यो निर्धन धन देख सुख पावे त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यो हर संग इहो मन पीना जियो ज्यो अंधियार है दीपक परगासा परता चितवत पूर्ण आसा मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा त्यो हर रंग मन रंगीना जियो संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गजाया हर हमरा हम हर के दासी नानक शब्द गुरु सच दीना जियो माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बढ़ारन हरिया अवर साध चख सगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जियो जो जो पीवे सो तृप्तावे अमर होवे जो नाम रस पावे नाम निदान तिसह प्रापत जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो जिन हर रस पाया सो तृप्त आगाना जिन हर साध पाया सो नाही डुलाना तिसह प्रापत हर हर नामा जिस मस्तक पागी था जियो हर एक सहाथ आया वरसाने बहुतेरे किस लग मुक्त भये कनेरे नाम निदाना गुरमुख पाई है कहो नानक विरली दीठा जियो माज महला पंजवा निद सिद रिद हर हर हर मेरा जन्म पदार्थ गहर गंभीर है लाख कोट खुशियां रंग रावे जो गुर लागा पाई जियो दर्शन पेखत पए पनीता सगल उदारी पाई मीता अगम अगोचर स्वामी अपना गुर कृपा ते सच त्याई जियो जाको खोज है सर्ब उपाए वडभागी दर्शन को विरला पाए ऊच अपार अगोचर थाना ओह महल गुरु देखाई जियो गहर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त पया जिस हृदय बसेरा गुरबंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहज समाई जियो माज महला पंजवा प्रभु कृपा ते हर हर त्यावो प्रभु दया ते मंगल गाव उठत बैठत सोवत जागत हर त्याय सगल अवरदा जियो नाम औखद मोको साधु दिया किल बिक काटे निर्मल थिया आनंद भया निकसी सब पीरा सगल बना

आपे तुद संभालिया जियो तू ठाकुर सेवक फुन आपे तू गुपत प्रगट प्रभ आपे नानक दास सदा गुण गावे एक पूरी नदर निहार।

सतगुर का दर्शन पाए जियो सुख पया दुख दूर पराना संत रसन हर नाम बखाना जल थल नीर भरे सरस भर।

दयाला सगले तृप्त अगाए जियो वाण त्रेण त्रे पवन की तुन हरिया कर्णहार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तिसै आराधी मन की आस पुजाए जियो माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप।

तेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए, सब किछ कीता तेरा हुवै, नाही किस असाड़ा जियो, नाम त्याए महा सुख पाया।

प्राण प्रभ मन है आधारा, भगत जीव है गुण गाए अपारा, गुण निदान अमृत हर नामा, हर त्याए त्याए सुख पाया जियो, मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मटावे, हास मनोरथ पूरन होवे, टीटत गुर दरसाया जियो, अगम अगोचर किश मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्यावे है ज्ञानी, खुदी मिटी चूका पुलावा, गुरमन ही मह प्रगटाया जियो, आनंद मंगल कल्याण निदाना, सुख सहज हर नाम बखाना, हुए कृपाल स्वामी अपना, नाव नानक कर्म है आया जियो, माज महला पंजवा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, तू प्रीतम ठाकुर अत पारी, तुमरे कर्तव तुम ही जानहु, तुमरी ओट गोपाला जियो, गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे।

सुख पाया, ठांड पाई प्रभ आपे जीव, सब किछ बहुतो बहुत उपाया, कर कृपा प्रभ सगल रजाया, दात करहो मेरे दातारा, जी जंत सब त्रापे जीव, सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसाद तिस सदा त्याई।

कर कृपा प्रभ भगति लाभ हो सच नानक अमृत पिए जियो माज महला पंजवा पये कृपाल गोविंद गुसाई मेघ वरसै सबनी थाई दीन दयाल सदा कृपाला ठांड पाई करतारे जियो अपने जी जंत प्रतपारी ज्यों बारक माता संभारी दुख भंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारी जियो जल थल पूर रहया मेहरवाना सद बलिहार जाइए कुर्बाना रैन दिन सतिस सदा त्यानी जे खिन मह सगल उदारी जियो राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल प्रभ नानक नदर निहारे जियो माज महला पंजवा जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्थल सोइन चौबारे जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा से ही नगर उजाड़ी जियो हर रुखी रोटी खाए संभाले हर अंतर बाहर नदर निहाले खाए खाए करे बद फैली जान विसु की वाड़ी जियो संतां से तीरंग न लाए साकत संग विकर्म कमाए दलाब दे खोई अज्ञानी जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो तेरी शरण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाला।

सगल मनोरथ पूरन होए, कदे ना होए दुखाला जीओ। माज महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया, जल थल महियल दह दिस वरसाया। शांत भई बुझी सब तृष्णा, आनंद भया सब ठाई जीओ। सुख दाता दुख भंजन हारा, आपे

तुद त्याई जीओ। माज महला पंजवां, सबे सुख पए प्रब तुठे, गुरपूरे के चरण मन उठे, सहज समाद लगी लिव अंतर सोरा।

गुर के चरण बसे मन माही, अंगीकार किया तिन करते, दुख का डेरा टाहया जियो, मन पन बसया सच्चा सोई, बिखड़ा थान ना दिसे कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन हुए, एको स्वामी आहया जियो, जो किछ करे सो आपे आपे, बुद्ध सियाणप किशु ना जापे, अपनिया संतान आप सहाई, प्रभ भरम भलावा लाहया जियो, चरण कमल जन का आधारू, आठ पहर राम नाम वपारू, सहज आनंद गावे है गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्ब समाहया जियो, माज महला पंजवा, सो सच मंदर जित सच त्याई है, सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है, सा धरत सुहावी जित वस है हर जन, सच्चे नाम विटहो कुरबाण जियो, सच वडाई कीम न पाई, कुदरत कर्म ना कहना जाई, त्याए त्याए जीव है जन तेरे, सच शब्द मन माणु जियो, सच सलाहन वड भागी पाई है, गुर प्रसादी हर गुण गाई है।

परम खोया गुरपूरै देखा सबनी जाई जियो। प्रभ समरथ वाडे ऊच अपारा नौ निज नाम भरे भंडारा आदि अंत मद प्रभ सोई दूजा लवै ना लाई जियो। कर कृपा मेरे दीन दयाला जाचक जाचै साधर वाला देह दान नानक जन मांगै सदा सदा हर त्याई जियो। माज महला पंजवा एथे तू है आगे आपे जी जंतर सब तेरे थापे तुद बिन अवर ना कोई करते मैं।

नहीं सुख पाया, सो जन्म न जूऐ हारी जीव। नाम अवखद जिन जन तेरे पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया। हर कीर्तन गावो दिन राती, सफल एहा है कारी जीव। दृष्ट तार अपना दास सवारिया, घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया। एक सवेण होर दूजा नाही, बाबा नानक एह मत सारी जीव। माज महला पंजवा, मन तन रत्ता राम प्यारी। सरबस दीजै अपना वारी, आठ पहर गोविंद गुण गाई है।

जय सागर कटिया जम की फासा जीव चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जप अलख अपेवा काम क्रोध किल बिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जीव पूर्ण भाग भये जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वसिया जिस अंतर परवान गिरस्त उदासा जीव माज महला पंजवा सिमरत नाम हृदय सुख पाया कर कृपा भगती प्रगटाया संत संग मिल हर हर जपिया।

ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर प्रभ सबना गल्ला जोगा जीओ छिन मह थाप उथापन हारा आप एकंती आप पसारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन दिते लहन विजोगा जीओ अंचल लाए सब शिष्ट तराई अपना नाओ आप जपाई गुर बोहित पाया कृपाते ना

ऐसा भली जाए। सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लग है जिस मीठा जियो। सब परोई इकत धागे, जिस लाए लए सो चरनी लागे। ऊंद कवल जिस होए परगासा, तिन सर्व निर

मल जिन देखे सब उतर कलमल नानक नाम त्याए त्याए जीव बिनसया भ्रम भव तीठा जीओ माज महला पंजवा झूठा मंगण जे कोई मांगे।

अन दिन नित जागी बाहां पकड़ तिस स्वामी मेले जिस कह मस्तक लैणा चरण कमल भगता मन गुठे बिन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की धूड़ नित बांच है नाम सच्चे का गहना उठत बैठत हर हर गाइए जिस सिमरत वार निह चल पाइए नानक कहो प्रभु होए दयाला तेरा कीता सहना राग माज अष्टपदियां।

माया मोह चुकावणिया हौ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारणिया गुरमती परगास हुआ जी अन दिन हर गुण गावणिया रहाउ तन मन खोजे ता नाउ पाई धावत राखै खाक रहाई गुर की बाणी अन दिन गावै सहजे भगत करावणिया इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साथ मिलै ता वेखा नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावणिया सच्चा साहेब सच्ची नाई गुर प्रसादी मन वसाई आन दिन सदा रह रंग राता दर सच्चै सो जी पावणिया पाप पुन की सार ना जानी दूजै लागी परम पुलाणी।

दिन जागी दर सच्चै सोभा पावणिया रहाउ। आप सुने तै आपे वेखै जिसनो नदर करे सोई जन लेखै। आपे लाए लए सो लागै गुरमुख सच कमावणिया। जिस आप भुलाए सो किथै हाथ पाई पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाई। जिन सतगुर मिलिया से वड भागी पूरै कर्म मिलावणिया। ते यड़ै तन अन दिन सुती कंतव सारी अवगण मुत्ती।

जन निर्मल दर सत्य नाम सुहावणिया देखा मांगे तां किन दीए सुख नाही पुन दूऐ तीए आपे बख्श लए प्रभ साचा आपे बख्श मलावणिया आप करे।

सदा नाली गुर प्रसादी को नदर निहाली मेरा प्रभु अत ऊचो ऊचा कर कृपा आप मनावणिया माया मोहे एहो जग सुता।

नाम निरंजन यात अगम अपारा, गुरमुख हो ऐसो ही पाई आपे बख्श मनावणिया। मेरा ठाकुर सच दृढ़ाई, गुर प्रसादी सच चित लाई, सचो सच वरतै सबनी थाई, सच्चे सच समावणिया। वे परवाह सच मेरा प्यारा, किल विख अवगुण काटन हारा, प्रेम प्रीत सदा त्याई, भै भाए भगत दृढ़ा बणिया। तेरी भगत सच्ची जे

कै आप उपाया, दुबदा दूजा त्रिविध माया, चौथी पौड़ी गुरमुखी उची, सचो सच कमावणिया। सब है सच्चा जे सच्चे पावे, जिन सच जाता सो सहज समावे, गुरमुख करनी।

तलाया तुद सलाहे ना रजा कबहू सच्चे नावै की भुख लावणिया एको वेखा अवर ना बिया गुर प्रसादी अमृत पिया।

मन वसाई हम दिन सदा रहे भय अंदर भय मार भरम चुकावणिया भरम चुकाया सदा सुख पाया गुर प्रसाद परम पद पाया अंतर निर्मल निर्मल बाणी हर गुण सहजी गावणिया सिमरत शास्त्र वेद बखाणे भरमे भूला।

अंदर पीजे बैस सुथान हर गुण गावे है। आपे कर सत मनावणिया जिसनो नदर करे सो पाई गुर प्रसादी हो मैं जाई। नानक नाम वसै मन अंतर दर सच्चै सो बा पावणिया। माज महला तीजा सतगुर सेवियां वड्डी वड्याई। हर जी अचिंत वसै मन आई हर जी ओ सफले ओ बिरख है अमृत जिन पीता तिस तिखा लहावणिया। हों वारी जी ओ वारी सच संगत मेल मनावणिया। हर सत संगत आपे मेलै गुर शब्दी हर गुण गावणिया। रहाओ सतगुर सेवी शब्द सुहाया जिन हर का नाम मन वसाया। हर निर्मल हों मैं मैल गुआई दर सच्चै सो

निर्मल बाणी शब्द बखाण है, सच्चे सेव सदा सुख पायन, नौ निद नाम मन वसावणिया, सुथान सुहाया जो हर मन पाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अन दिन हर सलाह है साचा, निर्मल नाद बजावणिया, मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूड़ कमावण दुख लागे पारा, परमे भूले फिरन दिन राती, मर जन्म है जन्म गवावणिया, सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर कै शब्द आधारा, नानक नाम मिले वडियाई, दुख सुख सम कर जाननिया, माज महला तीजा, तेरिया खानी तेरिया बाणी, बिन नावै सब परम पलाणी, गुर

हर सच्चा गुर भगती पाई है सहजे मन वसावणिया रहाउ सतगुर सेवे ता सब किश पाए जेही मनसा कर लागे तेहा फल पाए सतगुर दाता सबना वथू का पूरे भाग मलावणिया इहो मन मैला एक न त्याए अंतर मैल लागी बहु दूजे पाए तट तीर्थ दसंतर भवे अहंकारी होर वधेरे होमै मल लावणिया सतगुर सेवे ता मल जाए जीवत मरै हर स्यों।

अंधारा बिस्ता के कीड़े बिस्ता कमावे है, फिर बिस्ता माही पचावणिया मुक्ते सेवे मुक्ता हुए। हम मैं ममता शब्द देखो है अन दिन हर

रे अपना मुक्ति का दर पावणिया किलिख काटै क्रोध नवारी गुर का शब्द रखै उर तारी।

भिदमाया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके चौथे पद की सार ना पावणिया आपे रंगे रंग चढ़ाई से जल राते गुर शब्द रंगाई हर रंग चढ़िया अत अपारा हर रस रस गुण गावणिया गुरमुख रिद सिद्ध सच संयम सोई गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई।

मूड़ा बाहर पाली, मनमुख अंधे फिर है बेताली। जिथे वत होवे तिथों कोई ना पावे, मनमुख परम भुलावणिया।

पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन भागा गुर पाई है नाही, शब्द है मेल मलावणिया, गुरमुख अलिप्त रह संसारी, गुर कै तकिय नाम अधारी, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावणिया, मनमुख अंधे सुध ना काई, आत्म घाती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु भार उठावे, बिन मजूरी भार पहुंचावणिया, इहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जेही वासना पाए ते ही वरतै, वासु वास जनावणिया, मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अगम अपारा, दुखिए नित फिर है बिललांदी, बिन गुर शांत ना।

अमृत बाणी मन वसाई, अमृत नाम त्यावणिया रहाउ। अमृत बोलै सदा मुख वैणी, अमृत वेखै परखै सदा नैणी। अमृत कथा कह सदा दिन राती, अवरां आख सुनावणिया। अमृत रंग रत्ता लिवलाई, अमृत गुर प्रसादी पाई। अमृत रसना बोलै दिन राती, मन तन अमृत पी आवणिया। सो किस करै जो चित ना होई, तिसदा

लाई। नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया। सबना उपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी। तुझते बाहर किश ना होवे, गुरमुख सोजी पावणिया। गुरमुख तत है बीचारा, अमृत भरे तेरे भंडारा।

निरंजन सुई जिन सिर जीतने आपे गोई। नानक नाम संभाल सदा तू सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा से सच लागे जो तुद पाए।

मन निश्चल निज घर वासा पावणिया। गुर कै शब्द हृदय दिखाया, माया मोह शब्द जलाया। सचो सचा वेख सलाही, गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी, हर नाम संभाल है से वडभागी। सच्चा शब्द आप मलाई, सत संगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे, ओहो अगम अगोचर शब्द सुध होवे। अन दिन सच शब्द सलाही, होर कोई ना कीमत पावणिया। पढ़ पढ़ था के शांत ना आई, तृष्णा जाले सुध ना काई। बिख विहाज है बिख मोह प्यासी, कूड़ बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना, दूजा मार मन सच समाणा। नानक एको नाम वरतै मन अंतर, गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा, वर्ण रूप वरतह सब तेरे। मर मर जमह फिर पवह कनेरे, तू एको निश्चल अगम अपारा। गुरमती बूझ बुझावणिया, हों वारी जियो वारी। राम नाम मन वसावणिया, किस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई। गुरमती आप बुझ

प्रगट वरतै सब थाई ज्योति ज्योत मलावणिया तिसना अगन जलै संसारा लोभ अभिमान बहुत अहंकारा मर मर जन्मै पत गुआई अपनी बिरथा जन्म गुआवणिया गुर का शब्द को विरला बूझै आप मारे ता त्रे पवन सूझै।

सच सलाही सब घट अंतर, सचो सच सुहावनिया। सच सलाही सदा हजूरे, गुर कै शब्द रहया पर पूरे। गुर प्रसादी सच नदरी आवै, सच्चे ही सुख पावनिया। सच मन अंदर रहया समाए, सदा सच निश्चल आवै ना जाए। सच्चे लागै सो मन निर्मल, गुरमती सच समावनिया। सच सलाही अवर न कोई, जित सेवै सदा सुख होई। नानक नाम रते विचारी, सचो सच कमावनिया। महाज महला तीजा, निर्मल शब्द निर्मल है बाणी। निर्मल जोत सब माहि समाणी, निर्मल बाणी हर सालाही। जप हर निर्मल मैल गवावनिया, हौ वारी जियो वारी। सुखदाता मन वसावनिया, हर निर्मल गुर शब्द सलाही। शब्दो सुन तिसा मटावनिया, रहाव निर्मल नाम वसिया मन आई। मन तन निर्मल माया मोह गुआई, निर्मल गुण गावै नित साचे के। निर्मल नाद बजावनिया, निर्मल अमृत गुर ते पाया। विचों आप मोआ तिथे मोह ना माया, निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल। निर्मल बाणी मन वसावनिया, जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवै। हौ मैं मैल गुर शब्दे ढोवै, निर्मल वाजै अनहद धुन बाणी। दर सच्चै सो भा पावनिया, निर्मल ते सब निर्मल होवै। निर्मल मनुआ हर शब्द परो।

माया मोह इस मनहन चाई, अंतर कपट दुख पावनिया, गुरमुख भगत जा आप कराई, तन मन राता सहज सुपाई, बाणी वज्जे शब्द बजाई, गुरमुख भगत थाई पावनिया, बहु ताल पूरे बाजे बजाई, ना को सुने ना मन वसाई, माया कारण पेड़ बंद नाचे, दूजे पाए दुख पावनिया, जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता, इंद्री वस सच संयम जुगता, गुर कै शब्द सदा हर त्याई, एहा भगत हर पावनिया, गुरमुख भगत जुग चारे होई, होरत भगत ना पाई कोई, नानक नाम गुर भगती पाईए, गुर चरनी चित लावणिया, माज महला तीजा, सच्चा सेवी सच सालाही, सच्चे नाही दुख कब ही नाही, सुख दाता सेवन सुख पाइन, गुरमत मन वसावणिया, हौ वारी जीओ वारी, सुख सहज समाग लगावणिया, जो हर सेवह से सदा सोह, सुबा सुत सुहावणिया, रहाउ सब को तेरा भगत कहाई, सेई भगत तेरे मन पहाई, सच बाणी तुदै सालाहन, रंग राते भगत करावणिया, सब को सच्चे हर जियो तेरा, गुरमुख मिलै ता चूकै फेरा, जां तुद भावै ता नाही रचावै, तू आपे नाउ जपावणिया, गुरमती हर मन वसाया, हरक सोग सब मोह गवाया, इक सस्यों डिव लागी सदही, हर नाम मन वसावणिया, भगत रंग राते सदा तेरे चाई, नौ निध नाम वसया मन आई, पूरे भाग सतगुर पाया।

माज महला तीजा आत्म राम परगास गुर ते होवे हौं मैं मैल लागी गुर शब्दी खोवे मन निर्मल अन दिन भगती राता भगत करे हर पावणिया हौं वारी जियो वारी आप भगत करन अवरा भगत करावणिया इन्ना भगत जना को सद नमस्कार कीजै जो अन दिन हर गुण गावणिया रहाओ आपे करता कारण कराई जित पावै तित कारै लाई पूरै भाग गुर सेवा होवै गुर सेवा ते सुख पावणिया मर मर जीवै तां किछ पाई गुर प्रसादी हर मन वसाई सदा मुकत हर मन वसाई सहजे सहज समावणिया बहु कर्म कमावै मुक्त ना पाई दे संतर भवै दूजै भाई खुआई बिरथा जन्म गवाया कपटी बिन शब्दै दुख पावणिया धावत राखै ठाक रहाई गुर प्रसादी परम पद पाई सतगुर आपे मेल मलाई मिल प्रीतम सुख पावणिया एक कूड़ लागे कूड़े फल पाई दूजै भाई बिरथा जन्म गवाई आप डुबे सगले कुल डुबे कूड़ बोल बिख खावणिया इस तन मह मन को गुरमुख देखै भाई भगत जा हूं मैं सुखै सिद्ध साधक मोल धारी रहे लिवलाई तिन पी तन मह मन ना दिखावणिया आप कराए करता सोई होर के करे कीतै क्या होई नानक जिस नाम देवै सो लेवै नामो मन वसावणिया माज महला तीजा इस गुफा मह अखुट भंडारा इस विच वसै हर अलख अपारा आपे गुपत परगट है आपे गुर शब्दी आप मियावणिया हौं वारी जियो वारी अमृत नाम मन वसावणिया अमृत नाम महारस मीठा गुरमती अमृत पी आवणिया रहाओ हौं मैं मार बजर कपाट खुलाया नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया बिन शब्दै नाम ना पाए कोई गुर कृपा मन वसावणिया गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया ज्योति ज्योत मिली मन

हार दुख पाए मन मुखे अंधे सूझ नाही फिर घेरे आए गुरमुख वत पावणिया गुर प्रसादी सच्चा हर पाए मन तन वेखै हउमै मैल जाए बैस सुथान सद हर गुण गावे।

दिन राती गुरमति शब्द सुनावणिया बिन शब्द अंतर अनेरा ना वस्त लह ना चूकै फेरा सतगुर हाथ कुंजी होर तर खुलै नाही गुर पूरै भाग मलावणिया गुपत प्रगट तू सबनी थाई गुर प्रसादी मिल सोजी पाई नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणिया माज महला तीजा गुरमुख मिले मलाए आपे काल ना जो है दुख ना संतापे हों मैं मार बंधन सब तोड़े गुरमुख शब्द सुहावणिया हों वारी जियो वारी हर हर नाम सुहावणिया गुरमुख गावे गुरमुख नाचे हर

गुरमुख हर दर शोभा पाई, गुरमुख विचो आप गवाई, आप तरह कुल सगले तारी, गुरमुख जन्म सुवारनिया, गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर, गुरमुख हूं मैं चूकै पीर, गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे, गुरमुख सहज समावनिया, गुरमुख नाम मिले वडियाई, गुरमुख गुण गावे शोभा पाई, सदा आनंद रह दिन राती, गुरमुख शब्द करावनिया, गुरमुख आन दिन शब्द राता, गुरमुख जुग चारे है जाता, गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल, शब्दे भगत करावनिया, बाज गुरु है अंध अंधारा,

हर गुण गावे शब्द सुहाई मिल प्रीतम सुख पावनिया जम जा गाती दूजे पाई कर लाई नाम भूले दे सजाई तड़ी मोहत का लेखा ले वह रतियों मासा तोल कढ़ावनिया पे अड़ै फिर चेते नाही दूजे मुठी रोवे ताही खरी क्वाले उक रूप कलखणी सुपने फिर नहीं पावनिया पे अड़ै फिर मन वसाया पूरे गुर हदूर दिखाया कामन फिर राख्या कंठ लाई शब्दे पिर रावै सेज सुहावनिया।

पढ़ बुझ मानव सामणिया गुरमुख पढ़ है हर नाम सलाह है दर सच है सुबह पावणिया रहाउ अलक अपेरो हर रहे आसमाई उपाय न किती पाया जाई कृपा करी ता सतगुर पीते नदरी मेल मनावणिया दूजे पाए पड़े नहीं दूजे त्रेविद माया कारण लूजे त्रेविद बंधन टूट है गुर शब्दी मुक्त करावणिया एहो मन चंचल वासना आवे दुबदा लागे दह दिस तावे बिख का कीड़ा बिख मै राता बिख ही माही पचावणिया हों हों करे तै आप जनाई बहु कर्म करे किस थाए ना पाई तुझते बाहर किसु ना होए बख्शे शब्द सुहावणिया उपजे पचे हर बूजे नाही अन दिन दूजे पाए फराही मन मुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया फिर परदेश श्रृंगार बनाई मन मुख आंधे से

शब्द पुछाता अन दिन भगत करे दिन राती सहजे ही सुख पावनिया सब मैं वरतै को सोई गुरमुख बिरला बूझै कोई नानक नाम रते जन सोहै कर किरपा आप मलावनिया माज महला तीजा मनमुख पढ़े पंडित कहावह दूजै पाए महा दुख पावह बिख्या माते किस सूजै नाही फिर जूनी आवणिया हौ वारी जियो वारी हौ मैं मार मनावणिया गुर सेवा ते हर मन वसिया हर रस सहज पी आवणिया रहाउ वेद पढ़े हर रस नहीं आया वाद वखाणे मोहे माया अज्ञान मत्ती सदा अंधियारा गुरमुख बूझ हर गावणिया अकथो कथिया शब्द सुहावे गुरमती मन सचो पावे सचो सच रवह दिन राती इहो मन सच रंगावणिया जो सच रत्ते

प्रीतम मेरे, तुद बिन अवर न कोई जाचा, गुर प्रसादी तू पावणिया, अगम अगोचर मित नहीं पाई, अपनी कृपा करह तू नह मलाई, पूरे गुर कै शब्द त्याई, शब्द सेव सुख पावणिया, रसना गुणवंती गुण गावे, नाम सलाहे सच्चे पावे, गुरमुख सदा रह रंग राती, मिल सच्चे सोभा पावणिया, मनमुख कर्म करे अहंकारी, जुए जन्म सब बाजी हारी, अंतर लोभ महा गुबारा, फिर आवन जावणिया, आपे करता दे वडियाई, जिनको आप लिखत तुर पाई, नानक नाम मिले पौ भंजन, गुर शब्दी सुख पावणिया, माज महला पंजवा कर पहला, अंतर अलख न जाई लखिया, नाम रतन लै गुजा रखिया, अगम अगोचर सब

साचा साहिब गुरमुख जापै पूरे गुर कै शब्द सुझापै जिन पिया से त्रिपतासे सच्चे सच अगा मणिया तिस कर सहजा सोई सोहेला अणद बनोद करे सद केला।

आज महला पंजवा कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता कौन सो ज्ञानी कौन सो बक्ता कौन सो गृही कौन उदासी कौन सो कीमत पाए जीओ किन बिद बादा किन बिद छूटा किन बिद आवण जावण टूटा कौन कर्म कौन नेह कर्मा कौन सो कह कहाए जीओ कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया किन बिद मिलिया किन बिद बिछरे एह बिद कौन प्रगटाए जीओ कौन सो अखर जित धावत रहता कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याई किन बिद कीर्तन गाए जीओ गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता गुरमुख ज्ञानी गुरमुख बक्ता तन गिरही उदासी गुरमुख गुरमुख कीमत पाए जीओ हों मैं बादा गुरमुख छूटा गुरमुख आवण जावण टूटा गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा गुरमुख करे सो सुपाए जीओ गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया गुरमुख मिलिया मनमुख विछरै गुरमुख बिद प्रगटाए जीओ गुरमुख अखर जित तावत रहता गुरमुख अपदेश दुख सुख सम सहता गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याई गुरमुख कीर्तन गाए जीओ सगली बणत बणाई आपे आपे करे कराए थापे इकस ते होयो आनंता नानक एकस माहे समाए जीओ माज महला पंजवा प्रभ अवनासी ता क्या काड़ा हर भगवंता ता जन खरा सुखाला।

रख मन तन पावणिया। तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावणिया। रहाव तेरा कीता जिस लागै मीठा, घट घट पार ब्रह्म तिन जन दीठा। थान थनंतर तू है इको एक वरतावणिया। सगल मनोरथ तू देवन हारा, भगती भाए भरे।

कर कृपा दास नदर निहाली, गुण गावह पूर्ण अबनासी, कह सुन तोट न आवणिया, एथे उथे तू है रखवाला, मात गर्भ मह तुम ही पाला, माया अग्न न पोहै तिनको, रंग रते गुण गावणिया, क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली, तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर न जाननिया, जिसको तू प्रभ पया सहाई, तिस तत्ती वाओ न लगे काई, तू साहेब सरन सुखदाता, सत संगत जप प्रगटावणिया, तू ऊच अथाह अपार अमोला, तू साचा साहेब दास तेरा गोला, तू मीरा साची ठकुराई, नानक बल बल जावणिया, माज महला पंजवा कर दूजा, नित नित दयो संभाली है, मूल ना मनहु विसारी है, रहाओ संतां संगत पाई है, जित जम कह पंथ ना जाई है।

पाई तत्ती वाओ ना लग गई जिन मन बुठायाए दियो से सुंदर सोहणे साध संग जिन बहणे

लाख कमलावती उपजह नाही दाम। हर नाह न मिलिय साजन है कत पाइय विश्राम। जित घर हर कंतना प्रगटई पाठ नगर।

में संग प्रभ जिसका लेह चलताम चेत गोविंद अरादी है होवे आनंद घना संत जना मिल पाई है रसना नाम पणा जिन पाया प्रभ अपना आए तिसह गणा एक खेन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल तल मई अल पूरिया रव्या विच बना सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा जिन्नी राव्या सो प्रभु तिन्ना भाग मना हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मलाई सो प्रभु तिसकै पाए लगा वैसाख तीरन क्यों वाडियां जिन्ना प्रेम बशो हर साजन पुरख वसार कै लगी माया तो पुत्र कलत्तर ना संग तना हर अवनासी ओ पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोह इक सहर के नाम बिन अगे लई है खोहे दयो विसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोई प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो परापत होए वैसाख सुहावा तां लगे जा संत भेटे हर सोए हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है जिस अगै सब निवन हर सज्जन दावन लगियां।

मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आण मलावै माई संत सहाई प्रेम के हौ किन कै लागा पाई बिन प्रभ क्यों सुख पाई दूजी नाही जाई जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए आप त्याग बिनती करह लेहो प्रभु लड़ लाए जो हर कंत मलाइया से विछड़ कतह ना जाए प्रभ विण दूजा को नहीं

दोष ना काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन मह कौड़े होए गए जितड़े माया भोग विच ना कोई कर सके किस ठहरो वह रोज कीता किशु ना हो गई लिखिया तुर संजोग वडभागी मेरा प्रभ मिले ता उतर है सब बियोग नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच कत्त को

तिनकी शोभा क्या गणी, जे साहेब में लड़िया तन मन मौलिया राम सिंहु संग साध सहे लड़िया साध जना ते बाहरी से रहन अके लड़िया तिन दुख ना कबहू पुत्र से जम कै बस पड़िया जिन्नी राव्या प्रभ अपना से दिसन नित खड़िया रतन जवे हर लाल हर कंठ तिना जड़िया नानक बांछे धूड़ तिन प्रभ सरणी दर पड़िया मंगर प्रभ आराधना बहुड़ ना जन्मड़िया पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर नाह मन भिद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी ला बिख्या पोहे ना सकई मिल

लाख बेरियां, हर सज्जन अगम अगाह, शरण पई नारायण नानक दर पैया, पोख सोहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे वे परवाह, माग मज्जन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान, हर का नाम त्याए सुन।

सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगहा सच खरे सर्व सुखा निध चरण हर भौजल बिखम तरी प्रेम भगत तिन पाईया बिख्या नाही जरी कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे पार ब्रह्म प्रभ सेम दे मन अंदर एक तरे महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे नानक मंगै दर्श दान कृपा करहु हरी।

आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैन जन्म जन्म का विछड़िया हर मेल हो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख ना वसन पैन हर फिर बिन चैन ना पाई खोज दिते सब गैन आप कमाण विछड़ी दोष ना काहू देन कर कृपा।

नंतिया हर सुरजन देखा नैन जी की बिरथा सुह सुनी हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना का आधार ससुरै पेय तिस कंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम अगाध बोध किस अंत न पारावार सेवा सा तिस भाव सी संता की होए शार दीना नाथ दयाल देव पतत उदारण हार आद जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई ना जाने को नाही तो लनहार मन तन अंतर वस रही नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभ को सेम दे तिन कै सद बलिहार संत आराधन सद सदा सबना का बखशिंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिकीन जिंद गुर शब्दी आराधिये जपिये निर्मल मंत कीमत कहन ना जाइये परमेश्वर बेअंत जिस मन वसै नारायणु सो कहिये भगवंत जी की लोचा पूरी है मिले स्वामी कंत नानक जीवे जप हरि दोख सबे ही हंत दिन रैन जिस ना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्ब कला प्रभ पूर्णो मन निमाणी थां हर ऊट गई मन अंदरी जप जप जीवा नाम कर कृपा प्रभ अपनी जन धूड़ी संग समाओ ज्यों तू राख है त्यों रहा तेरा दिता पैना खाऊ उदम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए ना सुजई किथे कूकण जाऊ अज्ञान बनासन तम हरन ऊचे अगम अमाओ मन विछड़िया हर मेलिया नानक एहो सुआव सर्व कल्याणा तित दिन हर परसी गुर के पाँव वार माज की तत्

प्यार लगा थन दुध दूजे माए बाप की सुध तीजे भैया भाभी बेब चौथे प्यार उपन्नी खेड पंजवे खान पीयन की तात छिवे कामना पुछे जात सतवें सांझ किया घरवास अठवें क्रोध।

आई। जिन रच रचिया तिसह ना जाने, अंधा अंध कमाई। जा भजै तां ठीक कर होए, घाड़त घड़ी ना जाई। नानक गुर बिन नाही पत, पत बिन पार ना पाई। महला दूजा, जिन दे काम हूं दिता चंगा, मन

कहया कथना भरिया पर पर धुआ आप न बुझा लोक बुझाई ऐसा आगू हुआ नानक अंधा हुए कै दसीरा है सब समहाए साथ है अग्गे गया मुहे मुह पाई सो ऐसा

जिस लाभ लोभ अहंकारा नाउ पढ़िया नाउ बुझिया गुरमति विचारा गुरमति नाम धन खटिया भगति परे भंडारा निर्मल नाम मन्निया गर सच्चै सचियारा।

किस आग्ह करह पुकारा, एक निरतन सदा पौंक दे, एक ना परे तुजारा। विण नावै होर धन नाही, होर बिख्या सब छारा। नानक आप कराए करे आप, हुक्म सवारन हारा। सलोक महला पहला, मुसलमान कहावन मुश्किल, जा हुए ता मुसलमान कहावै। अवल औल दीन कर मिठा, मस्कल माना माल मसावै। होए मुस्लिम दीन महान, मरण जीवन का भरम चुकावै। रब की रजाए मन्ने सिर उपर, करता मन्ने आप गवावै। तो नानक सर्ब जिया मेहरमत होए, ता मुसलमान कहावै। महला चौथा, पर हर काम क्रोध झूठ निंदा, तज माया अहंकार चुकावै। तज काम कामनी मोह तजै, ता अंजन माहे निरंजन पावै। तज मान अभमान प्रीत सुत दारा, तज प्यास आस राम लिवलावै। नानक साचा मन वसै, साच शब्द हर नाम समावै। पौड़ी, राजे रैयत सिकदार, कोई ना रहसियो। हट पटन बाजार, हुक्मी टहसियो। पक्के बंक द्वार, मूर्ख जाने अपने। दर्भ परे भंडार, रीते एक खणे। ताजी रथ तुखार, हाथी पाखरे। बाग मिलख घरवार, किथे से अपने। तंबू पलंग निवार, सराय के लालती। नानक सच दातार, सनाखत कुदरती। सलोक महला पहला, नदियां होवै तीनवा, सोम होवै दुध कीओ। सगली धरती सक्कर होवै, खुशी करे नित जीओ।

महला पहला पार अठारह मेवा हुए गरुड़ा हुए सुआऊ चांद सूर्य दोए फिर दे रखी है निश्चल हो ऐ पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला जे देह दुख लाई है पाप ग्रह दोए राह रात पीने राजे सिरे ऊपर रखी है।

पाला कपड़ हुए खाना हुए वाऊ सुरगै दिया मोहनिया स्त्रियां होवन नानक सबो जाऊ पी तू है सालाहना आखन लह ना चाऊ पवड़ी बद फैली गै बाना खसम ना जाने सो कहिए देवाना आप ना पछाने कलह बुरी संसार वादे खपी है बिन नावे वेकार परमी पची है राह दोवे एक जाने सोई सिजसी कुफर गो कफराने पया धजसी सब दुनिया।

लश्कर क्या नेब खवासी आवे महली वास नानक सच्चे नाम वेण सबे टोल वडास पवड़ी जाति दे क्या हाथ सच परखिए मोहरा हुए हाथ मरिए चखिए सच्चे की सरकार जुग जुग जानिए हुक्म मने सिरदार दर दी बाणी है फुरमानी है कार खसम पठाया तबल बाज दी चार शब्द सुनाया एक होए असवार एक ना साखती इकनी बदे पार इक ना ताखती सलोक महला पहला जा पक्का ता कटिया रही सो पलरवाड़ सन की सारा चिथिया कान लया तन झाड़ दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसन आए बहेठ जो दर रहे सो उबरे नानक अजब डिठ महला पहला वेख जे मिठा कटिया कट कुट बद्दा पाए खुंडा अंदर रख के देन सो मल सजाए रस कस टटर पाई है तपै तै बिल लाए पीसो फोग संभालिए।

पास पत्थर पाला क्या करे, खुसरे क्या कारवास, कुत्ते चंदन लाई है पीसो कुत्ती तात, बोला जे समझाई है पढ़ी है सिमरत पाठ, अंधा चानन रखी है दीवे बल है पचास, चौने सोयना पाई है चुन चुन खावे कास, लोहा मारन पाई है कह ना हुए कपास, नानक मूर्ख एह गुण बोले सदा विनाश, महला पहला कहां कंचन टुटे सार, अग्नि गंड पाए लोहार, गोरी सेती टुटे पतार, पुत्ती गंड पवे संसार, राजा मंगे दिते गंड पाए, भुखियां गंड पवे जा खाए, काला गंड नदियां मीह झोल, गंड प्रीति मिठे बोल, वेदा गंड बोले सच कोए, मोया गंड नेकी सत होए, एत गंड वरतै संसार, मूर्ख गंड पवै मोहि मार, नानक आखै एहो बीचार, सिफती गंड पवै दरबार, पौड़ी आपे कुदरत साजकै आपे करे बीचार, एक खोटे एक खरे आपे परखण हार, खरे खजाने पाई है खोटे सटी है बाहर वार, खोटे सच्ची दरगाह सुटी है किसे आगे करह पुकार, सतगुर पिछे भज पवह एहा करनी सार, सतगुर खोट्यों हो खरे करे शब्द सुवारन हार, सच्ची दरगाह मनियन गुर कै प्रेम प्यार, गणत तिना दी को क्या करी जो

मेरबद बादशाह अफजू खुदाई, एक तू ही एक तू ही महला पहला, ना देव दानवा नरा ना सिद्ध साधका तरा, अस्त एक दिगर कोई एक तुई एक तुई महला पहला, ना दादे देहांदे आदमी ना सपत जेर जिमी, अस्त एक दिगर कोई एक तुई महला पहला, ना सूर सस मंडलो ना सपत दीप नह जलो, अन पौन फिर ना कोई एक तुई महला पहला, ना रिजक दस्त आकसे हमारा एक आस वसे, अस्त एक दिगर कोई एक तुई महला पहला, परंदे ना ग्रहा जर दरख्त आभ्यास कर, देहांद सुई एक तुई महला पहला, नानक ललार लिखिया सो।

सारे कर्म कमाई है, गुरमति आप गवाए नाम त्याई है, दूजी कार है लाग जन्म गवाई है, विण नावै सब विस पैंजै खाई है, सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है, विण सतगुर सेवे नाही सुख निवास, फिर आई है, दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है, नानक सच खरा सलाहे पत सिउ जाई है, सलोक महला पहला, तुद भावै ता वावै गावै, तुद भावै जल नावै जा।

सिख कहावै जां तुध भावै तां होवै राजे रस कस बहुत कमावै जां तुध भावै तेग भगावै सिर मुंडी कट जावै जां तुध भावै जाहे दसंतर सुन गल्लां घर आवै जां तुध भावै नाहिर चावै तुध पाणी तू भावै नानक एक कह बेनंती होर सगले कूड़ कमावै महला पहला जां तू वड्डा सब वडियाईया चंगा चंगा होई जां तू सच्चा तां सब को सच्चा कूड़ा कोई ना कोई आखण वेखण बोलण चलण जीवन मरना तात हुक्म साज हुक्मै विच रखै नानक सच्चा आप पौड़ी सतगुर सेवन संग परम चुकाई है सतगुर आखै कार सो कार कमाई है सतगुर होए दयाल ता नाम त्याई है लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है मनमुख

पूरा जे करे कटै नाही तोल पौड़ी जां तू तां क्या होर मैं सच सुनाई है मुट्ठी तंदे चोर महल ना पाई है इन्हें चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाए सो भन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है कोई ना आखै घट हों मैं जाई है लइयन खरे परख डर भी नाई है सौदा इक तहट पूरे गुर पाई है सलोक महला दूजा अठी पैरी अठ खंड नावां खंड शरीर इस विच नौ निद नाम एक पाल है गुणी गहीर।

गुण गाहक एक वन भुखियां भुख ना उतरै गली भुख ना जाए नानक भुखा तां रजै जां गुण कह गुणी समाए पौड़ी बिन सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाई है बिन सच्चे कूड़ियार बन चलाई है बिन सच्चे तन शार शार रलाई है बिन सच्चे सब भुख जे पैंजे खाई है बिन सच्चे दरबार कूड़ ना पाई है कूड़ै लालच लग महल खवाई है सब जग ठगियो ठग आई है जाई है तन मह तृष्णा अग शब्द बुझाई है सलोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्के कर्म ध्यान पत के

संसार किन समझाई है, सच ना धरे प्यार तंदे ताई है। काल बुरा खै काल सिर दुनियाई है, हुक्मी सिर जंदार मारे दाई है। आपे दे प्यार मन वसाई है, मोहत ना चसा विलम भरिए पाई है। गुर प्रसादी बुझ सच समाई है, सलोक महला पहला तुम्मी तुम्मा विस। आकत तूरा निम फल मन मुख वसह तिस, जिस तू चेतना आवही नानक कहिए किस। हंडन करमा बाहरी महला पहला, मत पंखे रू किरत साथ। कब उत्तम कब नीच, कब चंदन कब अक डाल, कब उच्ची परीत। नानक हुक्म चलाई है।

पावना, खट दर्शन कै भेख किसे सच समावना, सच्चा पुरख अलख शब्द सुहावना, मन्ने नाउ बसंख दरगाह पावना, खालक कौ आदेश ताडी जावना, नानक

कारिया करल भगत दिन रात न रहनी वारिया महला मांज निवास शब्द सवारिया सच कहन अरदास से विचारिया सोहन कसमै पास हुक्म सिधारिया सखी कहन अरदास मनो प्यारिया बिन नावे त्रिगवास फिट सो जीविया शब्द सवारी आस अमृत पीविया।

पौड़ी खसमै कै दरबार टाडी वसिया सच्चा खसम कलाण कमल विगसिया खसम पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरस्या सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दस्या सच्चा शब्द विचार काल बदौसिया ढाडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास

नित सुरही सा तन दही बनोवै इत के होम जग सद पूजा पय कार्य सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नाते जित वडे आई नानक जे सिर खुते नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्नि पाला की करे सूरज के ही रात चंद अनेरा की करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किछ होए नानक तां पत जानिए जां पत रखे सोए पौड़ी तुद सच्चे सुभान सदा कलाणिया तू सच्चा दी बाण होर आवन जानिया सच जे मंगह दान से तुदै जेहया सच तेरा फरमान शब्दे सोहया।

बुलाया, सच्ची सिफत सालाहा कपड़ा पाया, सच्चा अमृत नाम भोजन आया, गुरमति खादा राज तिन सुख पाया, ढाडी करे पसाऊ शब्द बजाया, नानक सच सलाहे पूरा पाया, शुद्ध राग गौड़ी ग्वारी महला पहला, चौपदे दोपदे

ढूपै तरै जिन किछ किया सो किछ करै हुक्मे आवै हुक्मे जाए आगे पाछै हुक्म समाए हंस हित आसा समान।

नानक आखण बिखम बीचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर इहो वसेख कहना है किस कहन न जाए तौ कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ शर्म सुरत दोए ससुर भये करनी कामन कर मन लय साहा संजोग व्याह वजोग सच संतत कहो नानक जोग गौड़ी महल।

तट तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ काट ही माही, पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाण, पीतर होंदी वस्त ना जाने, हौ ना मुआ मेरी मुई बलाई, ओ ना मुआ जो रहे आसमाई, कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना आया, गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन बूझे मन नाऊ, ताँ कै सद बलिहारे जाऊ आ

मन खोट। साचे गुर की साची सीख, तन मन शीतल साच परीख। जल पुराण रस कमल परीख, शब्द रत्ते मीठे रस ईख। हुक्म संजोगी

मुंडा पढ़वाऊ जेवा इंद्री एक सुवाऊ दिष्ट वकारी नाही पहु पाऊ आप मारे ता पाए नाऊ शब्द मरे फिर मरन ना हुए बिन मुए क्यों पूरा हुए परपंच व्याप रहया मन दोए फिर नारायण करे सो होए बोहित चढ़ो जा आवे वार थाके बोहित दरगाह मार सच सलाही तन गुरुद्वार नानक दर कर एकंकार गौड़ी महला पहला।

मन माने अमृत रस पीजे रहाउ जन्म जीत मरण मन मानिया आप मुआ मन मन ते जानिया नजर पई कार करते जानिया जत सत तीरथ मज्जन नाम।

उठाऊं। नानक गुरमत सहज सुमाऊं। गौड़ी महला पहला सतगुर मिले सो मरण दिखाई। मरन रहन रस अंतर पाई। गर्भ निवार गगन पुर पाई। मरन लिखाए आए नहीं रहना। हर जप जाप रहन हर सरना रहाउ। सतगुर मिले तदुबदा भागे। कमल बगास मन हर प्रभ लागे। जीवत मरे महारस आगे। सतगुर मिले सच संयम सूचा। गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा। कर्म मिले जम

गुरबचनी सच शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वडियाई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला, जिन अकथ कहाया अपयो पी आया, अन पै बिसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डर है समाना, पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाउ, जिस नर राम हृदय हर रास, सहज सुभाए मिले साबास, जाहे सवारे सांझ बयाल, इत उत मन मुख बांधे काल, अहनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले भ्रम दूरे, गौड़ी महला पहला, जन्म मरे त्रै गुण हितकार, चारे वेद कथ है आकार, तीन अवस्था कह बखियान, तुरियावस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना हुए है मरना रहाउ, चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत सासत पंडित मुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जां कै हृदय बसिया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा माही निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, बाजी एहु संसारु, लब लोभ मुच कूड़ कमावे, बहुत उठावे पारू, तू काया मैं रुड़दी देखी, ज्यों धारी उपर शारू, सुन सुन सिख हमारी, सो कृत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहुड़ ना आवे वारी रहाउ, हौ तुदे आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी, निंदा चिंदा करह पराई, झूठी लाए तिबारी, वेल पराई जो है जियड़े, करह चोरी बुरियारी, हंस चलिया तू पिछे रहिए, छुट्टड़ हुई है नारी, तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया, कर चोरी मैं जा किश लिया, ता मन भला पाया, हलत ना सोभा पलक ना ढोई, अहला

भोगत सह का पाना रहाऊ, साहू हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके बन जारी, जियो पिंड सब रास तिसह की, मार आपे जी वाले, गौड़ी चेती महला पहला, अवर पंच हम एक जना, क्यों राखो कर बार मना।

थी सातना अमृत केल करे नित कामन अवर लुटेन सो पंच जना ताहे मड़ोली लूटिया देहरा सातन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना।

केते पशु अपाई, केते नाग कुली मह आई, केते पंख उड़ाई, हट पटन बिज मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवै, अगों देखै पिछों देखै, तुझते कहां छुपावै, तट तीरथ हम नव खंड देखे, हट पटन बाजारा, लैकै तकड़ी टोलन लागा, घट ही मह वणजारा, जीता समुंद सागर।

सहु वसै हौ मिलोंगी बाहां पसार। नागन होआ तर वसा शब्द वसै पहु जाय। नानक सदा सुहागनी जिन ज्योति ज्योत समाय। गौड़ी पूर्बी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखिए करते का हुए बिचार। तित कर गाव हो सोहिला सिवर हो सिरजनहार। तुम गाव हो मेरे नरपहु का सोहिला हौ वारी जाऊं। जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवनहार।

शब्द पछाणे। सतगुर कै पहे ब्रह्म पहु जाई, पैरा कै सच रंग सुमाई। रहाउ गुर मिले हर मन वसै सुपाई, मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाई।

गुर मिले कृष्णा यज्ञ बुझाए, गुर ते शांत वसै मन आए, गुर ते पवित्र पावन सोचो होए, गुर ते शब्द मलावा होए, बाज गुरु सब भरम पलाई, बिन नावै बहुता दुख पाई, गुरमुख होवै सो नाम त्याई, दर्शन सच्चै सच्ची पत होई, किसनो कहिए दाता एक सोई, कृपा करे शब्द मलावा होई, मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साच समावा, गौड़ी गुआर री महला तीजा, सो थाओ सच मन निर्मल होए, सच निवास करे सच सोए, सच्ची बाणी जुग चारे जापे, सब किस साचा आपे आपे, कर्म होवे सत संग मलाई, हर गुण गावे बैस सो थाई रहाओ, जनो एह जिहवा दूजे पहाए, हर रसना चाखे फीका अलाई, बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन नावे दुखिया चलिया रोए, रसना हर रस चाखिया।

जो पांडा हुए ऊंदे पांडे टिके ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास गौरी ग्वारी महला तीजा।

साची वाणी शब्द विचार गावत रहे जे सतगुर पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाओ। एक गाव है एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राखिया सदा उरतार भगत करह मूर्ख आप जनाव है नच नच टप है बहुत दुख पाव है नचे टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वशल भगत कराए सोए सच्ची भगत विचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोई मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वडियाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मिकदारा गुर अंकस मार जी वालन हारा।

ता निर्मल हुई गुरमुख इहो मन लया सवार हौ मैं विचों तजेवकार जो तुर राखियन मेल मलाई कदे ना विचण है शब्द समाई अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा हौ मैं विच सब जग बौराना दूजे पाए परम पुलाना बहु चिंता चितवै आप ना पछाना धंधा करतिया आन दिन वेहाना हिरदय राम रमहु मेरे भाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाउ गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हौ मैं मारे गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म बधाता से जन सच्चे जो गुर शब्द मलाए

भक्त परवाना। हर के नाम बिटो बल जाऊं, तू विसरह तद ही मर जाऊं रहाऊ। तिन तू विसरह जे तुदे आप भुलाई, तिन तू विसरह जे दूजे पाई। मनमुख अज्ञानी जोनी पाई, जिन एक मन तुठा से सतगुर सेवा लाई। जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाई।

रथिया जाई, गुर शब्द मारन मन माहि समाहि, तेरे गुण अनेक कीमत नह पाहि, जिसकी बाणी तिस माहि समाणी, तेरी एकात कथा गुर शब्द बखानी रहाओ, जह सतगुर तह सत संगत बनाई, जह सतगुर सहजे हर गुण गाई।

रहाउ। असंत अनारी कदे ना बूजै, कथनी करे तै माया नाल लूजै, अंध अज्ञानी कदे ना सीजै। इस जुग में राम नाम निस्तारा, विरला को पाई गुर शब्द विचारा, आप तरै सगले कुल उदारा। इस कल युग में कर्म धर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई। नानक नाम बिना को मुक्त ना होई, गौड़ी महल्ला।

राम जपहु हो पवजन उतरो हो पार रहाओ परमे आवे परमे जाय एहो जग जन्मया दूजे पाई मन मुख ना चेतै आवे जाय आप भुला के प्रभ आप भुलाया एहो जियो वडाणी चाकरी लाया महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मलाए एको नाम चेते विचो परम चकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी गुआर दी महला तीजा जिन्ना गुरमुख त्याया।

बिन नावै त्रिग त्रिग अहंकार, बंधन बांधियो माया पास, जन नानक छूटै गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण। जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्ये पानी नाही, जैसे धरती मध्ये पानी परगासिया, बिन पगा बरसत फराही। बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किछ करत है सोई कोई है रे, तैसे जाए समाही रहाओ। स्त्री पुरख होए कह क्या हुए कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझ ही माही समाही। इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही, जाका कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही।

अल्ला चौथा निर्गुण कथा कथा है हर की पज मिल साधु संगत जन की तर पौ जल कथ कथा सुन हर की गोविंद सत संगत मेलाई हर रस रसना राम गुण गाए रहाउ जो जन प्याव है हर हर नामा तिन दासन दास करहु हम रामा जन की सेवा उत्तम कामा जो हर की हर कथा सुनावे सो जन हमरे मन चित पावे जन पग रेन वड भागी पावे संत जना स्यों प्रीत बन आई जिनको लिखत लिखे।

जा हर जस गावे सारिंग प्रीत बसह जल तारा नरपत प्रीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपे निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया धन खाते गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाते जन नानक प्रीत साध पग चाटे

खन खाए, गुर सिख प्रीत गुर मिल आघाए, हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी, कर कृपा लोचपुर हमारी। रहाओ चकवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यारी सब दुख त्यागे, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे, बछरे प्रीत खीर मुख खाए, हृदय बिगसै देखै माए, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए, होर सब प्रीत माया मोह काचा, बिन सजाए पूरा कच पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी गुआर री महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम त्याया हर तनी, जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कणी, गुर सिख हर बोलो हो मेरे भाई, हर बोलत सब पाप लह जाई। रहाओ जब गुर मिलया तब मन वास आया, तावत पंच रहे हर त्याया, अन दिन नगरी हर गुण गाया, सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई, तिन कूड़ ते आगे हर लिब लाई, ते हर दरगाह मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर पावे, कृष्ण बल भदर गुर पग लग त्यावे, नानक गुरमुख हर आप तरावे, गौड़ी गवार री महला चौथा, हर आपे जोगी डंडा तारी, हर आपे रव रहया बनवारी, हर आपे तप तापै लाए तारी, ऐसा मेरा राम रहया भरपूर, निकट वसै नाही हर दूर। रहाओ हर आपे शब्द सुरत धुन आपे, हर आपे वेखै विगसै आपे, हर आप जपाए आपे हर जापे, हर आपे सारिंग अमृत धारा, हर अमृत आप पी आवनहारा।

बणंजह रंग स्यों जे आप दयाल हुए देह हम बणजारे राम के हर वणज करावे देरा सरे रहाओ लाहा हर भगत तन खटिया हर सच्चे साहा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया होर वणज करह वापारिये अनंत तरंगी दुख माया वे जेह बणज हर लाया फल तेहा तिन पाया हर हर वणज सो जन करे

महला चौथा ज्यों जननी गर्भ पालती सुत की कर आसा वड्डा हुए तन खाट दे कर भोग बलासा क्यों हर जन प्रीत हर राखदा दे आप हथासा मेरे राम मैं मूर्ख हर राख मेरे गुसैया जन की उपमा तुझे वडैया रहा मंदर कर आनंद हर हर जस मन पावे सब रस मीठे मुख लगह जा हर गुण गावे हर जन परवार सधार है इक्की ही कुली सब जगत छडावे जो किश किया सो हर किया हर की वडियाई हर जी तेरे तू वरतदा हर पूज कराई हर भगत भंडार नहाईंदा आपे वरताई लाला हाट विहाजिया क्या तिस चतुराई जे राज बहाले ता हर गुलाम कासी को हर नाम कढाई जन नानक हर का दास है हर की वडियाई गौड़ी ग्वार भी महला चौथा किरसानी किरसान करे लोचे जियो लाए हल जोते उदम करे मेरा पुत धी खाए त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए।

गौड़ी बैरागण महला चौथा नित दिन सरात लालच करी पर मैं परमाया वेगार फिरे वेगारिया सिर पार उठाया जो गुर की जन सेवा करी सो कर कै काम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै काम लाए नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाउ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजी अर्थ सब माया कै बंदे कै दान ले कै नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद की चै बहु भांत कर माया कह ताई जान लाहा दे ता सुख मने तू टै मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे।

हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा हौं कुर्बानी गुरे अपनी

कृपा धार रहाउ। हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत न आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर पावे। हम अपराधी राखे गुर संगति, अपदेश दियो हर नाम छडावे। तुमरे गुण क्या कहां मेरे सतगुरा, जब गुर बोल है तब विस्म होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छडाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले तूके सब सोग संतापे। गौड़ी बैरागन महला चौथा, कंचन नारी मह जियो लुभत है। मोह मीठा माया, कर मंदर घोड़े खुशी, मन अन रस लाया।

कपड़ पहनन दिया रास अन्न पोगाणी जिन दिए सो चेतना आवई पशु हों कर जानी सब कीता तेरा वर्तदा तू अंतर जामी हम जंत विचारे क्या करह सब खेल तुम स्वामी जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यों जननी सुत जन पालती राखह नदर मजार अंतर बाहर मुख देह ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुरसिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यानी तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणी रहाओ जैसी गगन फरंती उड़ती कपरे बागे वाली ओह राखै चीत पीछे बिच बचरे नित हृदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखै जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखै रसना मास रात केरी कोई जानो मास काती कै किस हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करह हर राखै पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कै किस हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग न सकै बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नित त्यागहु जन नानक जो अंति अवसर लए छडाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लहिए मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले हौ खिन खिन करी नमस्कार मेरा गुर पूरा क्यों मिले रहाओ कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच पुन्नी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दरड़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिए टोटा मूल ना आवई हर लाभ नित दृढ़िए जिस को हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उधर हर गुण गावाही महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग भया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हों गोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करहो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सबाई हर निकट वसै हर कोली हर हर निकट वसै सब जग कह अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुर पूरै सिर वेचियो गुर पै मोली हर जी अंतर बाहर तुम सरनाग तुम वड पुरख वडोली जन नानक अन दिन हर गुण गावै मिल सतगुर गुर वे चोली गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीश्वर पुरख बधाते जित मार्ग तुम प्रेर हो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर से तीराते सत संगत मिल राम रस पाया हर राम मैं नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सरनाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड़ अवर ना दाते
जन नानक नाम लय ता जीवै हर जपिय हर किरपाते गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहो किरपा जग जी मन दाते मेरा मन हर से तीराचे सतगुर बचन दियो अत निर्मल जप हर हर हर मन माचे राम मेरा मन तन बेद लियो हर साचे जेहे काल कै मुख जगत सब ग्रसया गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे रहा जिनको प्रीत नाही हर सेती ते साकत मूड नर काचे तिनको जन्म मरण अत भारी विच विस्ता मर मर पाचे तुम दयाल सरन प्रतपालक मोको दीजै दान हर हम जाचे हर के दास दास हम कीजै मन निरत करे कर नाचे आपे साहा वड्डे प्रभ स्वामी हम बन जा रे है ताचे मेरा मन तन जियो रास सब तेरे जन नानक के साहा प्रभ साचे गौड़ी पूर्वे महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख भंजन

हम सतगुर पार ब्रह्म कर मानी, हम मूढ़ मुगद अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर कै बचन हर हम जानी रहाउ, जितने रस अनरस हम देखे सब तितने फीक फीकाने, हर का नाम अमृत रस चाखिया, मिल सतगुर मीठ रस गानी, जिनको गुर सतगुर नहीं भेटिया ते साकत मूढ़ देवानी, तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोहे पचाने, जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगानी, जन नानक हर हर हर जप प्रगटे मत गुरमत नाम समानी। गौड़ी पूर्वी महला चौथा। मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी, कहो कित्ते हर पहु नसीऐ, हर आपे बख्श लए प्रभ साचा, हर आप छुड़ाए छुटिऐ, मेरे मन जप हर हर हर मन जपिऐ, सतगुर की सरनाई भज पौ मेरे मना, गुर सतगुर पीछे छुटिऐ रहाव, मेरे मन सेव हो सो प्रभ सर्ब सुख दाता, जित सेवै निज कर वसीऐ, गुरमुख जाए लहो कर अपना, कस चंदन हर जस कसीऐ, मेरे मन हर हर हर हर हर जासे उत्तम, लैला हर मन हसीऐ, हर हर आप दया कर देवै, ताय अमृत हर रस चखीऐ, मेरे मन नाम बिना जो दूजै लागे, ते साकत नर जम कुटिए, ते

निरंजन नरहर जित सेवियै लेखा छुटियै जन नानक हर प्रभ पूरे किए खिन मासा तोल ना कटियै गौड़ी पूर्वे महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरै मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करहो हर दर्श दिखावहो मेरे मन तन लोच कनेरी राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी गुर कृपाल कृपा किंचत गुर कीनी हर मिलया आए प्रभ मेरी रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम हर जानो मेरी अन दिन नाम जपी सुख पाई नित जीवा आस हर तेरी गुर सतगुर दाते पंथ बताया हर मिलया आए प्रभ मेरी अन दिन अनद पया बड़ पागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश्वर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा इहो मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी दह दह दिस चल चल हांडी गुरपुरा पाया वड पागी हर मंत्र दिया मन ठाढ़े राम हम सतगुर लाले कांडे रहाओ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साढ़ी पर उपकार पुन बहु किया बहु दुत्तर तार पराढ़ी जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गाडन गाडी ज्यों पानी कागद बिन सुजात है त्यों मन मुख गर्भ गलाढ़ी हम जानिया कछु ना जान है आगै ज्यों हर राख है त्यों ठाढ़ी हम पूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोद नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाए पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाए कर साधु अंजलि पुन वड्डाए कर डंडोत पुन वड्डाए रहाओ साकत हर रस साधना जानिया इन अंतर हम मैं कंडाई ज्यों ज्यों चल है चुभ दुख पावे जम काल सह सिर डंडाई हर जन हर हर नाम सुमाणी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाई हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाई जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडाई गौड़ी पूर्वी महला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है किस साधना पावे तीठा हर दीन दयाल अनुग्रह किया।

मस्तक पाग सुभागी राम गुरमत हर लिव लागी रहाउ। कट कट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिव लागी। हो मन तन देवो काट गुरु कहो मेरा भ्रम पहो गुर बचनी भागी। अंधियार है दीप ज्ञान जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागी। अज्ञान अंधेरा बिनस बनासेउ कर वस्त लही मन जागी। साकत बदक माया तारी तिन जम जो हन लागी। हुन सतगुर आगै सीस ना बेचिया हुए आवह जाहे अभागी। हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगी। जन नानक की लाज पात गुरु है सिर बेचे हो सतगुर आगी। गौड़ी पूर्वी महला चौथा हम अहंकारी अहंकार अग

प्यारिया वस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन वस जीव मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुरपुरा वेख विगस जीव हर नाम मिलिया सोहागनी मेरे गोविंदा मन अन दिन अन दरहस जीव हर पाए अड़ा वडभागी मेरे गोविंदा नित लैलाहा मन हस जीव हर आप उपाए हर आपे वेखै हर आपे कारै लाया जीव एक खावह बख्श तोट न आवै एक न फक्का पाया जीव एक राजे तख्त बह नित सुखिये एक न भिख मगाया जीव सब इको शब्द वरतदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम त्याया जीव गौड़ी माज महला चौथा मन माही मन

हर हर नाम प्रगासिया मेरे गोविंदा सब दालत दुख लह जाही दियो हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा वडभागी नाम समाही दियो नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किनै हर प्रभ डिठड़ा नैनी दियो मेरा मन पन बहुत बैरा गया मेरे गोविंदा हर बाजो धन कुम लैनी जियो संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रैनी जियो मैं मेलोह संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मन तन भुख लगाइया जियो हो रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरहो हर लाइया जियो हर राया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो मेरा मन तन आसा पूरिया मेरे गोविंदा हर मिलिया मन वाधाइया जियो वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे प्यारिया हौ तुद विटड़ो हो सदवारी जियो मेरा मन तन प्रेम परम का मेरे गोविंदा हर पूंजी राख हमारी जियो सतगुर

हरे आपे सब कट भोगदा मेरे गोविंदा आपे रसिया भोगी जियो हर सुजान ना भुलई मेरे गोविंदा आपे सतगुर जोगी जियो आपे जगते उपाए दा मेरे गोविंदा हरे आप खेलै बहुरंगी जियो एक ना भोग पुगाए दा मेरे गोविंदा एक नगन फिर है नंग नंगी जियो।

हर कथा मंग है हर चंगी दियो हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा हर भगता लोच मन पूरी जियो आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा रब रहया नहीं दूरी जियो हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा हर आप रहया भरपूरी जियो हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा हर वेखै आप हदूरी जियो हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा हर आप बजाए त्यों वाजे जियो हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा गुर शब्दी हर प्रभ गाजे जियो आपे सरन पुआएंदा मेरे गोविंदा हर भगत जना राख लाजे जियो वडभागी मिल संगती मेरे गोविंदा जन नानक नाम सिद्ध का जय जियो गौड़ी माज महला चौथा मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो मेरा नाम सखा हर पाई जियो गुण गावो संत जियो मेरे हर प्रभ केरे जियो जप गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो हर हर नाम जियो प्राण हर मेरे जियो फिर बहुड़ ना

मन लगा भाव जियो गुर शब्दी पाई हर प्रीतम राव जियो वड भागी जप नाउ जियो मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जियो जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जियो गौड़ी माज महला चौथा मेरा बिरही नाम मिलै ता जीवा जियो मन अंदर अमृत गुरमत हर लीमा जियो मन हर रंग रतड़ा हर रस सद

सुपने पेखारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया हर जो किश करे सो हर किया भगता पाया जन नानक हूं मैं मार समाया इन विद कुशल होत मेरे भाई इउं पाईए हर राम सहाई रहाओ दूजा गौड़ी गुआररी महला पंजवां क्यों भ्रमीए भ्रम किसका होई जां जल थन महियल रविया सोई गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई जिस राखै आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा रहाओ सब मह वरतै एक अनंता ता तू सुख सो होए अचिंता ओहो सब किस जाने जो वरतंता मनमुख मोए जिन दूजी प्यासा बहु जोनी पवह तुर किरत लिखियासा जैसा बीजह तैसा खासा देख दर्श मन पया विगासा सब नदनी आया ब्रह्म परगासा जन नानक की हर पूर्ण आसा गौड़ी गुआर री महला पंजवा कई जन्म पय कीत पतंगा कई जन्म गजमीन कोरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एह दे संजरिया रहाओ कई जन्म सैल गिर करिया कई जन्म गर्भ हिर खरिया कई जन्म साख कर उपाया लख चौरासी जोन प्रमाया साध संग भयो जन्म प्राप्त कर सेवा पज हर हर गुरम।

रहाल अपने प्रभ सिंह हो सावधान ता तू दरगाह पावह मान उगत सियाण पसगली त्याग संत जना की चरणी लाग सर्ब जी है जा कै हाथ कदे ना विछड़े सब कै साथ अपाव छोड़ गहो तिसकी ओट निमक माही होवै तेरी छोट सदा निकट कर तिसनो जान प्रभ की आज्ञा सत कर मान गुर कै बचन मटाव हो आप हर हर नाम नानक जप जाप गौड़ी गुआरी महला पंजवा गुर का बचन सदा अबनासी गुर कै बचन कट्टी जम फासी गुर का बचन जी कै संग गुर कै बचन रचै राम कै रंग जो गुर दिया सुमन कै काम संत का किया सत कर मान रहाउ गुर का बचन अटल अशेद गुर कै बचन कट्टे भ्रम भेद गुर का बचन कतहु न जाय गुर कै बचन हर के गुण गाय गुर का बचन जी कै साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर कै बचन नरक ना पवै गुर कै बचन रसना अमृत रवै गुर का बचन प्रगट संसार गुर कै बचन नया व्यहार जिस जन होए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी गुआरी महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ मह राखिया जिन कर जतन जिन दीनी सोभा वड्याई तिस प्रभ को आठ पहर त्याई रमैया रेन साध जन पावो गुर मिले अपना खसम त्याओ रहाओ जिन कीता मूड ते बक्ता जिन कीता बे सुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवै निद पाई सो प्रभ मन ते बिसरत नाही।

जिस प्रसाद माया सिलक काटी, गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी। कहो नानक इसते किश नाही, राखन हारे कौ सलाही। गौड़ी गुआरी महला पंजवां, तिसकी शरण नाही पहु सोग। उसते बाहर कछु ना होग, तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार। दास अपने की राखनहार, जप मन मेरे राम राम रंग।

सेवक काल बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणतास एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूर रहे हो सब जाए गुरपूर सब परम चकाया हर सिमरत नानक सुख पाया।

रहाउ। हस पवन हस्त असवारी, जोआ चंदन सेज सुंदर नारी। नट नाटक आखारे गाया, तामह मन संतोख न पाया। तखत सभा मंडन दोलीचे, सगल मेवे सुंदर बागीचे। अखेर बिरत राजन की लीला, मन ना सुहिला पर पंच हीला। कर कृपा संतन सच कहया, सर्व सुख एहो आनंद लहया। साध संग हर कीर्तन गाईए, कहो नानक वड भागी पाईए। जां कै हर तन सोई सुहेला, प्रभ कृपा ते साध संग मेला। रहाउ दूजा गौड़ी गुआरवी महला पंजवां।

संसार जो हलाहल सो पीवै बवरा अमृत नाम जानै कर कौरा साध संग कै नाही नेर लख चौरासी ब्रह्मता पेर एकै जाल फहाए पंखी रस रस भोग करहै बहुरंगी कहो नानक जिस पये कृपाल गुरपूरै ताके काटे जाल। गौड़ी गुआरी महला पंजवां तौ किरपा ते मार्ग पाईऐ प्रभ किरपा ते नाम ते आईऐ प्रभ किरपा ते बंधन।

नाम गुण गाओ, निमक निमक हर हर हर त्याओ, आन ना सुनिए कतु जाइए, साध संगत बड़ पागी पाइए, आठ पहर जिहवे आराद, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद, इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसनी अमोली, बनस्पत मौली फल फूल पेडे, एह रस राती बहुर ना छोड़े, आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पए है सहाई, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, मन मंदर तन साजी बार, इस ही मधे बस्त अपार, इस ही पीतर सुनियत साह, कवन बापारी जाका उहां वसाह, नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी, रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जय, कमन सो जुगत जित कर पीजै, पाए लगो तज मेरा तेरै, कमन सो जन जो सौदा जोरै, महल साहा का किन बिद पावै, कमन सो बिद जित पीतर बुलावै, तू वड साह जाके कोट बन जारे, कमन सो दाता ले संचारे, खोजत खोजत निज कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जब मेले साह, कहो नानक गुर कै विसार, गौड़ी महला पंजवां गवाररी, रैन दिनस रह इक रंगा, प्रभ को जाने सद ही संगा, ठाकुर नाम कियो उनवर्तन, तृप्त अगावन हर कै दर्शन, हर संग राते मन तन हरे, गुर पूरे की सरनी परे, रहाओ चरण कमल आत्म आधार, एक निहार है आज्ञाकार, एको बनज एको व्यवहारी, अवर न जान है बिन निरंकारी, हरख सोग दोहू ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग अर जुगते, दिस है सब मह सब ते रहते, पार ब्रह्म का उए ध्यान धरते, संतन की महिमा कमन बखानो, अगाध बोध किस मित नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना, तुझ बिन निमख ना जाई रहना।

रंग रसा तू मन है आधार, तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया, मन तने अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुरते पाया, सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है, गौड़ी गुआरी महला पंजवा, व्यापत हरक सोग विस्थार, व्यापत सुरग नर के अवतार, व्यापत धन निरधन पेख सोभा, मूल ब्यादि व्याप सलोभा, माया व्यापत बहु प्रकारी, संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी, रहाउ व्यापत हम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता, व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत भूम रंक अर रंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा, व्यापत सेज महल सिंगार, पंच दूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म करे हौ फासा, व्यापत गिरस्त व्यापत उदासा, चार व्यवहार व्यापत एह जात, सब किश व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापै माई, कहो नानक जिन तूर संत पाई, ताके निकट न आवै माई, गौड़ी गुआर री महला पंजवां।

मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रह, साबत वस्त ओह अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारी, सुने नगर परे ठगहारी, उन तेरा कै बाप ना माई, उन तेरा कै मीत ना पाई, दर्ब स्याणप ना हुए रहते, साध संग ओए दुष्ट वस होते।

कर कर्म देख बोले सुने सब आप सदा संग ताको मन जाप संत प्रसाद भयो परगास।

पार ब्रह्म स्यों लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपूरै मेटिया अंधियारा नानक का प्रभ अपर अपारा गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जा कै कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ ना व्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर क्या यह।

कृतपाल अगमय गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्व निदान

जामी सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवा जी जुगत जां कह है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ रब चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाए बिन हर पव काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जां की जोत जी परगास जां की बख्शना में तय कोए सिमर सिमर प्रभ निरपव होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज्जन इशनाम।

पुरख जपै भगवान आठ पहर हर हर गुण गाऊं कहो नानक कहो तिस बल जाऊं राग गौड़ी ग्वारनी महला पंजवा चौपदे दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना जो तज छोड़न तिस सियो मन रचना कहो गसाई मिली ऐ के जो बिबरजत तिस सियो नेह रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे ना राती बावे मार्ग टेढ़ा चलन।

ना मोल, परे पंडार अखूट अतोल, खाव है खर्च है रल मिल पाई, टूट ना आवे वध दो जाई, कहो नानक जिस मस्तक लेख लखाए, सो एत खजाने लियार लाए, गौड़ी महला पंजवां, डर डर मरते जब जानिए दूर, डर चूका देखिया भरपूर, सतगुर अपने कौ बलिहारे, छोड़ ना जाई सर पर तारे रहाव, दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम, बुरा भला कोई ना कही जै, छोड़ मान हर चरण गही जै, कहो नानक गुरमंत्र चितार, सुख पावे साचे दरबार, गौड़ी महला पंजवां, जानता मीत साजन है समिया, तिस जन कहो कहो का की कमिया, जा की प्रीत गोबिंद स्यों लागी, दुख दर्द भ्रमता का भागी रहाव, जा कौ रस हर रस है आयो, सो अन रस नाही लपटायो, जा का कहया दरगाह चले, सो किस को नदर लै आवे तले, जा

सगल निदहना गौरी महला पंजवा अगम रूप का मन महथाना गुर प्रसाद किना बिरले जाना सहज कथा के अमृत कुंटा जिसह प्राप्त तिसले पुंचा रहा अनहत बाणी थान निराला तां की धुन मोहे गोपाला तह सहज अखारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हरख अनंत सोग नहीं बिया सो कार्य गुरु नानक को दिया गौड़ी महला पंजवा कवन रूप तेरा अरादो कवन योग काया ले साधो कवन गुण जो तुझ लै गावो कवन बोल पार ब्रह्म री जावो रहाओ कवन सो पूजा तेरी करो कवन सो बिद जित पव जल तरो कवन तप जित तपिया होए कवन सो नाम हमै मल खोए गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल काल जिस कर कृपा

नानक जो गुर बख्श मलाया तिसका सब किश जिसका हर राया। गौड़ी महला पंजवां गुर के चरण ऊपर मेरे माथे ताते दुख में सगले लाथे। सतगुरे अपने कौ कुर्बानी आत्म चीन परम रंग मानी रहाव। चरण रेण गुर की मुख लागी हम बुद्ध तिन सगल त्यागी। गुर का शब्द लगो मन मीठा पार ब्रह्म ताते मोहे दीठा। गुर सुखदाता गुर करतार जी प्राण नानक गुर आधार। गौड़ी महला पंजवां रे मन मेरे तू ता को आहे जाके।

देव आद पुरख अपरंपर देव तिसे ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जा की प्रीत सदा सुख होए नानक गावे गुर मिल सोए गौड़ी महला पंजवा मीत करे सोई हम माना मीत के करतब कुशल समाना एकाटेक मेरे मन चीता जिस किस करना सो

अंतर्यामी सम्राट पुरख पार ब्रह्म स्वामी हम दासे तुम ठाकुर मेरे मान महत नानक प्रभ तेरे गौड़ी महला पंजवां जाको तुम पए समरथ अंगा।

सो वड्डा जिन राम निवलाई रहाउ। भूमिया भूम ऊपर नित लुजै, छोड़ चलै तृष्णा नहीं बुझै। कहो नानक एहो तत बीचारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा। गौड़ी महला पंजवां, पूरा मार्ग पूरा इशनान, सब किश

हर कै मार्ग पतत पनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करनहार सद वसै हदूरा कहो नानक मेरा सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा संत की तूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट संत का दर्श पूर्ण इशनान संत कृपा ते जपिए नाम रहाव संत कै संग मिटिया अहंकार दृष्ट आवे सबे कंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय लै संचा कहो नानक जा का पूरा कर्म तिस भेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल पर गासै हर सिमरत त्रास सब नासै सामत पूरी जित हर गुण गावे वड्डे भाग साधु संग पावे रहाव साध संग पाईए निदनामा साध संग पूर्ण सब कामा

साध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब ताज अनाथ इक सरण आयो ऊच अस्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसया करनहार नानक मन बसया गौड़ी महला पंजवा कर कर टहल रसना गुण गावो चरण ठाकुर कै मार्ग धामो भलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम पै पार उतरिया रहाओ नेतर संतन का दर्शन पेख प्रभ अवनासी मन महलेख सुन कीर्तन साध पह जाए जन्म मरण की त्रास मटाए चरण कमल ठाकुर उरतार दलाब दे नानक निस्तार गौड़ी महला पंजवां जाको अपनी कृपा धारे सो जन रसना नाम उचारे हर बिसरत सहसा दुख व्यापे सिमरत नाम परम पौ भागै।

करत जन सोहै ता कौ माया अगन ना पोहै। मन तन मुख हर नाम दयाल नानक तजिया ले।

गुरपुरा पेतिया लिवलाई रहाउ। हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत। आनंद भये गुर मिलत कृपाल, कर कृपा।

साध संग मिलप जह गोपाला गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारी आवन जान रही सुख सारी पै बिन से निरपो हर त्याया साध संग हर के

जात पूरै गुण काढे, जन्म जन्म के टूटे गांडे। कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जिस भेटत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवां, साध संग तां की सरनी परो, मन तन अपना आगै धरो। अमृत नाम पीवो मेरे भाई, सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ। ताज अवमान जन्म मरण निवारो, हर के दास के चरण नमस्कारो। सास सास प्रभ मन है सुमाले, सो तन संचो जो चाले नाले। तिसह प्राप्त जिस मस्तक भाग, कहो नानक ता की चरणी लाग। गौड़ी महला पंजवां, सूके हरे किए खिन माए, अमृत दृष्ट संच जीवाए। काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ। मिट गई चिंत पुन्नी मन आसा, कर दया सतगुर गुणतासा। दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जां गुर फुरमाए। इच पुन्नी पूरे गुर मिले, नानक तेजन सुफल फले। गौड़ी महला पंजवां, ताप गए पाई प्रभ शांत, शीतल पए कीनी प्रभ दात। प्रभ कृपा ते पए सोहेले, जन्म जन्म के बिछरे मेले रहाओ। सिमरत सिमरत प्रभ का नाओ, सगल रोग का बिनसे आथाओ। सहज सुपाए बोले हर वाणी, आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ ना आवै, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवां, पले दिनस पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओह बेला कहो हों बल जाऊं, जित मेरा मन जपै हर नाऊं रहाऊं। सफल मूरत सफल ओह करी, जित रसना उचरै हर हरी। सफल ओह माथा संत नमस्कारस, चरण पनीत चलह हर मार्ग। कहो नानक भला मेरा कर्म, जित पेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवां, गुर का शब्द राख मन माहे, नाम सिमर चिंता सब जाहे।

हर हर अखर मन मह लेख रव रहे आ सरबत स्वामी गुण गावे नानके अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा पै मह रचियो सब संसारा तिस भौ नाही जिस नाम आधारा भौ न व्यापै तेरी सरना जो तुद पावे सोई करना रहाओ सोग हरख मह आवन जाना इन सुख पाया जो प्रभ पाना अग्न सागर।

अन्यवा तुमरी कृपा ते जपिया नाव तुमरी कृपा ते दरगाह धाव तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहाओ तुम मन बसे तो दुख न लागे तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी सगल कटा के अंतर जामी करूं अरदास अपने सतगुर पास नानक नाम मिले सच रास गौड़ी महला पंजवा तन बिना जैसे थोथर तुखा नाम विहून सुने से मुखा हर हर नाम जपो नित प्राणी नाम विहून त्रिग देह बिगानी रहाओ नाम बिना नाही मुख भाग पर

तू है मेरा स्वामी, सब किस तुम ते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव, जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किस वरतै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवां, ताका दर्श पाईऐ वड भागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कति न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सनीजै, दास की तूर नानक को दीजै, गौड़ी महला पंजवां, हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण बसै मन आए, भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कै आवै काम रहाओ, रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता, छोड़ अपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, विक्रम सागर तेई जन तरे, नानक जाको नदर करे, गौड़ी महला पंजवां, हृदय चरण कमल प्रभ तारे, पूरे सतगुर मिल निस्तारे, गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई, मिन साधु हर नाम त्याई रहाओ, दलभ देह होई परवान, सतगुर ते पाया नाम निशान, हर सिमरत पूरन पद पाया, साध संग पै परम मटाया, जत कत देखो तत रहया समाए, नानक दास हर की सरनाए, गौड़ी महला पंजवां, गुर जी के दर्शन कौ बल जाओ, जप जप जीवा सत गुर नाओ, पार ब्रह्म पूर्ण गुरदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन धन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवै परवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत धूर पाईऐ वड भागी, नानक गुर भेटत हर सिउं लिव लागी, गौड़ी महला पंजवां, करै दुख कर्म दिखावै होर, राम की दरगाह बांधा चोर, राम रमै सोई रामाणा, जल थल महियल एक समाणा रहाउ, अंतर बिख मुख अमृत सुनावै, जमपुर बाता चोटा खावै, अनक पड़दे मह कमावै विकार, खिन मह प्रगट होवे संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस किरपाल बिदाता, गौड़ी महला पंजवां, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूर्ण पुरख बधाता रहाउ, संतह संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरै जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से पहे निहाल, कहो नानक गुर पहे है दयाल, गौड़ी महला पंजवां, सिमरत स्वामी किल विख नासे, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिटियो अंदेसा रहाओ, साध संग कस पौ ना परांति, गुण गोपाल गाय है दिन राती, कर कृपा प्रभ बंदन छोट, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस पीवह जन नीत, गौड़ी महला पंजवां, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा, हर धन को व्यापारी पूरा,

जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीव हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै साध रवाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए तिस स्यों आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लागह कौडी बदले रतन त्याग रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुभा अमृत रस खावे है खान पान जिन दिए तिसै ना जान है स्वान कहो नानक हम लून हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मज्जन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे भाई कोट जन्म की मल लह जाई रहाओ हर की कथा रित माहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जहां कैर दैवसै भगवान कहो नानक से ही जन पूरे जिन्ना परापत साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परम है बहु जूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनहु बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उधर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरह हर नाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहु सब कोई जाते बिरथा कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लै तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान जा कर दे वसह भगवान।

कहो नानक अटल एह धर्म गौड़ी महला पंजवां कर कृपा भेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापै कोई राम रमन तरन पै सागर सरल सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम एह आसर पूर्ण पय काम जप तप संयम पूरी वडियाई

फल पाए। उक्त सियानप इससे कश नाही, कर कृपा नानक गुण गाही। गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम। बिचर संसार पूर्ण सब काम, वड भागी हर कीर्तन गाइए। पार ब्रह्म तू देहे ता पाइए रहाउ, हर के चरण हृदय उरतार। भव सागर चढ़ उतरह पार, साधु संग करहो सब कोय। सदा कल्याण फिर दुख ना होए, प्रेम भगत भज गुणी निदान। नानक दरगाह पाइए मान, गौड़ी महला पंजवा। जल थल महियल पूर्ण हर मीत, ब्रह्म बिन से गाए गुण नीत। उठत सोवत हर संग पहरुआ, जा कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाउ। चरण कमल प्रभ हृदय निवास,

सिमर स्वामी हर सामीत गौड़ी महला पंजवा सा मत निर्मल कहियत तीर राम रसायन पीवत बीर हर के चरण हृदय कर ओट जन्म मरण ते होवत छोट रहाओ सो तन निर्मल जित उपजै न पाप राम रंग निर्मल प्रताप साध संग मिट जात बिकार सब ते ऊज एहो उपकार प्रेम भगत राते गोपाल नानक जाचे सादरवाल गौड़ी महला पंजवा ऐसी प्रीत गोविंद सिंह लागी मेल लए पूर्ण वड भागी रहाव परता पेख बिकसै ज्यों नारी त्यों हर जन जीवै नाम चतारी पूत पेख ज्यों जीवत माता ओत पोत जन हर स्यों राता लोभी आनंद करै पेख तना जन चरण कमल स्यों लागू मना बिसर नहीं एक तिल दातार नानक के प्रभ प्राण आधार गौड़ी महला पंजवा राम रसायन जो जन गीदे चरण कमल प्रेम भगति बीते रहाओ आन रसादि सह सब चार नाम बिना निफल संसार अंध को

कहो नानक सा कथनी सार, मान लेत जिस सिरजनहार। गौड़ी महला पंजवां, नित प्रत नावन राम सर कीजै। झोल महारस हर अमृत पीजै। रहाउ निर्मल उदक गोविंद का नाम, मज्जन करत पूर्ण सब काम। संत संग तह गोष्ट होए, कोट जन्म के किल विख खोए। सिमरह साध करह आनंद, मन तन रविया परमानंद। जिसह प्राप्त हर चरण निदान, नानक दास तिसह कुर्बान। गौड़ी महला पंजवां।

संत संग जप केवल नाम, कर्म तर्म नियम ब्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा, ता की पूर्ण होई काल, जा की प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपर अपार, कहो नानक जिन तजे बिकार, गौड़ी महला पंजवां, जीवत छाड़ जाहे देवानी।

रहाउ। बिखैठ गौरी जिन जिन खाई, ताकी तृष्णा कबहू न जाई। दारण दुख दुत्तर संसार, राम नाम बिन कैसे उतर सपार। साध संग मिल दोए कुल साध, राम नाम नानक आराध। गौड़ी महला पंजवा, गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी। पार ब्रह्म सा अग्न मह साड़ी, पूरा न्याओ करे करतार। अपने दास को राखन हार, रहाउ आद जगाद प्रगट प्रताप। निंदक मुआ उपज वद ताप, तिन मारिया जे रखे न कोई। आगे पाचे मंदी सोए, अपने दास राखे कंठ लाए। शरण नानक हर नाम त्याए। गौड़ी महला पंजवा, महजर झूठा की तुने आप। पापी को लागा संताप, जिसह सहाई गोविंद मेरा। तिसको जम नहीं आवे नेरा, रहाउ साची दरगाह बोले कूड़। सिर हाथ पछोड़ै अंधा मूड़, रोग व्यापे कर दे पाप। अदली होए बैठा प्रभ आप, अपन कमाए आपे बांधे। दर्ब गया सब जी कै साथे, नानक शरण परे दरबार। राखी पैज मेरे करतार, गौड़ी महला पंजवा। जन की धूर मन मीठ खटानी, पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी। रहाउ अहम बुद्ध मन पूर थिधाई, साध तूर कर सुध मंजाई। अनक जला जे धोवै देही, मैल न उतरै सुध न तेही। सतगुर भेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया पौ काल। मुकत भुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा।

कहो नानक जिस कृपा तार है हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचार है गौड़ी महला पंजवां थिर कर बैसो हर जन प्यारी।

बादशाह सहा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपव होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, सरन परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाहे ना जले, हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुफल फला, सब पै मिटह तुम्हारे नाई, पेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संग राते मिटै सब चिंता, हर सिंह सो रचै जिस साध का मंता, हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस, हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अन दिन जागे, हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते ब्रह्म पौ नसै, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिन कहो बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौड़ी महला पंजवा, उदम करत सीतल मन पहे, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पहे आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कारे आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाव, नेतर पनीत पेखत ही दर्स, तन मस्तक चरण कमल ही परस, गोबंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया, जन की कीने आप सहाय, सुख पाया लग दासह पाए, आप गया ताया पह पहे, कृपा निदान की सरनी पए, जो चाहत सोई जब पाया, तब ढूंढन कहां को जाया, अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इशनान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिट है साधु सरन दयाल रहाव, बहुत उर्द तप साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन अरादे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सिंह मन माने, अगाध बोध हरे अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे, नानक कहो प्रभ कृपा तारे, गौड़ी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया, गुरु गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, किसह अराध मेरा मन तीरा रहाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाम, ताते सिद्ध पए सगल काम, दर्शन देख सीतल मन पहे, जन्म जन्म के किल बिख गए, कहो नानक कहां पै पाई, अपने सेवक की आप पैज रखाई, गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवक को आप सहाई, नित प्रतपार है बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए, कर्ण करावन पूर्ण सच सोए रहाव, अब मन बसया करने हारा, पै बिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाते, कहन न जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास सदा सरनाई, राग गौड़ी चेती महला पंजवा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम को बल पूरन पाई, तांते बिरता ना व्यापै काई रहाओ, जो जो चितवै दास हर माई, सो सो करता आप कराई, निंदक की प्रभ पत गुआई, नानक हर गुण निरपो गाई, गौड़ी महला पंजवा, भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर,
गर्त परत गह लेहो अंगुरिया रहाउ श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटत पिंगुरिया दीना नाथ अनाथ करना में साजन मीत पिता महतरिया चरण कमल हृदय गह नानक पै सागर संत पार उतरिया राग गौड़ी बैरागन महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद दई गुसाई मीतला तू संग हमारे बास जियो रहाओ तुझ बिन करी ना जीवना त्रिग रहना संसार जी प्राण सुख दातिया निमख निमख बलिहार जी हस्त अलंबन देहो प्रभ गर्त हो उदर गोपाल मोहे निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल क्या सुख तेरे सम्मला कवन विधि विचार सरल समाई दास हित ऊचे अगम अपार सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महारस माहे सो प्रसन्न भय केसवा सेजन हर गुण गाहे मात पिता सुत बंध पो तू मेरे प्राण आधार साध संग नानक भजै बिख तरिया संसार गौड़ी बैरागण रोहोए के संत के घर महला पंजवां।

रहाव। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी। जिन हर पाया से वड भागी, ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै। जोगी जति सिद्ध हर आहै, जिस है प्राप्त सो हर गुण गाए। ताकि शरण जिन बिसरत नाही, बड़ भागी हर संत मलाही।

नाम आधारी राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कवनो गुण प्राण पत मिलो मेरी माई रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी मोहे परदेसन दूर ते आई नाहिन दर्ब ना जोबन माती मोहे अनाथ की करो समाई खोजत खोजत पई बैरागन प्रभ दर्शन कहो हौ फिरत तसाई दीन दयाल कृपाल प्रभ नान साध संग मेरी जलन बुझाई गौड़ी महला पंजवा प्रभ मिलबे कौ प्रीत मन लागी पाई लगो मोहे करो बेनती को संत मिले बड़ भागी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोहे सगल त्यागी जो प्रभ की हर कथा सुनावे अन दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेट्यो पुरख रसक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी महला पंजवा।

कृष्णा रस पंकज अत तीखियन मोह की फास काटन हार जगत गुरु गोविंद चरण कमल ताके करहु निवास।

बंधन गुर तोरे ता सदा सहज सुख पायो होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर परदा खोल दिखायो नौ निद नाम निदान एक ठाई तौ बाहर कैठे जायो एक कनक अनक पांत साजी बहु प्रकार रचायो कहो नानक परम गुर खोई है इव तत्तै तत् मलायो गौड़ी महला पंजवा औद कटै दिन सरै नारी।

बसन सुहेला, एह संसार विकार सहसी मह, तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसह जगाए की आए हर रस, अकथ कथा तिन जानी जा को आए सुई विहाज हो, हर गुर ते मन है बसेरा, निज कर महल पाव हो सुख सहजे, बहुर ना हुए गो फेरा, अंतर जामी पुरख बधाते, श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास इही सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे, गौड़ी।

कृपा राखो राखन हारी। खेद कर है और बहुत संताव है, आयु शरण तुहारी। कर कर हारियो अनक बहु भांति, छोड़ है कतहु नाही। एक बात सुन ताकी ओटा, साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहे, तिन ते धीरज पाया। संती मंत दियो मोहे निरपो, गुर का शब्द कमाया। जीत लए ओए महा बिखादी, सहज सुहिली बाणी। कहो नानक मन भया परगासा, पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा, ओ अबनासी राया। निरपो संग तुम्हारे बस्ते,

नाग सदासी फेर फिरयो अरकाल ग्रसुआ पेख पेख रे कसुंब की लीला राच माच तिन्हू लो हसुआ सीजत डोर दिन से अर रैनी जी को काज ना कीनो कशुआ करत करत एव ही बिरधानो हार्यो उकते तन की नसुआ ज्यो मोहयो उन मोहनी बाला उसते कटै नाही रुच चसुआ जाग ऐसा मोहे गुरह दिखायो तौ सरल परयो तज गर्भसुआ मार्ग प्रभ को संत बतायो दृढ़ी नानक दास भगत हर जसुआ गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा रहाओ अंतर की बेद तुम ही जानी तुम ही सज्जन सोहेले सर्व सुखा मैं तुझ ते पाए मेरे ठाकुर अगह अतोले बन ना साको तुमरे रंगा गुण निदान सुखदाते अगमे गोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते प्रम पौ काट किए नेह केवल जब ते हूं मैं मारी जन्म मरण को चूको सहसा साध संगत दरसारी चरण पखार करूं गुर सेवा बार जाऊं लख बरिया जेह प्रसाद एहु पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कवन रीजा वै तो ही तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ सुर्ग पयाल मृत भू मंडल सर्व सुमानो एक ओही सेव सेव करत सगल कर जो रह सर्व मया ठाकुर तेरी दोही पतत पावन ठाकुर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल सीत लोही ज्ञान ध्यान नानक वडियाई संत तेरे स्यों गाल गलोही गौड़ी महला पंजवा मिलो प्यारे जिया प्रभ की आत्मा राथिया रहाओ अनक जन्म बहु जोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मनुख दे पाई है देहो दर्श हर राया सोई हुआ जो तिस भाणा अवर ना किन्ही कीता तुमरे भाणे परम मोहे मोहया जागत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारी कृपा निद दयाला राख ले हो पिता प्रभ मेरे अनाथ है कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत कह पाछे कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बांछे गौड़ी महला पंजवा हौ ता कह बलिहारी जा कह केवल नाम आधारी रहाओ महिमा ता की कीतक गनिए जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन समसारे अवर ना दाते जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण पर सो तरिया संत संग पूर्ण आसा ता कै चरण परों ता जीवा जन कै संग निहाला भगतन की रेन होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला राज जोबन अवद जो दीसै सब किस जोग मह काटिया नाम निदान सद नव तन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुने आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ नौ खंड पृथ्वी इस तन मह रविया निमख निमख नमस्कारा दीखिया गुर की मुंदरा कानी दृढ़े हो एक निरंकारा पांच चेले मिल पए इकतरा एक सकै वस किए दस बैरागने आग्या कारी तब निर्मल जोगी थिए परम जराए चराई बेपूता पंत एक कर पेखिया सहज सूख सो कीनी भुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जह पौ नाही तहां आसन बांधे हो सिंघी अनहत बानी
तत बीचार डंडा कर राखे हो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वडभागी भेटै माया के बंधन काटै सेवा पूज करो तिस मूर्त की नानक तिस पग चाटै गौड़ी महला।

त्यो ते तन ते गुर शब्द दीपक परगासा भ्रम की जाली ताकी काटी जाको साध संगत विश्वासा तारी ले भवजल तारू बिखड़ा बोहित साधु संगा पूर्ण होई मन की आसा गुर भेट्यो हर रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्त अगाए नानक हर जियो ता को देवे जां को हुक्म मनाए गौड़ी महला पंजवा दया मया कर प्राण पत मोरे मोहे अनाथ सरन प्रभ तोरी अंध कूप मह हाथ दे राखो पशु सियानप उकत ना मोरी रहाओ कर्म करावन सब किश तुम ही तुम समरथ नाही अनहोरी तुमरी गातमित तुम ही जानी से सेवक जिन भाग मथोरी अपने सेवक संग तुम प्रभराती ओत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओह चंद चकोरी राम संत मह भेद किश नाही एक जन कई मह लाख करोरी जां कहि है प्रगट प्रभ होआ आनंदन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अति ऊचे सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी नानक को प्रभ की जय कृपा उन संतन कै संग संगोरी गौड़ी महला पंजवा तुम हर से तीराते संत हो नबाहे लेहो मोको पुरख बधाते ओड़ पहचाव हुदाते रहाओ तुमरा मर्म तुमा ही जानिया तुम पूर्ण पुरख बधाते राखो सरन अनाथ दीन कहो करहो हमारी गाते तरन सागर बोहित चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी भांति कर कृपा जिस राखो संगे ते पार पुराते ईत ऊत प्रभ तुम समरथा सब किस तुमरे हाथे ऐसा निदान देहो मोको हर जन चले हमारे साथे निर्गुण यारे कौ गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नानक हर पेटे मन तन शीतल त्रापे गौड़ी महला पंजवा सहज समायु देव मोको सतगुर भये दयाल देव रहाउ काट जेवरी कियो दासरु संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोको अचरज गुरह दिखायो पयो प्रगास सर्व उजियारा गुर ज्ञान मनह प्रगटायो अमृत नाम पियो मन तृप्तया अनपह ठहरायो मान आग्या सर्व सुख पाए दुखा ठाउ गवायो जो सो प्रसन्न पये प्रभ ठाकुर सब आनंद रूप दिखायो ना किस आवत ना किस जावत सब खेल कियो हर रायो कहो नानक अगम अगम है ठाकुर भगत टेक हर नायो गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ता कियो टगही जैरे जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर ताको नाम जपी जैरे रहाओ मन की मत त्याग हो हर जन हुक्म बूझ सुख पाई रे जो प्रभ करे सोई भल मानो सुख दुख योही त्याई रे कोट पतत उधारी खिन मै करते बार ना लागे रे दीन दर्द दुख भंजन स्वामी

राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबहू ना मनहु बिसारी इहां उहां सर्ब सुख दाता सगल कटा प्रित पारी रहाउ महा कष्ट काटे खिन पीतर रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरणी जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राख पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन मह जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारी गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म नाहारी काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारी कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारी राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रत्न अमोलक साध संगत जप एक खिना रहाव सुत संपत बंता बनोद छोड़ गए बहुलोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चल्यो है मूड़ नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन धर संग रूलिया मोहे मोहया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है गौड़ी महला पंजवा मन धर तरबे हर नाम नू सागर लहर संसार संसार गुर बोहित पार ग्राम नू रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिखिया पसरी अत घनी उबरे जप जप हर गुनी मतवारो माया सोया गुर भेटत भ्रम पौ खोया कहो नानक एक त्याया घट घट नदरी आया गौड़ी महला पंजवां दीवान हमारू तुही एक सेवा थारी गुरह टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले आया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजहो मिल एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा जियरे ओला नाम का अवर जे करन कराम नु तिन मह पहो है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाई है वड्डे भाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है आगे तिल नहीं मानी है अहम बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया रहाव कर्ण करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक राज जोगन प्रभ तू तली तू निर्गुण तू सरगुणी इहां उहां तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तुही तान गौड़ी महला पंजवा हर हर हर आराधी है संत संग हर मन वसै परम मोह पहो साधी है रहाओ वेद प्राण सिमरत भने सब ऊच बराजत जन सुने सगल अस्थान भय पीत चीन राम सेवक भय रहत कीन लख चौरासी जोन फिरह गोविंद लोक नहीं जन्म मरह बल बुद्ध स्यान पहु मैं रही हर साध सरन नानक गही गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाई है नीत नीत हर सेवी है सास सास हर त्याई रहाओ संत संग हर मन वसै दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै संत प्रसाद हर व्यापी है सो जन दुख ना व्यापी है
जां को गुर हर मंत्र दे सो उबरिया माया अग्न ते। नानक को प्रभ मया कर, मेरा मन तन वासै नाम हर। गौड़ी महला पंजवां, रसना जपिए एक नाम, इहां सुख आनंद घना। आगै जी कै संग काम रहाओ, कटिया तेरा अहं रोग। तू गुर प्रसाद कर राज जोग, हर रस जिन जन चाखिया। ता की तृष्णा लाथिया, हर विश्राम निध पाया। सो बहुर न कत ही ताया, हर हर नाम जां को गुर दिया। नानक ता का पहो गया, गौड़ी महला पंजवां। जां को बिसरे राम नाम, ताहूं को पीर। साध संगत मिल हर रवह, से गुणी गहीर रहाव। जां को गुरमुख हृदय बुध, ता कै कर तल लव निध सिध। जो जान है हर प्रभ धनी, किस नाही ता कै कमी। करने हार पछानिया, सर्ब सुख रंग माणिया। हर धन जां कै ग्रह वसै, कहो नानक तिन संग दुख नसै।

मेरा मन धीरा एक टेक एको आधारा जन नानक हर की लागा कारा गौड़ी महला पंजवा है कोई ऐसा हो मैं तोरै इस मीठी ते एहो मन हो रह रहा अज्ञानी मनुख भया जो नाही सो लोरै रैण अंधारी कारिया कमन जुगत जित भोरै भ्रम तो हारिया अनक विधि कर टोरै कहो नानक कृपा पही साध संगत निद मोरै गौड़ी महला पंजवा चिंता मन करना मई रहाओ दीन दयाला पार ब्रह्म जाकै सिमरन सुख भय अकाल पुरख अगाध बोध सुनत जसो कोट अग खय कृपा निद प्रभ मया धार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन सरन प्रभु सुख पाए जान दिन बिसरै प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाय रहाव एक रैन के पहुन तुम आए बहु जुग आस बंधाए ग्रह मंदर संपै जो दीसै ज्यों तरवर की छाए तन मेरा संपै सब मेरी बाग मिलक सब जाए देवनहारा बिसरियो ठाकुर खिन मह होत पराए पहरे बागा कर इशनाना चोआ चंदन लाए निरपहो निरंकार नहीं चीनिया ज्यों हस्ती नवाए जो होए कृपाल ता सतगुर मेले सब सुख हर के नाए मुक्त भया बंधन गुरु खोले जन नानक हर गुण गाए गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए रत्न जन्म सफल गुर किया दर्शन को बल हरिये रहाव जेते सास ग्रास मन लेता तेते ही गुण गाइये जो हुए दयाल सतगुरे अपना ता एह मत बुद्ध पाइये मेरे मन नाम लए जम बंध ते छूटे है सर्व सुखा सुख पाइये सेव स्वामी सतगुर दाता मन बंचत फल आईए नाम इष्ट मीत सुत करता मन संग तुहारे चाले कर सेवा सतगुरे अपने की गुर ते पाईए पाल गुर कृपाल कृपा प्रभ धारी बिन से सर्व अंदेसा नानक सुख पाया हर कीर्तन मिटियो सगल कलेशा राग गौड़ी महला पंजवा।

अनेक प्रकारी परिग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजिए अनेक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही मह लुजिए जा कोरे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजिए गौड़ी महला पंजवा सबहू को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो दंड धर हो।

कीर्तन हुए उदार, राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पायो बाल बुद्ध सुखरे, हरख सोग मान मृत दुख सुख, चित समसर गुर मिले रहाओ, जो लो हो किस सोचो चितों,

किते बंद परे जो साधु कर मस्तक धरियो तब हम मुक्त भए जो लो मेरो मेरो कर तो तौ लो बिख घेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जो लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान भरे पोट डार गुर पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय गौड़ी माला महला पंजवा भावन त्यागियो री त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोबिंद आग्यो रहाओ मान अभमान दो समाने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो बास बासरी एक स्वामी उद्यान दृष्टाग्यो निरपौ भये संत भ्रम डार्यो पूर्ण सर्वाग्यो जो किस करतै कारण कीनो मन बुरो न लाग्यो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जाग्यो जन नानक ओड़ तुहारी परयो आयो सरनाग्यो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लाग्यो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन सीतल मन सीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख त्रिशन सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर्मस्तक गुर पूरे तरेओ मन जीतो जग सारी तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मूके अचरज एक सुनो रे भाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकुर जो पेटे हो तो बिसरी तात पराई कहो ना जाई एहो अचंभव सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच भये बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्व लोक माया के मंडल गिर गिर परते तरनी रहाओ शास्त्र सिमरत वेद बिचारी महापुरखन इउं कहिया बिन हर भजन नाही निस्तारा सुख ना किन्हू लहिया तीन भवन की लक्ष्मी जोरी बूजत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावे फिर तो पहरे पहरे अनक बलास करत मन मोहन पूरन होत ना कामा जल तो कबहू ना बूजत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारे नानक जन की धूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको एह बिद को समझावे करता होए जनावे रहाओ अनजानत किस इन्ह कमानो जप तप कशु ना साधा दह दिस लै इहो मन दौरायो कमन कर्म कर बांदा मन तन धन भूम का ठाकुर हौ इसका इहो मेरा परम मोह कस सूजस नाई एह पैखर पए पैरा तब इहो कहां कमावन परया जब इहो कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किस आपह करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन इहो रचन रचाया कहो नानक करनहार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिरथे जप तप संयम कर्म कमाणी एह ओरे मूसे रहाओ वर्त नेम संयम मह रहता इनका आड़ ना पाया आगे चलन और है भाई ऊहा काम ना आया तीर्थ नाए अर धरनी भ्रमता आगे ठहर ना पावे ऊहा काम ना आवे एह बिद ओह लोगन ही पति आवे चतर वेद मुख बचनी उचरे आगे महल ना पाईए बूझे ना ही एक सुधाखर
ओहो सगली झाख चखाई है। नानक कह तो एहो बीचारा, जे कमावै सो पार ग्रामी। गुर सेव हो अर नाम त्याव हो, त्याग हो मन हो गुमानी। गौड़ी माला पंजवा माधो, हर हर हर मुख कही है। हम ते कशु ना हुवै स्वामी, ज्यो राखो हो त्यो रही है। रहाओ क्या किस करे के करने हारा, क्या इस हाथ बिचारे। जित तुम लाव हो तित ही लागा, पूरन खसम।

जियो जिन प्रभ त्याया सो शोभा वंता जियो जिस साधु संगत तिस सब सुकरनी जियो जन नानक सहज समाई जियो।

तेन त्रे पवन सुख परमानंदा जीओ सेज सुहावी इहो मन बिकसंदा जीओ पेख दर्शन इहो सुख लहिया जीओ चरण पखार करी नित सेवा जी।

मन जीवै भाई जीओ, गुर प्रसादी सो हर हर पाई जीओ, सब किस प्रभ का प्रभ किया जाई जीओ, प्रभ को सद बल जाई जीओ, एहो नदान जपै बड़ भागी जीओ, नाम निरंजन ए

हर जस सुनिया जिस ते सोई भाई मित्र सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे क्यों गोविंद मनो विसारी है जिस सिमरत दुख जाए जिस लड़ लगे है जीवी है भवजन पई है पार मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रास नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबास गौड़ी बाज महला पंजवां।

रहियो राम सरनाई। गौड़ी महल्ला नौवा, प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एहन समग्न रह माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यो, एहे विद आप बंधावे, मृग तृष्णा ज्यो झूठो इहो जग, देख तास उठतावे। भुगत मुक्त का कारण स्वामी, मूर्ता ही बिसरावे, जन नानक कोटन मैं को, भजन राम को पावे। गौड़ी महला नौवा, साधु इहो मन गहियो ना जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, जाते फिर न रहाई रहाओ। कठन क्रोध घट ही के भीतर, जेहे सुध सब बिसराई।

गाई जन नानक हर भये दयाला तौ सब बिद बन आई गौड़ी महला नौवा साधु गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा काहे गवावो रहाओ पतत पनीत दीन बंद हर सरन ताहे तुम आवो गज को त्रास मिट्यो जेह सिमरत तुम काहे बिसरावो ताज अभमान मोह माया पुन भजन राम चित लावो नानक कहत मुक्त पंत एहो गुरमुख हुए तुम पावो गौड़ी महला नौवा को माई भूल्यो मन समझावे वेद पुराण साध मग सुन कर निमख न हर गुण गावे रहाओ दुर्लभ देह पाए मानस की बिरथा जन्म सरावे माया मोह महा संकट बन तास्यो रुच उपजावे अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यो नेहो न लावे नानक मुक्त ताहे तुम मानो जेहे कट राम सुमावे गौड़ी महला नौ साधो राम सरन बिसरामा वेद पुराण पढ़े को एह गुण सिमरे हर को नामा रहाओ लोभ मोह माया ममता फुन औ बिखियन की सेवा हरख सोग परसै जे नाहिन सो मूरत है देवा सुर्ग नरक अमृत बिख ए सब।

प्राणी गौड़ी महल्ला नौवा मन रे कहां भयो तै बौरा अहनस औद कटै नहीं जाने भयो लोभ संग होरा रहा जो तन तै अपनो कर मान्यो हर सुंदर ग्रह नारी इनमें कछ तेरो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रत्न जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन भयो चरणन सियो बिरथा औध सरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुन गावे और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावे गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल भय भंजन सरन ताहे तुम पार रे रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत तां को नाम ही है मोह धर रे पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहुर नह पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं भव सागर कह पार उत्तर रे राग गौड़ी अष्टपदियां महला पहला गौड़ी गुआर री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निध सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहया भिखमार त्रिकुटी छूटी विमल मजार गुर की मत जिए आई कार इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पए सूहा रंग माया नदर पई बिख ठाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर स्यों लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा चित हर स्योरा ता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोए न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी राचो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज घर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे सुमाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना नह भूलो नह परम पुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सहज समाना गौड़ी गुआर री महला पहला मन कुंचर काया उद्यान गुरु अंकस सच शब्द निशान राज द्वार है सोभ सो मान चतराई न चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर्म है अमृत तस कर ले नन्ना कार न कोई करे राखे आप वड्याई दे नील अनिल अग्न इक ठाई जल निवरी गुरबूज बुझाई मन दे लिया रहस गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा मैं आँखों कैसा सागर डूंघर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन न डरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने तीने पौन जिन कहया तिन कहन बखानिया जिन बूझया तिन सहज पछानिया देख बीचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त एक नाई तही निरंजन रहया समाई निज कर व्याप रहया निज ठाई पुस्तत करह केते मन प्रीत तन मन सूचै साच सोचीत नानक हर पज नीता नीत गौड़ी गुआर री महला पहला ना मन मरै न कार्ज होय मन वस दूता दुरमत दोय।

मन भूलो बो चित विकार, मन भूलो सिर आवे भार, मन माने हर एक अंकार, मन भूलो माया घर जाए, काम बुरु दूर है ना ठाए, हर भज प्राणी रसन रसाए, गैवर हैवर कंचन।

0: कृपा जोगी निरंजन त्यावे अण दिन जागे सच लिव लावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारी जरा मरण गत गर्भ निवारी आप तरह पितरी निस्तारी सतगुर सेवे सो जोगी होए पै रच रह सो निरपो होए जैसा सेवै तैसो होए नर निह केवल निरपो नाओ अनाथा नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने गुर कै शब्दे आप छाने
1: साचै शब्द दर निसाने
0: शब्द मरै तिस निज कर वासा आवै ना जावै चूकै आसा गुर कै शब्द कमल परगासा जो दीसै सो आसन रासा काम क्रोध बिख भूख प्यासा नानक बिरले मिलै उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिलै सुख होई दुख विसरै पावै सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अठसठ मज्जन चरना धूरी रहाव नेत्र संतोखे एक लिवतारा जेवा सूची हर रस सारा सच करनी अब अंतर सेवा मन तृप्ता सिया अलख अपेवा जह जह देखो तह तह साचा बिन बूझे झगरत जग काचा गुर समझावै सोजी होई गुरमुख विरला बूझै कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु भये बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रि भवन धारी

ब्राह्मण हितकारी, क्रोध बनासै सगल विकारी, पत मत खोवै नाम वसारी, पर कर चीत मनमुख डोलाए, गल जेवरी धंधै लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए, ज्यो तन विधवा पर को देई, काम दाम चित पर वस सेई, बिन पेर त्रिपत ना कबहू होई, पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा, ज्यो चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यो मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हठ कर मरै न लेखै पावै, वेस करै बहु भस्म लगावै, नाम विसार बहुर पछतावै, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम बसार सह जम दुख रहाव, चोआ चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम बसारे है सब कूड़ो कूर, नेजे वाजे तखत सलाम, अदकी तृष्णा व्यापै काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावह नाम सुहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, किसको वाह वाह जे वाट दिखावे, किसको वाह वाह जे शब्द सुनावे, किसको वाह वाह जे मेल मलावे, वाह वाह तिसको जिसका एहो जियो, गुर शब्दी मत अमृत पियो, नाम वडाई तुद भाणे दियो, नाम बिना क्यों जीवा माए, अन दिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रते पत पाए, गौड़ी महला पहला, हौं मैं करत भेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया, हौं हौं करत नहीं सच पाईऐ, हौं मैं जाए परम पद पाईऐ रहाऊ, हौं मैं कर राजे बहुत आवह, हौं मैं खपह जन्म मर आवह, हौं मैं निवरै गुर शब्द विचारै, चंचल मत त्यागै पंच संघारै, अंतर साच सहज घर आवह, राजन जान परम गत पावह, सच करनी गुर परम चकावै, निरपो कै घर ताड़ी लावै, हौं हौं कर मरना क्या पावै, पूरा गुर भेटे सो झगर चकावै, जेती है तेती केहो नाही, गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही, हौं मैं बंधन बंद पवावै, नानक राम भगत सुख पावै, गौड़ी महला पहला, प्रथमे ब्रह्मा कालै घर आया, ब्रह्म कमल पयाल ना पाया, आग्या नहीं लीनी भरम भलाया, जो उपजै सो काल संघारिया।

है। मनमुख को आवत जावत दुख मोह है रहाउ। अपयो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बहस सहज कर लही है। हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल निश्चल नहीं डोलै। गुरमत साच सहज हर बोलै, पीवै अमृत तत्व रोलै। सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पियो अंतरगत कीनी। गत मित पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार। परमहंस सच जोत अपार, जह देखो तह एकंकार। रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुर चरनी। मन ते मन मानिया चूकी अहं भरमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया। हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर ना पारिया। साच महल गुर अलख लखाया, निश्चल महल नहीं छाया माया। साच संतोखे परम चुकाया, जिनकै मन वसिया सच सोई। तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मल खोई। गौड़ी महला पहला, राम नाम चित रापै जाका। उपजंप दर्शन की जय ताका, राम ना जपो अपाग तुम्हारा। जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा रहाओ। गुरमत राम जपै जन पूरा, तित काट अनहत बाजे तूरा। जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा धार। जिन कै हिरदय हर हर सोई, तिनका दर्श परस सुख होई। सर्व जिया मैं एको रवे, मनमुख अहंकारी फिर जूनी पवे। सो बूझै जो सतगुर पाए, हउ मैं मारे गुर शब्दे पाए। अर्ध उर्द की संद क्यों जाने, गुरमुख संद मिले मन माने। हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ हुए दयाल नानक जन तरिए। सोलह अष्टपदियां ग्वारी गौड़ी किया, गौड़ी बैरागण महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ज्यो गाई को गोयली राख है कर सारा। एहन सुपाल राख ले आत्म सुख तारा। इत उतराखो दीन दयाला, तो शरणागत नजर निहाला रहा। जह देखो तह राव रहे राख राखन हारा। तू दाता भुगता तू है, तू प्राण अधारा। किरत पया अद ऊर दी, बिन ज्ञान बिचारा। बिन उपमा जगदीश की, बिन सैना अधियारा। जग बिन सत हम देखिया, लोभे अहंकारा। गुर सेवा प्रभ पाया, सच मुक्त द्वारा। निज कर महल अपार को, अपरंपर सोई।

आकाश पताला गुरमत नाम ना विसरै, सहजी पत पाई अंतर शब्द निधान है, मिल आप गवाई है। नदर करे प्रभ अपनी गुण अंक समावै, नानक मेल ना चूकई लाहा सच पावे। गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझले, तो हुए नबेरा कर कर नाम निरंजना, सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है। देखो विचारा जे लख कर्म कमावे, बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बाहरे। क्या तिन स्यों कही है बिन गुर पंथ ना सूझई, कित बिद निर्बही है।

है अपनो नहीं पाया, मीठे को कौड़ा कह कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह ऐसा कल मैं दीता, चेरी की सेवा करह ठाकुर नहीं दिस है, पोखर नीर वरोली है माखन नहीं रिस है, इस पद जो अर्थाए ले सो गुरु हमारा, नानक चीन आप को सो अपर अपारा, सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझी है सब ब्रह्म समाया, राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा अष्टपदिया, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, मन का सूतक दूजा पाओ परमे भूले आवो जाओ, मन मुख सूतक कबह ना जाए जिचर शब्द ना पीजे हर कह नाए रहाओ, सबो सूतक जेता मोह आकार मर मर जम्मे वारो वार, सूतक अगन पौणे पानी माहे सूतक भोजन जेता किस खाए, सूतक कर्म ना पूजा होए नाम रत्ते मन निर्मल होए, सतगुर सेवे सूतक जाए मरे ना जन्मे काल ना खाए, सास्त सिमरत सोध देखो कोई विण नामे को मुक्त ना होए, जोग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मह गुरमुख उतरस पार, साचा मरे ना आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए, गौड़ी महला तीजा गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय उर तारा, गुरमुख सोभा साच द्वारा, पंडित हर पर तजोह विकारा, गुरमुख भोजन उतरो पारा, रहाओ गुरमुख विचो हो मैं जाए, गुरमुख मैल ना लागे आए, गुरमुख नाम वसे मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रत्ते सुख होई, अपना मन प्रबोध हो बूझो हो सोई, लोक समझावो हो सुने ना कोई, गुरमुख समझो हो सदा सुख होई, मन मुख डंप बहुत चतराई, जो किछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे तौर ना काई, मन मुख कर्म करे बहुत अभमाना, बाग ज्यो लाए बह नित ध्याना, जम पकड़िया तब ही पछताना।

इहु संसारा नित तीर्थ नावे न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हूं मैं मारे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरे सगले कुल तारे माया मोहे नटबाजी पाई मन मुख अंध रहे लपट।

तेरा अहंकारी आप ना चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोहे अत परम पलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी गिरही अंतर साच लिवलागी नानक सतगुर सेवह सेवड भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिस ते उपजे देव मोह पयासा त्रै गुण भरमे नाही निज करवासा हम हर राखे सतगुरु मलाया अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पड़वाद बखाण है सिर मारे जमकाला तापना चीन है बन है पांड पराला मनमुख अज्ञान कुमारग पाए हर नाम बसारिया बहु कर्म दिरड़ाए पवजल डूबे दूजे पाए माया का मोहताज पंडित कहावे बिख्या राता बहुत दुख पावे जम का गल जेवड़ा नित काल संता।

माया दासी भगतां की कार कमावे, चरनी लागे ता महल पावे, सद ही निर्मल सहज समावे, हर कथा सुन है से तनवंत दिस है जुग माही, तिनको सब निवह अन दिन पूज कराही, सहजे गुण रवह साचे मन माही, पूरे सतगुर शब्द सुनाया, त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया, नानक हौ मैं मार ब्रह्म मलाया, गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा वेद पढ़े वाद वखाणे, अंतर तामस आप ना पछाणे, ता प्रभ पाए गुर शब्द वखाणे, गुर सेवा करो फिर काल ना खाए, मनमुख खादे दूजे पाए रहाओ, गुरमुख प्राणी अपराधी सीधे, गुर कै शब्द अंतर सहज रीदे, मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे, सतगुर मेले प्रभ आप मलाए, मेरे प्रभ साचे कै मन पाए, हर गुण गावह सहज सुपाए, बिन गुर साचे परम पलाए, मनमुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की सरनाई, हौ मैं मार सच लिवलाई, सदा रह हर नाम लिवलाई, सतगुर सेव है से जन निर्मल पविता, मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता, इन बिद कुशल तेरे मेरे मीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हिरदय नाम विचों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द वजाए, सतगुर ते कवन कवन ना सीधो मेरे भाई, भगती सीधे दर सोभा पाई, नानक राम नाम वडियाई, गौड़ी महला तीजा, त्रै गुण बखाणे भरम ना जाए, बंधन ना टूटे है मुक्त ना पाए, मुक्त दाता सतगुर जुग माहे, गुरमुख प्राणी भरम गवाए, सहज तुन उपजै।

बताए, साच ना छपे जे को रखै छुपाए, ज्ञानी बूझ सहज सुपाए, गुरमुख साच रहिया लिभ लाए, हम माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मलाए, सतगुर दाता शब्द सुनाए, धावत राख ठाक रहाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, नानक गुरमुख बूझै कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरमुख पावे, नामो सेवे नाम सहज समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनु कृपा करे सो हर रस पावे, अनगिन हिरदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सूखा रहाओ, हिरदय सूख पया परगास, गुरमुख गावे है सच गुण तास, दासन दास नित होवे दास, ग्रह कटंब मह सदा उदास, जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कटंब स्यों प्रीत ना होई, जां हिरदय वसिया सच सोई, गुरमुख मन बेदिया अस्थिर होई।

तन सब जग महलोए। गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसै अन दिन लिव लागी। सहजे सच मिलिया प्रसादी सतगुर पाया पूरे वडभागी। हौं मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास। गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास जब हृदय रविया चरण निवास। जिस नाम दे सोई जन पाए गुरमुख मेले आप गवाए। हृदय साचा नाम वसाए नानक सहजे साच समाए। गौड़ी मोहल्ला तीजा मन ही मन सवारिया पै सहज सुपाए। शब्द मन रंगिया लिवलाए निज कर वस्या प्रभ की रजाए। सतगुर सेवया जाए अभमान गोविंद पाईए गुणी निदान। रहाओ मन बैरागी जा शब्द पौ खाए। मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहया समाए। गुर किरपा ते मिले मलाए हर दासन को दास सुख पाए। मेरा हर प्रभ इन बिद पाया जाए हर किरपा ते राम गुण गाए। त्रिग बहु जीवन जित हर नाम ना लगे प्यार। त्रिग सेज सुखाली कामन मोह गुबार। तिन सफल जन्म जिन नाम आधार। त्रिग त्रिग ग्रह कटंब जित हर प्रीत ना होए। सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए। हर नाम बिना मैं अवर ना कोए। सतगुर ते हम गत पत पाई हर नाम ते आया दूख सगल मटाई। सदा आनंद हर नाम लिव लाई गुर मिले हमको शरीर सुध पई। हम मैं तृष्णा सब अग्न बुझई बिन से क्रोध खिमा गह लई। हर आपे कृपा करे नाम देवे गुरमुख रतन को बिरला लेवे। नानक गुण गावे हर अलख अपीवे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर तेजो मोह फेरे तेवे मुख बुरे दिसन। अन दिन बदे मारियन फिर वेला ना लहन। हर हर राखो किरपा तार सत संगत मिलाए प्रभ। हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर भाम दे जो गुरमुख पाए चलन। आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन। जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार। ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय धार। नाम मिले पत पाईए नाम मने सुख होए। सतगुर ते नाम पाईए कर्म मिले प्रभ सोए। सतगुर ते जो मोह फेरे ओए भ्रम दे ना टकन। तरत असमान ना चलई विच विस्ता पए पचन। एहो जग परम पलाया मोह ठगौली पाए। जिन्ना सतगुर भेटिया तिन नेड़ ना पिटै माए। सतगुर सेवन सो सोहणे हौं मैं मैल गवाए। शब्द रत्ते से निर्मले चलहै सतगुर पाए। हर प्रभ दाता एक तू तू आपे बख्श मलाए। जन नानक शरणागति ज्यों भावै तिवें छडाए। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहले एक ओंकार सतगुर प्रसाद। करहले मन परदेसिया क्यों मिलिया हर माए। गुर भाग पूरे पाया गल मिलिया प्यार आए। मन करहला सतगुर पुरख त्या

मन करहला अत निर्मला मल लागी हूं मैं आई परतख पीर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाई मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाय उपाय किते ना लभई गुर हृदय हर देखाय मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिव लाए घर जाए पावह रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगती मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगाह पहनाया हर आप लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख संभाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुर गोविंद संभाल रहाओ मन करहला विचारिया मनमुख फाथिया महा जाल गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया सत संगत सत गुर भाल सत संगत लग हर त्याई हर हर चले तेरे नाल मन करहला वडभागिया हर एक नदर निहाल आप छडाए छुट्टी है सतगुर चरण संभाल मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत संभाल गुर नौनिद नाम वखालिया हर दात करी दयाल मन करहला तू चंचला चतुराई छड विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन करहला बड़ भागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़गा हाथ धारिया जम मारियड़ा जमकाल अंतर निदान मन करहले भ्रम भवह बाहर पाल गुर पुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा संभाल हर रंग कदे ना उतरै गुर सेवा शब्द संभाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल राग गौड़ी गुआरी महला पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब इहो मन मह करत गुमाना तब इहो बावर फिरत बेगाना जब इहो हुआ सगल की रीना तातेर मैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मशकीनी सतगुरे अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको इहो जान समंदा तब सगले इस मेलह फंदा मेर तेर जब इनह चुकाई ताते इस संग नहीं बैराई जब इने अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल भारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किस कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एकी बूझिया तब ते इसनो सब किस सूझिया जब इहो तावे माया अर्थी नह त्रिपतावे नह ते सलाथी जब इसते इहो होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला
कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदर मह दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी, करन करामन सब किछ एक है, आपे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना नेरे सब कै संगा, सच सलाहन नानक हर रंगा, गौड़ी महला पंजवां, गुर सेवा ते नामे लागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा, तिस कै हिरदै रविया सोए, मन पन सीतल निश्चल होए, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरे रहाओ, जास जपत पौ अपदा जाए, धावत मनुआ आवे ठाए, जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत एह होमै भागे, जास जपत बस आवह पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत एह तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगाह सिजे, जास जपत कोट मिटह अपराध, जास जपत हर होवह साद, जास जपत मन शीतल होवे, जास जपत मल सगली खोवे, जास जपत रतन हर मिले, बहुर न छोड़े हर संग हिले, जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सहज निवास, जास जपत एह अग्न ना पोहत, जास जपत एहो काल ना जोहत, जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाथा, जास जपत मुश्किल कछु ना बने, जास जपत

को दया मया प्रभ सोई रहाओ। साजन दुष्ट जाकै एक समान, जीता बोलन तेता ज्ञान, जीता सुनना तेता नाम, जीता पेखन तेता ध्यान।

जपना, सहजे भोजन सहजे पाओ, सहजे मिटियो सगल दुराओ, सहजे होआ साधु संग, सहज मिलियो पार ब्रह्मन संग, सहजे ग्रह में सहज उदासी, सहजे दुबदा तन की नासी, जाके सह

सहज कथा मह आत्म रसिया तां कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया तां कै तार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयू कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जां कै सहज भया सो जाने नानक दास तां कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवां प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कटंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करहंगे बपरे तवन अस्थान जो कबह ना तरे तवन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रै गुण माया बिनस बिताला गिर तर धरन गगन अर तारी राव सस पवन पावक नीरारी दिन सरैन बरत अर पेदा सासत सिमरत बिन सिंगे बेदा तीरथ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती धोती डंडौत प्रसादन भोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुरक अर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दिसै पासारा बिनस जाए गो सगल अकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निहचल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अनपो नगर तहां सदवसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जामन मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारी भगत वसह कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे तां का विचार कहो नानक जिस कृपा करे निचल थान साध संग तरे गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसह वडियाई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुखदा मार गवावे इसह मार राज जोग कमावे रहाओ जो इस मारे तिसको पहो नाही जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे जो इस मारे सो दरगाह सिजे जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस हुवे गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल तनी जो इस मारे सो वडभागा जो इस मारे सो अनदिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सो ज्ञानी जो इस मारे सो सहज त्यानी इस मारी बिन थाए ना परे कोट कर्म जाप तप करे इस मारी बिन जन्म ना मिटे इस मारी बिन जमते नहीं छुटे इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन

इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला। जाको भये कृपाल कृपा निद, तिस भई खलासी होई सगल सिद्ध। गुर दुबदा जाकी है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी। गौड़ी महला पंजवा, हर स्यों जुड़ै ता सबको मीत, हर स्यों जुड़ै ता निश्चल चीत। हर स्यों जुड़ै ना व्यापै काड़ा, हर स्यों जुड़ै ता हुए निस्तारा।

आस नीच कुल सुने है, तिसकै संग खिन मह उदरे है। कोट मज्जन जाकै सुन नाम, कोट पूजा जाकै है ध्यान। कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुरते बिद जानी। माने अपने मैं फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अबनासी

भांत जांकी दृष्ट हुए सदा निहाल मन मेरे कर की काल ना को चतर ना ही को मूड़ा ना को हीन ना ही को सूरा जित को लाया तित ही लागा सो सेवक नानक जिस भागा गौड़ी महला पंजवा बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी त्यों जीव है साकत नाम बिसारी एक निमख जो सिमरन मह जिया कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाओ बिन सिमरन त्रिग कर्म करास काग बतन बिस्टा महवास बिन सिमरन पय कूकर काम साकत बेसुआ पूत निनाम बिन सिमरन जैसे सींग सतारा बोलह कूर साकत मुख कारा बिन सिमरन घर दब की न्याई साकत थान पृष्ठ फराई बिन सिमरन कूकर हर काया साकत लोभी बंद ना पाया बिन सिमरन है आत्म काती साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस भया कृपाल तिस सतसंग मलाया कहो नानक गुर जगत तराया गौड़ी महला पंजवा गुर कै बचन मोहे परम गत पाई गुर पूरै मेरी पैज रखाई गुर कै बचन त्यायो मोहे ना।

गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप। गुर कै बचन मिटिया मेरा भरम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म। गुर कै बचन कीनो राज जोग, गुर कै संग तरिया सब लोग। गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर कै बचन पाया नाउ निद। जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा, तिस की कटिया जम की पासा। गुर कै बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म। गौड़ी महला पंजवां, तिस गुर को सिमर।

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन गुर मोह को दीना जियो, अपना दस राय आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार, सदा

था। गौड़ी महला पंजवां, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देव, नाम बिना त्रिग त्रिग असने।

ज्यों मृतक मिथ्या श्रृंगार नाम बसार करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन मह रोग नाम त्याग करे अनकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावै कोट कर्म करतो नरक जावै हर का नाम जिन मन ना अरादा चोर की न्याई जम पुर बादा लाख अडंबर बहुत बिसथारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जान ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा आद मद ज्यो अंत न बाहै सो साजन मेरा मन चाहै हर की प्रीत सदा संग चाले दयाल पुरख।

सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग, पूर्ण पुरख नव तन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला, कहो नानक हर हर पद चीन, सर्बस नाम भगत कौ दीन। राग गौड़ी माज महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खोजत फिरे

सुन सुन पंत डराऊं बहुत पै हारिया, मैं तकी ओट संता लेहो उबारिया, मोहन लाल अनूप सर्ब साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो देखारिया, मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किस ही नाही हर पूर भंडारिया, चहो जिस जपिए नाऊं सूख सवारिया, मैं आही ओड़ तुहार नानक बलिहारिया, गुर काढ़ियो कुजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीतियो जन्म अपार बहुर ना हारिया, मैं पायो सर्व निदान अकथक थारिया, हर दरगाह सोभावंत बहां लुडारिया, जन नानक लद्दा रतन अमोल अपारिया, गुर सेवा भोजन करिय कहो पुकारिया, गौड़ी महला पंजवा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, नारायण हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो रहाओ, ताज हूं मैं गुर ज्ञान भजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसै सो संग ना गयो साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहो कोट मदे किने गुरमुख लहो, हर संतन कर नमो नमो नौ निद पाव है अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निदो, काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दोहो ते रहो, दुख अंधेरा करते मिटियो गुर ज्ञान दरड़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परेओ जन नानक गुरमुख जगत तरेओ, महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरे मन सब सुख पायो रहाओ, बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दीपायो, पावक सागर गहरू चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पूजा अपायो, पौ खंडन दुख भंजनो भगत वचल हर नायो, अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृथ संत उटायो, निर्गुण यारे की बेनती देहो दर्श हर रायो, नानक सरन तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो, गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के भोगा, इन संग अंध न जानी हौ संचो हौ खातता, सगली अवद बेहानी रहाओ, हौ सूरा प्रधान हौ को नाही मुझह समानी, जो बनवंत अचार कुलीना मन में हुए गुमानी, ज्यों उलझायो बाद बुद्ध का मरत्या नहीं बिसरानी, पाई मीत बंदप सखे पाछे तिन्हू कौ संपानी, जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी, अहम बुद्ध सुच कर्म कर एहे बंधन बंधानी, दयाल पुरख कृपा कर।

हार मिठरास भोग भोजन सब झूठ किते ना लेखे मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी ना आवे नानक सा धन मिले मलाई बिन पिर नींद ना आवे मुंदन मानड़िया जियो बिन धनी प्यारे क्यों सुख पावेगी बिन उर तारे नाह बिन कर वास नाही पुछो हो सखी सहेलिया बिन नाम प्रीत प्यार नाही वस है साच सहेलिया सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमती सौ जानिया नानक नाम ना छोड़े सा धन नाम सहज समानिया मिल सकी सहेलड़ी हो हम पिर रावेहा गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया निकस जातो रह अस्थर जाम सच पछाणिया साच की मत सदा नौतन शब्द नेहो नवेलो नानक नदरी सहज साचा मिलो सखी सहेली हो मेरी इच्छ पुन्नी जियो हम कर साजन आया मिलवर नारी मंगल गाया गुण गाए मंगल प्रेम रहसी मुंद मन अमाहो साजन रहसे दुष्ट व्यापे साच जप सच लाहो कर जोड़ सा तन करे बिनती रैन दिन रस पिनिया नानक पिर तन करह रलिया इच मेरी पुनिया गौड़ी चंत महला पहला सुन नाह प्रभु जियो ए कलड़ी बन माहे क्यों धीरेगी नाह बिना प्रभु वे परवाहे धन नाह बाजो रह ना साके बिखम रैन कनेरिया नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया बाजो प्यारे कोई ना सारे ए कलड़ी कुरलाए नानक सा तन मिले मलाई बिन प्रीतम दुख पाए फिर छोड़ियाड़ी जियो कमन मलावे रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावे शब्दे सुहावे तां पत पावे दीपक देह उजारे सुन सखी सहेली साच सहेली साचे के गुण सारे सतगुर मेली तां फिर रावी बिगसे अमृत बाणी नानक सा तन तां फिर रावे जां तिसकै मन पाणी माया मोहनी नी करिया जियो कूड़ मुट्ठी कूड़ आरे क्यों फूलै गल जेवड़िया जियो बिन गुर अत प्यारे हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिस ही का सो होवै पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल धोवे नाम बिना गत कोए ना पावे हठ निग्रह बेबाणे नानक सच कर शब्द सियापे दुबदा महल के जाने तेरा नाम सच्चा जीऊ

भगत लाहा अन दिनु तिस बाज वखर कोई ना सूजे नाम ले बहु खिन खिनु परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया नानक नाम महारस मीठा गुर पूरे सच पाया राग गौड़ी पूर्वी संत महला तीजा।

हर के गुण सारे। हिन पल रह न सकै जियो बिन हर प्यारे, बिन हर प्यारे रह न सकै गुर बिन महल न पाईऐ। जो गुर कहे सोई पर कीजै तिसना अग्न बुझाइए। हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई, बिन सेवै सुख न पाए नानक सा धन मिलै मलाई जिसनो आप मलाए। धन रैन सुहेलड़िए जियो हर सिओ चित लाए, सतगुर सेवे भाओ करे जियो विचों आप गवाए। विचों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा भाओ, सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द समाओ। हर गुण सारी ता कंत प्यारी नामे तरी प्यारू, नानक कामण नाह प्यारी राम नाम गलहारू। तन एकलड़ी जियो बिन नाह प्यारे, दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे। बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे, माया मोहे खुआई कूड़ बगुती ता फिर मुती सा तन महल न पाई। गुर शब्दे राती सहजे माती अन दिन रह समाए, नानक कामन सदा रंग राती हर जियो आप मलाए। ता मिलिए हर मेले जियो हर बिन कमन मलाए, बिन गुर प्रीतम आपने जियो कौन भरम चुकाए। गुर भरम चुकाए इओं मिलिए माए ता सा तन सुख पाए। गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए, कामण रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारे। नानक कामण हर वर पाया गुर कै पाए प्यारे। गौड़ी महला तीजा फिर बिन खरी निमाणी जियो, बिन फिर क्यों जीवा मेरी माई फिर बिन नींद ना आवै जियो। कापड़ तन ना सुहाई, कापर तन सुहावै जा फिर भावे गुरमती चित लाइए। सदा सुहागण जा सतगुर सेवे गुर कै अंक समाइए। गुर शब्द मेला ता फिर रावी लाहा नाम संसारी, नानक कामण नाह प्यारी जा हर के गुण सारी। सा धन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे, अहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे। गुर शब्द विचारे हमें मारे इन बिद मिलो प्यारे, सा धन सुहागण सदा रंग राती साचे नाम प्यारे। अपने गुर मिल रही है अमृत गही है दुबदा मार निवारे, नानक कामण हर वर पाया।

कूड़ मुट्ठी कूड़ियारी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जुए जन्म ना हारी। गुर शब्द सेवे सच समावे, बिचों हो मैं मारी। हर का नाम हृदय बसाए, ऐसा करे सिंगारू। नानक कामन सहज समाणी, जिस साचा नाम आधारू। मिल मेरे प्रीत मां जियो, तुद बिन खरी निमाणी। मैं नैणी नींद ना आवै जियो, भावै अन्न ना पानी। पानी अन्न ना भावै, मरियै हावै। बिन फिर क्यों सुख पाईऐ, गुर आगै करो बिनंती। जे गुर पावै ज्यों मिलै तिवें मिलाईऐ। आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया घर आए। नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरे ना जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो। हर कै सहज सुपाए, मन मोहन मोहे लिया जियो। दुबदा सहज समाए, दुबदा सहज समाए। कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए। एहो शरीर कूड़ कसत भरिया, कल ताई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजै, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन पिरह प्यारी, विचों आप गवाए। कामन पिर पाया जियो, गुर कै पाए प्यारे। रैण सुख सुती जियो, अंतर उर तारे। अंतर उर तारे मिलिया प्यारे, अन दिन दुख निवारे। अंतर महल पिर रावे कामन, गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सुहागण, गुर कै हेत अपारे। आव हो दया करे जियो, प्रीतम यत प्यारे। कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिंगारे। सच शब्द सिंगारे हम मैं मारे, गुरमुख कार्य सवारे। जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझै गुर बिचारे। मनमुख काम व्यापी, मोहि संतापी। किस आग्या जाए पुकारे, नानक मनमुख थाउ ना पाए। बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो। फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिया जियो। आपे बख्शन हारा, अवगुण बख्शन हारा। कामन कंत प्यारा, कट कट रहे आसमाई। प्रेम प्रीत पाए भगती पाई है, सतगुर बूझ बुझाई। सदा आनंद रहे दिन राती, अन दिन रहे लिवलाई। नानक सहजे हर वर पाया, सा तन नौ निद पाई। गौड़ी महला तीजा, माया सार सबल वरतै जियो। क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहे था जियो। शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए। हर आप लंघाए, इन बिद दुत्तर तरियै। गुरमुख भगत प्राप्त होवै, जीवतियां इउं मरियै। जिन मह राम नाम किलविख काटे, पए पवित शरीरा। नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पए मनूरा। स्त्री पुरख काम व्यापे जियो, राम नाम की बिद नहीं जानी। मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी। डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी, हम मैं तात संसारे। जो आया सो सब को जाती, उभरे गुर विचारे। गुरमुख होवे राम नाम बखाने, आप तरह कुल तारे। नानक नाम बसे घट अंतर, गुरमत मिले प्यारे। राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा। दृढ़ भगत सच्ची जियो।

सेवा सुरत भगत एह साची विचो आप गवाई है। हम मत हीन मूरख मुगद अंधे सतगुर मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सहावे अन दिन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे। जुग जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए। आपे गुण दाता अब गुण काटे हिरदय नाम वसाए। नानक सद बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए। गौड़ी महला तीजा।

छोड़ परदेश सदाए दूजै किनै सुख ना पायो पिरा जियो बिखिया लोभ लुभाए बिखिया लोभ लुभाए भरम भलाए ओह क्यों कर सुख पाए चाकरी वडाणी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए माया बंधन टिकै नाही खिन खिन दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूकै जा गुर शब्दी चित लाए मन मुख मुग्द गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए माया का भ्रम अंध पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिन सतगुर पाए मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले गुर चरणी चित लाए जिसनो हर जियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए नानक नाम रतन जग लाहा गुरमुख आप बुझाए राग गौड़ी संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन बैराग भया जियो क्यों देखा प्रभ दाते मेरे मीत सखा हर जियो गुर पुरख बधाते पुरखो बधाता एक श्री तर क्यों मिलह तुझै अड़ीनिया कर करह सेवा आसीस चरणी मन आस दर्श निमाणिया सास सास ना घड़ी विसरै पल मूरत दिन राते नानक सारिंग ज्यों प्यासे क्यों मिलिय प्रभ दाते एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोहे लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों धीरे गुणवंत नाहा दयाल बाला सर्व गुण भरपूरे फिर दोष नाही सुख है दाते हौ विछुड़ी बुरियारे बिनवंत नानक दया तार हो कर आप हो नाह प्यारे हौ मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हौ सिर अर्पी तिसमीत प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता सीस सुथान गुर पह संग प्रभु दिखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदिया पाया दिन रहन रलियां करै कामण मिटे सगल अंदेसा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ ते हम जैसा मेरा मन आनंद भया जियो बजी वादाई कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया सब मीत बंद पहरखे उपजिया दूत थाऊं गवाया अनहत वाजे बजे है घर में है फिर संग सेज विछाई बिनवंत नानक सहज रह हर मिलिया कंत सुखदाई गौड़ी महला पंजवा मोहन तेरे ऊचे मंदर महल अपारा मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला धर्मशाल अपार दयार ठाकुर सदा कीर्तन गावे जह साध संत इकत्तर होवह तहां तुझै त्यावहे कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्स प्यासे मिल दर्शन सुख सारा मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू मान है एक जी अवर सब राली मान है ता एक अलेख ठाकुर जिन्ह सब कल तारिया तुद बचन गुर कै वस किया आद पुरख बनवारिया तू आप चलिया आप रहिया आप सब कल तारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक सरन तुम्हारिया मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्स त्याना मोहन जम नेर ना आवै तुद जपह निधाना जम काल किनको लगै नाही
जो एक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराध है से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सुगियाना बिनवंत नानक राज निश्चल पूरन पुरख भगवाना मोहन तू सफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे तारिया जहान लहया अभमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुधनो धन कहया तिन जम नेड़ ना आया बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही सतगुर पुरख मरारी बिनवंत नानक टेक राखी जित लग तरिया संसारी गौड़ी महला पंजवां सलोक पतत असंख पनीत कर पुनः पुनः बलिहार नानक राम नाम जप पाव को तिन किल बिख दाहनहार संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधु त्याए मना मरार मुकंदे कटिए काल दुख फादु दुख हरन दीन सरन सिरी तहर चरण कमल अराधिए जम पंत बिखड़ा अग्न सागर निमक सिमरत साधिए कल मलै दहता सुध करता दिन सरैन अराधु बिनवंत नानक करहु कृपा गोपाल गोविंद माधु सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया भगत वचल पुरख पूरन मन है चिंदिया पाईए ताम अंध कूप ते उधार है नाम मन वसाईए सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अनक भगती गाया बिनवंत नानक करहु कृपा पार ब्रह्म हर राया चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन तारी करुणा मैं समरथ स्वामी कट कट प्राण आधारी प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम अपारू सरन जोग समरथ मोहन सर्व दुख बिदारू रोग सोग सब दुख बिन सह जपत नाम मरारी बिनवंत नानक करहो कृपा समरथ सब कल तारी गुण गाओ मना अचुत अबनासी सब ते ऊच दयाला बिसंबर देवन को एक है सर्व करे प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसे काल कंटक लोभ मोह नासे जी जा कै प्रभु बसे सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण काला बिनवंत नानक इच पुन्नी जपत दीन दयाला गौड़ी महला पंजवां सुन सखिए मिल उदम करेहा मनाए लह हर कंत मान त्याग कर भगत ठगौरी मोह है साधु मंत सखी वस आया फिर छोड़ ना जाई एह रीत भली भगवंत है नानक जरा मरन पै नरक निवार पनीत करे तिस जंत सुन सखिए एह भली बिनंती एहो मतांत पकाइए सहज सुपाए अपाद रहत होए गीत गोविंद गाइए कल कलेश मिटह ब्रह्म नासह मन चिंदिया फल पाइए पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम त्याइए सखी इश करी नित सुख मनाई प्रभ मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्स बैरागन पेखो थान सबाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मलाए नानक किन मिलिया सुर जन सुख दाता से वड भागी माए सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे मेरा मन तन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद पली मैं अपनड़ा फिर मिलिया प्रम खोयो
शांत सहज स्वामी प्रगास भया कौल खिलिया वर पाया प्रभ अंतर जामी नानक सुहाग ना टलिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद गौड़ी बावन अखरी महला पंजवां सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंदप सुहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै गुरुदेव मंत नरोदरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित्र करा गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक आपह किया कराया आपह करमै जोग नानक एको रब रहिया दूसर होवा ना होग पौड़ी ओं साध सतगुर नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपह सुन आपह सुख आसन आपह सुनत आप ही जासन आपने आपह उपायो आपह बाप आप ही मायो आपह सूखम आपह अस्थूला लखी न जाई नानक लीला कर कि

ओवं गुरमुख कियो अकारा, एक सूत परो मनहारा, पिन पिन त्रै गुण विस्थार, निर्गुण ते सरगुण दृष्टार, सगल भांत कर करह अपायो, जन्म मरण मन मोह बढ़ायो, दूहू भांत ते आप नरारा, नानक अंत न पारा वारा। सलोक से सह भगवंत से सच संपै हर रास, नानक सच सोच पाई है तेह संतन कै पास। पवड़ी ससा सत सत सत सो, सत पुरख ते भिन्न ना को, सो सरन परै जिह पायं, सिमर सिमर गुण गाए सुनायं। संसय परम नहीं कछ व्यापक, प्रगट प्रताप ताहू को जापत। सो साधु एह पहुंचन हारा, नानक ता कै सद बलिहारा। सलोक तन तन कहा पकारते, माया मोह सब कूर, नाम बिहूने नानका होत जात सब तूर। पवड़ी तद्दा तूर पनीत तेरे जनुआ, तन तेऊ जे रुच या मनुआ। तन नहीं बांच है सुरगना आच है, अत प्रिय प्रीत साध रज राच है। धंधे कहां व्यापहता हूं, जो एक शाद अन कतै ना जाहू। जा कह ही है दियो प्रभ नाम, नानक साध पूर्ण भगवान। सलोक अनक भेख अर ज्ञान ध्यान, मन हठ मिलियो ना कोई। कहो नानक कृपा पई, भगत ज्ञानी सोए पौड़ी। गंगा ज्ञान नहीं मुख बातों, अनक जुगत शास्त्र कर पातों। ज्ञानी सोए जाकै दृढ़ सो, कहत सुनत कस जोग ना हो। ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाकै, उसन सीत समसर सब ताकै। ज्ञानी तत गुरमुख बिचारी, नानक जाको कृपा तारी। सलोक आमने आए सृष्ट मह, बिन बूझे पस ढोर। नानक गुरमुख सो बुझै, जां कै भाग मथोर। पौड़ी या जुग मैं एकै को आया, जन्मत मोहयो मोहनी माया। गर्भ कुंट मह उर्द तप करते, सास सास सिमरत प्रभ रहते। उर्ज परे जो छोड़ छडाना, देवनहार मन है बिसराना। तारु कृपा जिसह गुसाई, इत उत नानक तिस बिसरहो नाही। सलोक आवत हुक्म बनास हुक्म, आग्या पिन्ना कोए। आमन जाना ते मिटै, नानक जिहे मन सोए। पौड़ी एऊ जी बहुत गर्भवासे, मोह मगन मीठ जोन फासे। इन माया त्रै गुण बस कीने, आपन मोह कटे कट दीने। ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो बिखम एह माया। कर कृपा सतसंग मलाए, नानक तां कै निकट ना माए। सलोक किरत कमावन शुभ अशुभ, कीने तिन प्रभ आप। असे आपन हों हों करे, नानक बिन हर कहां कमात। पौड़ी ये कह आप करावन हारा, आपै पाप पुन बिसथारा। या जुग जित जित आपै लायो, सो सो पायो जो आप दुआयो। वा का अंत ना जाने को, जो जो करे सो फुन हो। ये कहते सगला बिसथारा, नानक आप सवार नहारा। सलोक राच रहे बनता बनोद, कुसुम रंग बिखशोर। नानक ते सरनी परो, बिन सजाए मैं मोर। पौड़ी रे मन बिन हर जह रचो, तह तह बंधन पाहे। जेह बिद कतु ना छूटी है, साकत तेऊ कमाहे। हौ हौ करते कर्म रत, ताको पार अपार। प्रीत

न बुझ सो प्रभ सदहु संग लेखै गणत ना छूटिय काची भीत ना सुध जिसै बुझाए नानका तेह गुरमुख निर्मल बुद्ध सलोक टूटे बंधन जास के होआ साधु संग जो राते रंग एक कह नानक गूढ़ा रंग पौड़ी रारा रंग हो क्या मन अपना हर हर नाम जप हो जप रसना रे रे दरगाह कह ना को आओ बैठ आदर शुभ देव वाह महली पावह तू बासा जन्म मरन नह हुए बनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै नानक करता कै सलोक लालच झूठ बिकार मोह व्यापत मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यो नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बिखै रस राते अहम बुद्ध माया मद माते या माया मैं जन्मै मरना ज्यो ज्यो हुक्म त्यों त्यों करना को ऊन न को पूरा को सुगर न को मूरा जित जित लाभ तित तित लगना नानक ठाकुर सदा अलिपना सलोक लाल गोपाल।

कह लवै न को एक कह आप अवर नह हो होवन हार होत सद आया वाका अंत न काहू पाया कीत हस्त मह पूर समाने प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर तेह जपना सलोक आत्म रस जे जानिया हर रंग सहजे मान नानक धन तन धन जन आए ते परवान पौड़ी आया सफल ताहू को गनिय जास रसन हर हर जस भनिय आए बस है साधु कै संगे अन बिन नाम त्याव है रंगे आवत सोजन न महराता जा को दया मया बेदाता एक है आवन फिर जोन न आया नानक हर कै दर्श समाया सलोक यास जपत मन हुए आनंद बिनसै दूजा भाव दुख दर्द तृष्णा बुझे नानक नाम समा।

तत् करो न्याहू कियो संयोग सलोक। टूटे बंधन जन्म मरण साध सेव सुख पाए, नानक मनो ना बिसरे गुण निध गोविंद राय। पौड़ी टहल करहो तौ एक की, जाते बिरथा ना कोय, मन फन मुख ही है बसे जो चाहो सो होए। टहल मैल ता को मिले जा को साध कृपाल, साधु संगत तौ बसे जो आपन होहे दयाल। टोहे ताहे बहु पवन बिन ना

टेक आधार, रैण दिनस सिमरत रह, सो प्रभ पुरख अपार, रेण सगल या मन कर, येउ कर्म कमाय, हुक्मे बुझे सदा सुख, नानक लिखिया पाए। सलोक तन मन तन अर्पो तिसे, प्रभु मलावे मोहे, नानक भ्रम पहु काटिए, चूके जम की जोह। पौड़ी तत्ता तांस्यो प्रीत कर, गुण निध गोबिंद राय, फल पावह मन बांछते, तपत तुहारी जाय। त्रास मिटे जम पंथ की, जास बसे मन नाव, गत पावह मत हुए परगास, महली पावह ठाव। ताहू संग ना धन चले, ग्रह जोबन नहराज, संत संग सिमरत रहो, एह तुहारे काज। ताता कछु ना हुई है, जो ताप नवारे आप, प्रतपाले नानक हमह, आपह माई बाप। श्लोक थाके बहुबिद काल ते, कृपत नत

संच संच साकत मुए नानक माया ना साथ पौड़ी थत्था तेर को नहीं काए पसार हो पाम अनक बंच बल छल करो माया एक अपाव थैली संच हो श्रम करो थाक पर हो गवार मन कै कामना आ गई अंते अवसर बार हित पाव हो गोबिंद भजो हो संत है की सिख ले हो प्रीत करो सद एक स्यों या साचा असनेह कारण करन कराम नू सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो तित तित लग है नानक जंत अनाथ सलोक दासा एक निहारिया सब कछ दे मनहार सास सास सिमरत रह नानक दर्श आधार।

भरे पंडार दैन हार सद जीवन हारा मन मूर्ख क्यों ताहे बसारा दोष नहीं काहू को मीता माया मोह बंद प्रभ कीता दर्द निवार है जाके आपे नानक तेते।

मत पूरी प्रधान ते गुर पूरे मन मंत जिह जान्यो प्रभ अपना नानक ते भगवंत पौड़ी मम्मा जाहू मर्म पछाना भेटत साध संग पतियाना दुख सुख अवा कै समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निरलेपा पूर्ण घट घट पुरख बसेखा वा रस मैं वाहू सुख पाया नानक लिप्त नहीं तेह माया। सलोक यार मीत सुन साजन हो बिन हर शूतन नाहे नानक तेह बंधन कटे गुर की चरणी पाहे। पवड़ी जैया यतन करत बहु विदिया एक नाम बिन कह लो सिदिया याहू जतन कर होत छटारा वाहू जतन साध संगारा या उबरण धारे सब को वाहे जपे बिन उबर ना हो याहू तरन तारन समराता राख लेहो निर्गुण नरनाता मन बच क्रम जेह आप जनाई नानक तेह मत प्रगति आई। सलोक रोस न काहू संग करहो अपने आप विचार होए निमाना जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी रारा रेन होत सब जाकी ताज अवमान छुटै तेरी बाकी रण दर्ग है तो सीजै भाई जो गुरमुख राम नाम लिवलाई रहत रहत रह जाहे बेकारा गुर पूरे कै शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदाते। सलोक लालच झूठ बिखै ब्याद या देही महबास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सूख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहु दुख दर्द ते मिटै खनाओ नाम औखद जे हृदय हटावै ताहे रोग सुपने नहीं आवै हर औखद सब घट है भाई।

देव सर्वत्र में ऊन न कतहु ठाए, अंतर बाहर संग है नानक काय दुराय पौड़ी, ववा वैर न करिए काहू, घट घट अंतर ब्रह्म समाहु, वास देव जल थल में रविया, गुर प्रसाद विरले ही गविया, वैर विरोध मिटे ते मनते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चेहन सगल है ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक हौ हौ करत बेहानिया, साकत मुग्ध अजान, रड़क मोए ज्यो त्रिखावन, नानक किरत कमान पौड़ी, राड़ा लाड़ मिटै संग साधु, कर्म तर्म तत नाम अराधु, रूड़ो जेहे बसे उरिद माही, वा की राड़ मिटत बिन साही, राड़ करत साकत गवारा, जेहे ही है हम बुद बेकारा, राड़ा गुरमुख राड़ मटाई, निमख माही नानक समझाई। श्लोक साधु की मन ओट गहो, उकत सियान पत्याग, गुर दीखिया जेहे मन बसे, नानक मस्तक भाग पौड़ी, सस्सा शरण परे अबहारी, शास्त्र सिमरत वेद पुकारी, सोधत सोधत सोध बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, सास सास हम भूलन हारे, तुम समरत अगनत अपारे, शरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। सलोक खुदी मिटी तब सुख पए, मन तन पए अरोग, नानक दृष्टि आया उस्तक करने जोग पौड़ी, खखा खरा सराहु ताहू, जो खिन मैं ऊने सुबर पराहु, खरा निमा ना होत परानी, अन दिन जापै प्रभ निर्वाणी, भावै खसम ता वा सुख देता, पार ब्रह्म ऐसो आगंता, असंख खते खिन बख्शन हारा, नानक साहिब सदा दयारा। सलोक सत कहो सुन मन मेरे, शरण परहो हर राय, उकत सियानप सगल त्याग, नानक लये समाए पौड़ी, सस्सा सियानप छाड़ इयाना, हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना, सहस भांत करह चतुराई।

0: नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोए। सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै गुरुदेव मंत नरोधरा गुरुदेव शांत सतबुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित्र करा गुरुदेव याद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उधरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। इहो सलोक आद अंत पढ़ना।
1: गौड़ी सुखमनी।

आसन दसना प्रभु को सिमरह से तनवंते प्रभु को सिमरह से पतवंते प्रभु को सिमरह से जन परवान प्रभु को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरह से बेमोहताजे प्रभु को सिमरह से सर्ब के राजे प्रभु को सिमरह से सुखवासी प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी।

जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपे हर का भगत प्रगट नहीं छपे हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते करे पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गा।

अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बहु भांति नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महा उदासत पीसर पीवे अग्न माहे होमत परान कनक असव है विर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तौ पी हों मैं मैल न जावे हर के नाम समसर कछ नाहि नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ गमान न मन ते हुटै सोच करे।

अपमान आप सुकौ जो जाने नीचा सोगनिय सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट कीना मन अपने ते बुरा मिटाना एक है सगल सृष्ट साजना।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्ह उभारिया बार व्यवस्था तुझह प्यार दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साख सहन मुख

भुवन सो दूर परान छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाई तिस पर हरे, चंदन लेप उतारे धोए, गर्धब प्रीत पस्म संग होए, अंधकूप मह पतत बिकराल, नानक काढ़ ले हो प्रभ दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात, बाहर भेख अंतर मल माया, छपश नाही कछ करे छुपाया, बाहर ज्ञान ध्यान इस्नान, अंतर व्यापै लोभ सुआन।

सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह लेहो ओढ़ निबिहावे, कहां बजारत बूझे डोरा, निस कहिए तो समझे पूरा, कहां

दृढ़ कर्मान मन है प्रतीत, काल न आवे मूले चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मा

लपट रहो तह अंध अंधार बताऊ स्यो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब।

मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर धर्म को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रूप।

जाए। गोविंद भजन बिन बिरते सब काम, ज्यो किरपन के नरारथ दाम। तन तन ते जन जे घट बस्यो हर नाम, नानक तां कै बल बल जाम। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत। जन नहार प्रभु परबीन, बाहर भेख ना काहू भीन। अवर अपदेस

सब को मान मुखता को जस रसन बखान जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगाह मान पावे नानक पात से।

ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागु हो, गुर प्रसाद नानक मन जागु हो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस पव को मूल।

प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपै जप सोए, आप जपाए जपै सो नाउ, आप गवाए सो

माया आप हो कछु न किन्हु लया जित जित लाभ हो तित लग है हर नाथ नानक इनके

वक्ता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वर्णै कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुलै साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहू धावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

सेवा साधु कै संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्ब स्थान गम नानक साध कै संग सफल जन्म साध कै संग नहीं कछ काल दर्शन भेट होत निहाल साध कै संग कलूखत हरै साध कै संग नरक पर हरै साध कै संग इहां उहां सोहेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावै साध कै संग न बिरता जावै पार ब्रह्म साध हृद बसै नानक उधरै साध सुन रसै साध कै संग सुनो हर नाऊ साध संग हर के गुण गाऊ साध कै संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध कै संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट दीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संग गत भई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा भेद न जानह जेता सुनह तेता बखियान है साध की उपमा तेहो गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंच ते ऊंची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बन आई नानक साध प्रभ भेद ना पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर ना पेख एकस बिन कोए नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जा

ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

ब्रह्म ज्ञानी हम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विसन की माया ते होए भिन्न कर्म करत हुए निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म

तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान तो दास दरगाह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास

कार अष्टपदे कई कोट होए पुजारी, कई कोट अचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रम है उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीश्वर होते, कई कोट आ

कई कोट भय अभमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब को हिरह, कई कोट पर दुख न करह, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जन, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे, कई कोट जख किनर पसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरै सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाते, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश

के दास, तिन होवत आत्म परगास, कई कोट तत के बेते, सदा निहार है एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीव है, अमर पये सद सद ही जीव है, कई कोट नाम गुण गाव है, आत्म रस सुख

अतार रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखै अपनी वडियाई नानक सब मह रहे आसमाई प्रभ भावै मनुख गत पावै प्रभ भावै ता पात्र तरावै प्रभ भावै बिन सास्ते राखै प्रभ भावै ता हर गुण भाखै प्रभ भावै ता पतत उधारै आप करै आपन बीचारै दोहां सिरियां का आप स्वामी खेलै बिगसै अंतर जामी।

त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम। नानक प्रभु कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मशकीनिया। आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसकै अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुवान। जो जानै मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। आपस कहो कर्मवंत कहावै, जन्म मरै बहु जोन प्रमावै।

आज्ञा सुख पावे, हनुमंता हुई कर गरबावे, त्रिण समान कस संग ना जावे, बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस, पल भीतर ताका हुए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, हिन मह हुए जाए पसमंत, किसे ना बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी, गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगाह प्रवान, कोट कर्म करे हों तारी, श्रम पावे सगले बिरथारी, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगाह कहो कैसे गवे, आपस कहो जो भला कहावे, तिसह भला।

कछ होए तब इसको सुख नाही कोए। जब एह जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माई

को उठ धावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे नह तृपतावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राज्य सुपन मनोरथ बिरथे सब काज्य नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी तिसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करामन करन हार इसके हाथ कहा।

जाए। नानक साधही रहे आसमाय, आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो आपन विस्तार, सब

अष्टपदी संत कै दुखन आरजा घटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाय, संत कै दुखन नरक मह पाय, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हथे को रखै ना कोई, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए, संत किरपाल किरपा जे करै, नानक संत संग निंदक पी तरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै।

नानक जो तिस पाव है सोई ठिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी

कर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगाह नानकी उज्जन मथा बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोलह हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछान इत उत की ओह सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै किसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ में सोही निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिस की कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिस है ना लाग है दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना

ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ

है, प्रभु की जोत सगल घट सो है, तनमंता हुए क्या को गर्व है, जहां सब किस तिसका दिया दर्व है, हत सूरा जे को कहावे, प्रभु की कला बिना कहतावे, जे को हुए बह दातार, तिस देन हार जाने गवार, जिस गुर प्रसाद तूटे हो रोग, नानक सो जन सदा अरोग, ज्यों मंदर को थमे थमन, त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन, ज्यों पाखाण नाव चढ़तरे, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरे।

संग मिल जोत प्रगटावे दिन संतन की बाचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काहे बिन लाइए पुरब लिखे का लिखिया पाइए दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू किसै चितार जो कछ करे सोई सुखमान पूला काहे फिर है अजान कौन बस्त आई तिरे संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पत सेती घर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया ताज अभमान ले हो।

राज मह राज, जोग मह जोगी, तप मह तपीसर, ग्रस्त मह भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत ना पाया, जाकी लीला की मित नाहे, सगल देव हारे

आपे पाए, सब घट तिसके सब तिसके ठाव, जप जप जीवै नानक हर नाव, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरियां सब भवन, नाम के संग उधरे सुन श्रवण,

केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसह बुझाए तिसह सब भली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जान जां करदै प्रवेश सत नित बूझै जे कोय नाम जपत ता की गत होय आप सत किया सब सत आपे जानै अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करनै हार अवर ना बूझ करत बिचार करते की मित ना जानै किया नानक जोत सुभावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भये बिस्माद जिन बूझिया तिसे आया स्वाद प्रभु कै रंग राच जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे वे दाते दुख काटन हार जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सो वड भागी।

मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम कै रंग, सेवक को प्रभु पालन हारा।

बारंबार बार प्रभ जपिया ई अमृत इहु मन तन तृपिया नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही।

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाव अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उच्चरै।

0: नाम सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन सह पूर्ण होए आस भगत भाई आत्म परगास चित कर जाए बसै अबनासी कहो नानक काटी जम फासी
1: तत विचार कह जन साचा
0: जन्म मरै सो काचो काचा आवागमन मिटै प्रभ सेव आप त्याग सरन गुरदेव इउ रतन जन्म का हुए उदहार हर हर सिमर प्राण अधार अनक अपावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद बिचारे हर की भगत करहु।

एको एक एक हरे आप पूर्ण पूर रहे कब व्याप अनक विस्थार एक ते पय एक अराध परासत गए मन ताने अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाय नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए। अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देव हो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाखिया से जन त्रिपताने।

अन सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहया सतसंग हजूरी जिसका साथ लिया मलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरे जे काल ना भान सो क्यों बिसरे जे किया जाने सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन दिया सो क्यों बिसरे जे अगन मह राखै

भगत भाई लावे मन हीत, हम निर्गुण आर नीच अजान। नानक तुमरी सरन पुरख भगवान, सर्व बैकुंठ मुक्त मुख पाए। एक निमक हर के गुण गाए, अनक राज भोग बडियाई। हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन कापर संगीत। रसना जपती हर हर नीत, पली सो करनी सो बातनवंत।

अष्टपदी जब अकार एहु कस ना दृष्टेता पाप पुन तब कह ते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इस का वर्ण चिहन ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपने आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत भरम आपन खेल आप वरती जा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल धनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कमन नडार कमन कत डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा।

नानक एको पसरिया दूजा कह विस्तार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार जान तिस भावे तां सृष्टि अपाई अपने

नानक पल पावहु, हलत पलत दोए लेहो सवार, राम नाम अंतर उर धार, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसै तिस साच परीखिया, मन तन नाम जप

निरपव जपै सगल भव मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोई

श्रेष्ठ, दर्शन पेठत उदरत श्रेष्ठ, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रदान, जिस मन बसै सो होत निहाल, तां कै निकट ना आवत काल, अमर पए अमर

किन्हें कछ करा, आप भला कर तूत आत्मी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संगराज, ताकी गत मित कही ना जाए, दूसर

तिस सदा सुख हुए, आप मलाए नहीं प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआउ, जन कै संग चित आवे नाउ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक।

अष्टपदी पूरे गुर का सुने अपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरहो हर धन के परले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार।

दीन दयाल दुख भजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक कुदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरन ही आए कर कृपा प्रभ आप मलाए मिट गए बैर भये सबरेन अमृत नाम साध संग ले।

नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा ते जम ते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाई साध शरण नानक ते आई जिस मन बसै सुने लाए प्रीत जिस जन आवै।

आप तजुहु गोबिंद भजुहु पाओ भगत प्रवेश लाभ मिले तोटा हिरै हर दरगाह पतवंत राम नाम धन संचवै साच साहा भगवंत उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत नानक दुरमत छुट गई।

नानक संत निर्मल पहे जिन मन वस्या सोए पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखे फाल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग भ्रम तो घणो सदा संघार नीच हरख सोग सहसा संसार हौ हौ करत बिहाय जिन किए तिसह न जाननी चित में।

नानक प्रभ कै रंग पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच कुसुम बास बहुरंग कणो सब मिथ्या बलबंच नह जापै नह बूझियै नह कछ करत बिचार स्वाद मोह रस भेदेओ अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जून भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना बिचार विवेक पाओ भगत भगवान संग माया लिपत नारंच नानक बिरले पाई है जो नारच है परपंच सलोक खट शास्त्र ऊचो कह अंत न पारावार भगत सोह गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक उत्तम ऊचो पार ब्रह्म गुणयंत ना जान है सेख नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीते हर स्यों बीते भगत रचे भगवंत मोह मान भ्रम बिनसेओ पाई सरन दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिरे साध संग लिव लाए खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम त्याय सलोक संत मंडल हर जस कथ है बोल है सत सुभाय नानक मन संतोखी है एकस स्यों लिव लाए पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारावार आप तजो हो गोविंद भजो हो सरन पर हो हर राय दुख हरे पवजल तरे मन चिंदे आप फल पाए आठ पहर मन हर जपै

अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल परगास सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान सब मह ऊच बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप तरिय नान

अवतार्य नरक स्वर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद कर्म ना सुनही हर जस बिंद फिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरे तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस दिस खोजत मैं फिरयो जत देखूं तत सोए मन बसे

अंत मन मह चितवै पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत टहल कमाइय नानक इहो संजम प्रभ कृपा पाइय।

पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बासकार सुनो हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इन बेद वर्त संपूर्ण भया धावत मन राखे एक ठाए मन तन शुद्ध जपत हर नाए सब मह पूर रहे पार ब्रह्म।

बिनसे सगल जंजाल पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान हर की भगत करो ताजमान हर अमृत पान करो साध संग मन तृप्तासे कीर्तन प्रभ रंग कोमल बाणी सब कौ संतोख है पंच भू आत्मा हर नाम रस पोख है गुर पूरे ते एह निश्चौ पाइय नानक।

पतत उदारन मन बसे नानक छूटे नाम पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार आवत जात नरके अवतार हर हर भजन न मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख न गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिने विकार करत श्रम पायु नैनी नींद सुपन बरड़ायु हर बिसरत होवत एह हाल सरन नानक प्रभ पुरख दयाल। श्लोक चार कुंट चौ

श्लोक आत्मजीता गुरमती गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पै मिटे नानक बिनसी किंद पौड़ी अमावस आत्म सुखी पहे संतोख दिया गुरुदेव।

हूँ मैं छुट्टी, सिमरत हर को नाम, शरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवागमन, आप तरिया कुटुंब स्यों, गुण

नानक सुख विश्राम सलोक पूर्ण कभो ना ढोलता पूरा किया प्रभे आप दिन दिन चढ़े सुआया नानक होत ना घाट पौड़ी पूर्णमा पूर्ण प्रवेक करण कारण समरथ जी जंत दयाल पुरख सब ऊपर जा का हथ गुण निदान गोविंद गुर किया जा का होए अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोए पार ब्रह्म परमेश्वरो सब विद जानन हार संत सहाई सरन जोग आठ पहर नमस्कार अकथ कथा नह बूझिय सिमरो हर के चरण पतत उदारन अनाथ नाथ नानक प्रभ की सरन सलोक दुख बिन से सहसा गयो सरन गही हर राय मन चिंदे फल पाया नानक।

चौथा सतगुरु पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोई, एक दृष्ट कर देखदा, मन भावनी ते सिद्ध होए। सतगुरु विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर त्याई है,

लाहा हर तन खटिया गुरमुख शब्द विचार होमे मैल बिख उतरे हर अमृत हर उरतार सब कार्य तिनके सिद्ध है जिन गुरमुख कृपा तार नानक जो तुर मिले से मिल रहे हर मेले सिरजनहार। पौड़ी तू सच्चा साहेब सच है सच सच्चा गोसाई तुदनो सब त्याई दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है जिन कीती तिस पार लंघाई।

मेरे मन पाया सच्चे मेरे साहिबा सच्चे सच नाया। श्लोक महला चौथा। मन अंतर हो मैं रोग है भ्रम भूले मन मुख दुर्जना। नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा। मन तन रत्ता रंग सियो गुरमुख हर गुण तास। जन नानक हर शरणागति हर मेले गुर साबास। पौड़ी तू करता पुरख अगम है किस नाल तू बड़ी है। तुद जे वडहोए सो आखी है तुद जे हा तू है पढ़ी है। तू घट घट एक वरतदा गुरमुख परगड़ी है। तू सच्चा सब सदा खसम है सब दू तू चढ़ी है। तू करह सो सच्चे होए सी ता कायत करी है। श्लोक।

सतगुर सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यो बोलन तिवें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू करहें सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समरथ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छिड़ाही। सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठ सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा। सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा हुए सतगुरु अंदरों निर्वैर है सब देखै ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाए दे तिन विचों किस्तिया ना कोई सतगुर सबना दा।

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब पावै तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड़ अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुज सच समाणी, सलोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है, निर्भउ निरवैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित, तिन लथा हूं मैं भार, जिन गुरमुख हर आराध्या तिन

तिनके मुख दारे उजले, जिन हर हृदय सच्चा भावे, कूड़े आर पछाह सटियन, कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे, मुह काले कूड़े आरिया, कूड़े आर कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा। सतगुर धरती धर्म है, तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए, गुरसिखी अमृत बीजिया तिने अमृत फल हर पाए, ओना हलत पलत मुख उजले, ओए हर दरगहा सची पैनाए, इकना अंदर खोट नित खोट कमावे, ओहो जेहा बीजे तेहा फल खाए, जां सतगुर सराफ।

सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन हो सो सेवा काले जिन अंदर कपट वकार झूठ वे आपे सच वख कडे जजमाले सचियार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले जिन्ना सतगुर का आख्या सिखावे नाही तिना मुंह भलेरे फिरै दईए गाले जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी से किचर कवे राइन मन मुख बेताले सतगुरु नु मिले सो अपना मन थाए रखे ओ आप वरतै अपना।

सच साहा हमारे सच पूंजी नाम दिरड़ाए प्रभ वणजारे थारे सच सेव है सच वणंज लह गुण कथ है निरारे सेवक भाए से जन मिले गुर शब्द सुवारे तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लिखारे। सलोक महला चौथा जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला ओस दे आखे कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या ओस दा सब गया नित चुगली करे अणहोंदी पराई मुंह कढ ना सकै।

हर तिन का दर्शन ना करहो जो दूजे पाए जित लाही तुर करते आप लिख पाया तिस नाल केहो चारा नाही जन नानक नाम अराध तू तिस अपड़ को ना सकाही।

जो करे हर वस्त संभाले नाम निदान हर बन जीए हीरे परवाले विण काया जे होर थै धन खोज दे से मूड बेताले से उजड़ भरम पवाई है ज्यों झाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग मह होया नरक घोर दुख खूह है उथे पकड़ ओह ढोया कूक पकार को ना सुने ओह औखा होए होए रोया ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया ओह तेली संदा बल्द कर नित भलके उठ प्रभ जोया हर वेखै सुने नित सब किश तिदू किश गुजा ना होया जैसा बीजे सो लुणै जेहा पुरब किने बोया जिस कृपा करे प्रभ अपनी तिस सतगुर के चरण धोया गुर सतगुर पिछे तर गया ज्यों लोहा काठ संगोया जन नानक नाम त्याए तू जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा। वडभागियां सुहागनी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर ज्योत परगासिया नानक नाम समाए पौड़ी एहो शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच ज्योत गोहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेवक कड़े खोत सब आत्म राम पछाणिया ता एक रविया इको ओत पोत एक देखिया एक मन्निया इको सुने।

तय है। जिन हर बसिया मन माहे, हर दर गहती मुखी उज्जले, तिनको सब देखन जाहे। जिन निरपव नाम त्याया, तिनको भव कोई नाहे। हर उत्तम तिनी सरेविया, जिनको तुर लिखिया आहे। ते हर दरगह पैनाई है, जिन हर बुठा मन माहे। वे आप तरे सब कटंब सियो, तिन पिछे सब जगत छडाहे। जन नानक को हर मेल जन, तिन वेख वेख हम जिवाहे। महला चौथा, सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। से जंत पई हरियावली।

जिन नाम अराध्या आप तरिया जिन्नी दिथा तिन्ना लय छाई हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोए पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया जा डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर किरपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याए सी सो करे जे सतगुर भावसी।

आप होए, होर केती झक झक जाए सी, जन नानक नाम त्याए तू, हर हलत पलत छोड़ाए सी, महला चौथा गुर सिखा कै मन पावंदी, गुर सतगुर की वडियाई, हर राखो पैज सतगुरु की, नित चढ़ै सुआई, गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म छड़ाई, गुर सतगुर तान दी बाण हर, तिन सब आन निवाई, जिन्नी दिठा मेरा सतगुर पाओ कर, तिनके सब पाप गवाई, हर दरगाह ते मुख उजले, बहु सोभा पाई, जन नानक मंगै धूड़ तिन, जो गुर के सिख मेरे भाई, पौड़ी हौ आख सलाही सिफत सच, सच सच्चे की वडियाई, सलाही सच सलाह सच, सच कीमत किने ना पाई, सच सच्चा रस जिन्नी चखिया,

या मन वजी वधाई। सलोक महला चौथा। जिन्ना अंदर अमरथल से जान सूलिया, हर जान है से बिरहो। हौ तिन बिटो साध घुम घोलिया, हर मेलो सज्जन पुरख मेरा सिर तिन बिटो तल रोलिया। जो सिख गुर कार कमाव है हौ गुलम तिना का गोलिया, हर रंग चलूलै जो रते तिन भिन्नी हर रंग।

है क्यों संतो निर्मल हुए गुरमुख गुण वे हाजी है मल होमै कड धोए सच वणंज है रंग सियो सच सौदा हुए तोटा मूल ना आवे लाहा हर भावै सोए नानक तिन सच वणंजिया जिन्ना धुर लिखिया प्राप्त होए पौड़ी सालाही सच सालाहना सच सच्चा पुरख निराली सच सेवी सच मन वसै सच सच्चा हर रखवाली।

चौथा सतसंगत मह हर पुस्तत है संग साधु मिले प्यारिया वे पुरख प्राणी धन जन है उपदेश कर है पर उपकारिया हर नाम दृढ़ाव है हर नाम सुनाव है हर नामे जग निस्तारिया गुर वेखण को सब कोई लोचै नव खंड जगत नमस्कारिया तुदे आपे आप रखिया सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया तू आपे पूज है पूज कराव है सतगुर को सिरजन हारिया कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो तिस काला मुह जम मारिया तिस अगे पिछे ढोई नाही गुर सिखी मन विचारिया सतगुरु नो मिले से ही जन उबरे जिन हिरदय नाम समारिया जन नानक के गुरसिख पुत हो हर जपे हो हर निस्तारिया महला तीजा हो मैं जगत भलाया दुरमत बिख्या बेकार सतगुरु मिले ता नदर होए मनमुख अंध अंधियार नानक आपे मेल लय जिसनो शब्द लाए प्यार पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाह है सो करे जिस अंदर भिजै जिन्नी एक मन एक अराध्या तिनका कंध न कबहू सिजै तन तन पुरख साबास है जिन सच रसना अमृत पिजै सच सच्चा जिन मन भामदा से मन सच्ची दरगाह लिजै तन तन जन्म सचियारिया मुख उज्जल सच करिजै सलोक महला चौथा साकत जाए निवह गुर आगे मन खोटे कूड़ कूड़ आरे जां गुर कह उठो मेरे भाई वह जाहे कुसर बगलारे गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै चुन कड्डे लद्दो वारे कोई अगे पिछे बह मुंह सुपाइन ना रलनी खोटे आरे ओना दा भख सो ओथै नाही जाए कूड़ लहन भेड़ारे जे साकत नर खा।

माया धारी अत अन्ना बोला शब्द ना सुनी बहु रोल कचोला गुरमुख जापै शब्द लिवलाए हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए जो तिस भावै सो करे कराया नानक वजदा जंत वजाया पौड़ी तू करता सब किस जानदा जो जिया अंदर वरतै तू करता आप अगणत है सब जग विच गणतै सब कीता तेरा वरतदा सब तेरी बनतै तू घट घट एक वरतदा सच साहिब चलतै सतगुरु नु मिले सो हर मिले नाही किसे परतै सलोक महला चौथा एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है गुरमुख लाइय चित क्यों सास ग्रास वसारी है बहंदियां उठदियां नित मरण जीवन की चिंता गई।

सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। जहां सतगुर का मन मन्या ता पाप कसम्मल पन्ने। अपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने। जिन सतगुर का पाणा मन्या तिन चढ़ी चवगण वन्ने। एह चाल नराली गुरमुखी गुर दीखिया सुन मन भिन्ने। सलोक महला तीजा जिन गुर गोपिया अपना तिस ठौर ना ठाउ। हलत पलत दोवें गए दरगाह नाही थाउ। ओह वेला हथ ना आवई फिर सतगुर लगह पाए। सतगुर की गणत कुसी है दुखे दुख विहाय। सतगुर पुरख निर

दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मातहारी कूड़ कसात ओह पाप कमावे क्या ओह सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खोए उजड़ पाए मनमुख अंधा आवे जाए बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास उते सच वरतदा कूड़े आरा चित उदास ओए वल छल कर झत कड दे फिर जाए बह कूड़े आरा पास विच सच्चे कूड़ ना गड़े मन वेखो को निरजास कूड़े आर कूड़े आरी जाए रले

को अपनी आपे पछताणी। अजराइल फरेसता तिन पीड़े कहानी। श्लोक महला पंजवां। सेवक सच्चे शाह के से परवान। दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान। महला पंजवां। जो तुर लिखिया लेख प्रभ मेटना ना जाए। राम नाम धन वखरो नानक सदा ध्याए पौड़ी। पंजवां।

तुस दिता पूरे सतगुरु हर तन सच अखोट सब अंदेसे मिट गए जम का भौ छोट काम क्रोध बुरे आईया।

संग जुट सलोक महला चौथा तपा न होवे अंदरों लोभी नित माया नो फिरे जज मालिया अगों दे सद्या सतै दी भिख्या लए नाही पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया पंच लोग सभा सुन लगे।

मित्र तू दुख सबाया लाथ महला पंजवा खुदयावंत न जानी लाज कुलाज कुबोल नानक मांगे नाम हर

ना पुनिया नित परमल हिरते किया ना जाने किरत घन विच जोनी फिरते सबे तिरा निखुटियस हिर लईस धरते विजन कलह ना देवता ता लया करते जो जो करते हमेव चढ़ धरती पड़ते। सलोक महला तीजा गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए हर गुण गावे हिरदय हार परोए पवित पावन परम बीचारी जे ओस मिले तिस पार उतारी अंतर हर नाम बासना समाणी हर दर सोभा महा उत्तम बाणी जे पुरख सुने सो होए निहाल नान

कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवड़ तू वड वड्डे जिस तू मिल है सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों पावै त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वड्डे सुध। गौड़ी की वार महला पंजवां राय कमाल दी मौजदी की वार की धुन उपर।

सुहा विया लगड़िया अक कंठ बिरह विछोड़ा तनी सियो नानक सह सह गंठ महला पंजवा वसारें दे मर गए मर पे ना सकै मूल वे मुख होए राम ते ज्यो तस्कर उपर सूल पौड़ी सुख निधान प्रभ एक है अबनासी सुनिया जल तल मैयल पूरिया घट घट हर भणिया ऊच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया तुस नानक देवै जिस नाम तिन हर रंग मणिया।

सच एक जिस तुस देवै आप जित खादै मन तृप्ति है नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग मैं से खट है जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी सच्चे दी आस निश्चल एक सरेरिया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास सलोक महला पंजवा पार ब्रह्म फरमाया मीह गुठा सहज सुपाए तन तन बहुत उपजिया रिथमी रजी तिप्त अगहाय सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाय पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिसै रजाय परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याय महला पंजवा जीवन पद निर्वाण।

कारण रंग रूप रस बाद के करह परानिया जिस पलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक सरन द्वार जे तुद भावही पौड़ी जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से वड भागे नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे।

तन फटन जिन्ना साहिं विसरै महला पंजवां प्रेतोह की तुन देवता तिन करनै हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काज सवारे निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारे नानक का प्रभु।

राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाउ मन मारन कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत ना पाइए, जेह पावक सुर नर है जारी।

हर परवान सर्व त्याग भज केवल नाम गौड़ी कबीर जी नगन फिरत जो पाई जोग बन का मिर्ग मुक्त सब होग क्या नांगे क्या बांधे चाम जब नहीं चीन से आत्म राम रहाओ मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई मुक्ति भेद न गई आकाई बिंद राख जो तरिये पाई खुसरे क्यों ना परम गत पाई कहो कबीर सुनो नर पाई राम नाम बिन किन गत पाई गौड़ी कबीर जी

पर हर काम क्रोध अहंकार कर्म करत बदे अहमेव मिल पाथर की कर ही सेव कहो कबीर भगत कर पाया भोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास मह कुल नहीं जाती ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती कहो रे पंडित बामन कब के हुए बामन कह कह जन्म मत खोए रहा जौ तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया तुम कत ब्राह्मण हम कत सूर।

गौड़ी कबीर जी अंधकार सुख कबह न सोई है, राजा रंक धू मिल रोई है, जो पै रसना राम ना कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ, जस देखी है तरवर की छाया, प्राण गए कहो कां की माया, जस

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी। जो जन परमित परमन जाना, बातन ही बैकुंठ समाना, ना जाना बैकुंठ कहां ही, जान जान सब कह तहां ही रहाओ। कहन कहावन नह पति आई है, तौ मन माने जाते हो मैं जई है। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास। कहो कबीर एह कही है काहे, साध संगत बैकुंठ आहे। गौड़ी कबीर जी, उपजै निपजै निपज समाई।

मर्दन अंगा सो तन जलै काठ कह संगा इस तन धन की कवन बढ़ाई धरन परै उरवार ना जाई रहाऊ।

सुगंध बसाई कहत कबीर चेतरे अंधा सत राम झूठा सब धंधा गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके जमते उल्ट भये है राम दुख बिन से सुख कियो विश्राम बैरी उल्ट भये है मीता साकत उल्ट सुजन भये चीता अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया शांत भई जब गोविंद जानिया रहाऊ तन मह होती कोट अपाद उल्ट भई सुख।

केवल राम भगत निज भागी गौड़ी कबीर जी जेह मरना सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द परगासिया अब कैसे मरूं मरन मन मानिया मर मर जाके जिन राम ना जाने।

गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लावू खोजत तन मह ठौर ना पावू लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाउ एक पाए देखो सब नारी क्या जानो सह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ताको मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकुर पहाई मुक्त अना

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, क्या बस जो बेख दे महतारी। गौड़ी कबीर जी बिन सत सती होए कैसे नार, पंडित देखो हृदय विचार। प्रीत बिना कैसे बदे स्नेह, जब लग रात तब लग नहीं नेह। रहाओ साहन सत करे जी अपने, चोर मैये को मिले ना सुपने। तन मन तन ग्रह।

नहाऊ। इनकै सद बलिहारै जाऊ। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन भावै रहाऊ। जिहे कट राम रहया भरपूर, तिनकी पग पंकज हम धूर।

मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी, वाको कही है सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बिचारा रहाऊ, सहज कलालन जो मिल आई, आनंद माते अन दिन जाई, चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अन पहु पाया, गौरी कबीर जी मन का सुपहु मनह दयापी, मनह मार कमन सिद्ध थापी, कमन सो मन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाओ, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना हुई, कहो

बूज बूजनहार सुभागा रहाउ। सूरज चंद करह उजियारा, सब मह पसरिया ब्रह्म पसारा। कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुख रामै होए। गौड़ी कबीर जी बेर की पुत्री सिमरत पहाई, सांकल जेवरी लै है आई। आपन नगर आपते बांधिया, मोह कै फांद काल सर सांधिया। रहाउ कटी ना कटै टूट नह जाई, सास आपन होए जग को।

तुझ ले तारू खिचह ता प्रेम कै चावक मारू कहत कबीर भले असवारा वेद कतेव ते रह निरारा गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए तेह मुख देखत लू कट लाए एक दुख राम राय काटो मेरा अग्न दह अर गर्भ बसेरा रहाओ काया बेगूती बहु विद भांति को जारे को गडले माटी

तारा कह कवना राम जपत तन जर की ना जाए राम नाम चित रहे आसमाए रहाओ काको जरै काहे होए हान नटवट खेलै।

सूट समाया कैसे जीवन होए हमारा जब ना होए राम नाम अधारा रहाउ कहो कबीर खोजो असमान राम समान ना देखो आन गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांधत पाग सो सिर चुंच सवार है काग किस तन तन को क्या गर्भैया।

35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हमहु ना मांगिया पावे बिछिया अजहो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाउ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना सो सुख हमहु साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन

जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को राव रहे कबीरा, गौड़ी गुआर रे अहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भय लिव लागे रहाउ, साधक सिद्ध सगल मुनहारी, एक नाम कल्प तार तारी।

सोरठ पी रे जी न लाज लाज तोहे नाही हर तज कत काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जन पर कर जात ना सोई सो साहिब रहया भरपूर सदा संग नाही हर दूर कवला चरण सरन है जाके कहो जन का नाही घर ताके सब को कह जास की बाता सो समरथ निज पत है दाता कह कबीर पूर्ण जग सोई जाके हृदय अवर ना होई।

आऊ कौन को पुरख कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बेचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाउ। साधु संगत दियो रलाई, पंच दूत ते लियो छडाई। अमृत नाम जपो जप रसना, मोल दास कर लीनो अपना। सतगुर

ता रहाउ नैनोह सूतक बैनोह सूतक सूतक श्रमनी होई उठत बैठत सूतक लागे सूतक परै रसोई आसन की बिद सब को जाने छूटन की एक कोई कह कबीर राम हृदय विचारे सूतक तिने।

धारी उपर दुर्मत भांडा फूटा आंधी पाछे जो जल बरखे एह तेरा जन पीना कह कबीर मन भया परगासा उदय पान जब चीना गौड़ी चेती एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जस सुनह ना हर गुण गाव है बातन ही असमान गराव है ऐसे लोगन स्यो क्या कही है जो प्रभ किए भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रही है रहाओ आप ना देहे चुरु भर पानी तेहे निंद है जेहे गंगा आनी बैठत उठत कुटल

साध जीवत पितर न माने कोहु मुए श्राद्ध कराही पितर भी बपरे कहो क्यों पावे है कौआ कूकर खाही मोको कुशल बतावो कोई कुशल कुशल करते।

कही है, आपन कहया ना लेही। सरजियो काट है, निर्जियो पूज है, अंतकाल को भारी। राम नाम की गत नहीं जानी, भय डूबे संसारी। देवी देवा पूज है डोल है, पार ब्रह्म नहीं जाना। कहत कबीर अकुल नहीं चेतिया, विख्या स्यों लपटाना। गौड़ी जीवत मरै मरै फुन जीवै, ऐसे सुन समाया। अंजन माही निरंजन रही है, बहुड़ ना पवजल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बलोई है, गुरमत मनुआ या स्थिर राखो हो। इन बेद अमृत पियोई है रहाओ, गुर कै बाण बजर कल छेदी। प्रगटिया पद परगासा, सकत अंधेर जेवड़ी भ्रम चूका। निहचल शिव कर बासा, तिन बिन बाण तनख चढ़ाई है। एहो जग बेदिया भाई, दह दिस बूढ़ी पवन चलावै। डोर रही लिवलाई, उन मन मनुआ सुन समाना। दुबदा दुर्मत भागी, कहो कबीर अनभव एक देखिया। राम नाम लिवलागी, गौड़ी बैरागण तिप दे। उल्टत पवन चक्कर खाट भेदे, सुरत सुन अनरागी। आवै ना जाए मरै ना जीवै, ताश खोज बैरागी। मेरे मन मन ही उल्ट समाना, गुर प्रसाद अकल पही अवरै। नातर था बेगाना रहाउ, निवरै दूर दूर पुन निवरै। जिन जैसा कर

हल्की लगे ना भारी रहाउ। अर्ध उर्द दो तह नाही, रात दिन स तह नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही। सतगुर तहां समाही, अगम अगो

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहू घर आए मुकलाऊ आए रहाऊ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्ज सवारे ता सुहागन जानिए गुर शब्द बीचारे किरत की बांधी सब फिरै

कबीरा गौड़ी जोगी कह है जोग पाल मीठा अवरना दूजा भाई रुंडित मुंडित एक है शब्दी ए कह है सिद्ध पाई हर बिन भरम भलानी अंधा जाप है जाऊं आप छुटकावन ते बंद।

किछ नाही, पांच तत तह नाही, एड़ा पिंगला सुखमन बंदे, ए अवगण कत जाही, तागा टूटा गगन बिनस गया, तेरा बोलत कहां समाई।

पिंड तह नाही, रचनहार तह नाही, जोड़नहारू सदा अतीता, एह कही है किस माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए बिना।

रहाउ। खंड ब्रह्मांड मह सिंगी मेरा बटुआ, सब जग पसमा धारी, ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है, छूटै हुए पसारी, मन पवन दोए तुम्बा करी है, जुग जुग सारद साजी, थिर पई तंती टूटस नाही, अनहद किंगरी बाजी, सुन मन मगन पए हैं पूरे, माया डोल ना लागी, कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी पौड़ी, गाज नाव गाज दास गाज इक्कीस, पुरिया एक तनाई, साठ सूत नव खंड बहत्तर, पाठ लगो अधिकाई, गई बनावन माहो, कर छोड़े जाए जलाहो रहाओ, गजी ना मिनिय तोल ना तुलिये, पांचन सेर अढ़ाई, जो कर पांचन बेग ना पावे, चगर करे करहाई, दिन की बैठ खसम की बरकस,

नतर रही उरझाई छोड़ पसार इहां रहो बपुरी कहो कबीर समझाई गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा हुए मोहोए जित घट नाम ना उपजै फूट मरे जन सोए सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ साध मिले सिद्ध पाई है।

आई गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम हम बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातु ठाकुर सो क्यों मनहु बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है।

विखै बाच हर्राच समझ मन बहुरारी निरपै हुए ना हर भजे मन बहुरारी गहयो ना राम जहाज रहाउ मरकट मुष्टि अनाज की मन बहुरारी लीनी हाथ पसार छूतन को सहसा परिया मन बहुरारी नाच्यो घर कर बार ज्यो नलनी सुअटा गहयो मन बहुरारी माया एहो व्यवहार जैसा रंग कुसुंभ का मन बहुरारी त्यों पसरियो पासार नामन को तीर्थ कर।

समाया, झूठा परपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी, कह कबीर एक नीम उसारी, किन मह बिन सजाए अहंकारी गौड़ी, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल परोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाव, जा तिस भावै ता हुक्म मनावै, इस बेड़े को पार लंघावै, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आमन जानी, कहो कबीर भज सारग पानी, उरवार पार सब एको दानी, गौड़ी नौवा जोन छाड़ जो जग मह आयो, लागत पवन खसम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रहाओ, गर्भ जोन मह उर्द तप करता, तव जठर अग्न मह रहता, लख चौरासी जोन भ्रम आयो, अब के छुटके ठौर ना ठायो, कहो कबीर भज सारग पानी, आवत दिसै जात ना जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बांछी।

गुण गाइय जाते पाइय परम निदान रहाउ। क्या जप क्या तप संयम क्या वर्त क्या स्नान जब लग जुगत ना जानी भाउ भगत भगवान। संपै देख ना हरखीय विपत देख ना रोए ज्यों संपै त्यों विपत है विध निरति आसो होए। कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार सेवक सो सेवा भले जिह घट बसै मरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार बिरक बसेरो पंख को

कह रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारै कामनी लोचन भरी ले।

जीवन पद कारण हर की भगत करी जय। एक आधार नाम नारायण हरस नाराम रवि जय। राग गौड़ी ग्यारवा आस पास घन तुरसी का बिरवा। माज बना रस गाऊं रे वाका स्वरूप देख मोही गुआरन। मोको छोड़ ना आऊ ना जाहू रे तो हे चरण मन लागो सारंग धर। सो मिले जो बड़ भागो रहाउ बिंद्राबन मन हरन मनोहर। कृष्ण चरावत गाऊ रे जा का ठाकुर तुही सारिंग धर। मोहे कबीरा नाहू रे गौड़ी पूर्वी बारवा।

साधु परम प्रगट हुए नाचो हो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रन ते डरपे सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है लीनो हाथ संधौरा रहाओ काम

गौड़ी लाख चौरासी जी जोन मह प्रमत नंद बहु ठाकोरे भगत हेत अवतार लियो है भाग बडो बपरा कोरे तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दिस नाही तब इहो

नाम पदार्थ मन बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक सो जो निंदा हो रे हमरा जीवन निंदक लो रे निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमरा करे उदार जान कबीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार राजा राम तू ऐसा निरपहु तरन तारन राम राया रहाओ जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही अब हम तुम एक भये है एक देखत मन पति आही जब बुद्ध होती तब बल कैसा अब बुद्ध बल ना खटाई कह कबीर बुद्ध हर लई मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बांधी बस्त अनूप बीच पाई कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे करते बार ना लाई अब मन जागत रहो रे पाई गाफल होए कै जन्म गवायो चोर मुस्से घर जाई रहाओ पंच पहरुआ दर मह रहते तिनका नहीं पतियारा चेत सुचेत चेत हुए रहो तव लै परगास उजारा नौ कर देख जो कामन भूली बस्त अनूप ना।

तास गुण गाव है तास बस है मोरे प्राणा ना रहाउ हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित गगन मंडल में त्या नाना विखै रोग पै बंधन भागे मन निज कर सुख जा नाना एक समत रत जान मान प्रभ दूसर मन है ना आनाना चंदन बास पये मन बासन त्याग घटियो अभमान हाना जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है था नाना तेहे बड भाग बस्यो मन जाकै कर्म प्रधान मथा नाना काट सकत शिव सहज परगास्यो एकै एक समानाना कह कबीर गुर भेट महासुख भ्रमत रहे मन मानाना।

आदि बावन अक्षर लोक त्रै सब कछ इन ही माहे ये अक्षर खिर जाहिंगे ओए अक्षर इन मह नाहे जहां बोल तह अक्षर आवा जह अबोल तह मन ना रहावा बोल अबोल मद है सोई जस ओह है तस लख ना कोई लह लहू तो क्या कहूं कहूं ता को पकार बटक बीज में रब रहे हो जाको तीन लोक बिस्थार लह लहंता भेद शै कछ कछ पायो भेद उल्ट भेद मन बेदेओ पायो अपंग अशेद तुरक तरीकत जान।

कतह ना जाई, अगह गह गह गगन रहाई, कग्गा घट घट निमसै सोई, घट फूटे घट कबह ना होई, तां घट माही घाट जो पावा, सो घट छाड अब घट कत तावा, नन्ना निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एह, चचा रचत चित्र है भारी, तज चित्रै चेतो चितकारी, चित्र बचित्र एह अवचेरा, तज चित्रै चित्राख चितेरा, सच्चा एह शत्रपत पासा, शक के ना रहो छाड के ना आसा, रे मन मैं तो सिन सिन समझावा, ताहे छाड कत आप बंदा।

सूरज नहीं जाना, रहियो झजक नाही परवाना, कत झक झक और न समझावा, झगर किए झगरो ही पावा, नन्या निकट सो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए, जां कारण जग ढूंढियो, नेरो पायो ताहे, तटा बिकट काट घट माही, खोल कपाट महल के ना जाही।

या तीरा जिन ठग ठगिया सगल जग खावा सो ठग ठगिया ठौर मन आवा डड्डा डर उपजे डर जाई ता डर मह डर रहे आसमाई जो डर डरे ता फिर डर लागे न डर हुआ डर उर होए भागे टड्डा ढिग ढूंढ कातियाना ढूंढत ही तह गए पराना चढ़ समेर ढूंढ जब आवा जिह गड़ गड़े हो सो गड़ मह पावा।

आई तन त्रे पवन मह रहो समाई जो त्रे पवन तन माए समावा तो तत्त है तत मिलिया सच पावा थथा अथाहा थाहा नहीं पावा ओह अथाहा एहो थिर ना रहावा थोड़ै थल थानक आरंभै बिन ही थंबै मंदर थंबै दद्दा देख जो बिन सनहारा।

बिंद है बिंद ना बिचरन पावा, बंदो होए बंदगी गह, बंद को होए बंद सुदल है, पब्बा भेद है भेद मलावा, अब पवो पान पुरो सौ आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया भेद पूपत पहचानिया, मम्मा मूल गहया मन माने, मरमी हुए सो मन को जाने, मत कोई मन मिलता बिल मावे, मगन पयाते सो सच पावे, मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध हुए मन

दुर्मत हन कर बस काया गांव रण रूतो भाजे नहीं सूरो थारो नाव रारा रस निरस कर जानिया होए नरस सो रस पहचानिया ए रस छाडे ओह रस आवा ओह रस पिया ए रस नहीं भावा लल्ला ऐसे लिव मन लावे अनत न जाए परम सच पावे अर जो तहां प्रेम लिव लावे तो अलह लह लह चरण समावे ववा बार बार बिसन समहार बिसन

जो उपजै पाओ पूर रहया तह त्रे पवन राव खखा खोज परे जो कोई जो खोजै सो बहुर ना होई खोज बूझ जो करे बिचारा तो पव जल तरत ना लावे बारा ससा सो सह सेज सवारे सोई सही संदेह निवारे अल्प सुख छाड परम सुख पावा तब एह त्री ओह कंत कहावा हा हा होत हुए नहीं जाना जब ही हुए तब है मन माना है तो सही लख जो कोई तब ओही ओह एहो ना होई न्यो न्यो कर

कटता जाए। अकुल निरंजन एक पाय, तृतीया तीने सम कर लियावे। आनंद मूल परम पद पावे, साध संगत उपजे विश्वास। बाहर भीतर सदा परगास, चौथे है चंचल मन को गहो। काम क्रोध संग कबहु ना बहो।

छठ खट चक्कर शहू दिस धाय, बिन परचै नहीं थिरा रहाय। दुबदा मेट खिमा गह रहो, कर्म धर्म की सूल ना सहो।

एकादशी एक दिस तावे तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवे सूर एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहूं लोक का पियो अचरज भया जीव ते सीओ। तेरस तेरह अगम बखान अर्द उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मझार रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का धरहु ध्यान कतनी कथिया ब्रह्म ज्ञान। पुण्यो पूरा चंद आकाश पसरह कला सहज परगास। आदि अंत मद हुए रहे आथीर सुख सागर में।

बार बार हर के गुण गाव, गुरगम भेद सो हर का पाव रहाव। आदत करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंभ, अहनिस अखंड सुर ही जाय, तौ अनहद बीन सहज महबाय। सोमवार सस अमृत चरै,

रीत पंच चोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाई नातर खरार सहराई बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल मह हर का बास गुर मिल दो एक सम धरे उर्द पंक।

नाही, हैनस कसमल तो वह नाही, सो किरत सहारे सो एह ब्रत चढ़े, अन दिन आप आप स्यो लड़े, सुरखी पांचो राखे सबे, तो दूजी दृष्ट ना पैसे कबे, थावर थिर कर राखे सोई, जोत दी वटी घट मह जोई, बाहर भीतर भया प्रगास, तब हुआ सगल कर्म का नास, जब लग घट मह दूजी आन, तौ लो महल न लाभे जान, रमत राम स्यो

जीवों की एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवा पाहन तारियले राम कहत जन कस ना तरे रहाउ तारी ले गन का बिन रूप कुबजा ब्याज अजामल तारियले करन बदक जन तेऊ मुक्त भये।

कौ राज दिए। जापहीन तापहीन कुलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेउ तरे। राग गौड़ी रवदास जी के पदे गौड़ी गुआर रे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति।

साध कूप भरियो जैसे दादरा कस देश बदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बमोहया कश आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श

पड़े रिथि सुर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मछ पयाले गावन तुदनो रस

सोपुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावहु सन

सर्व निरंतर जी हर एक को पुरख समाना, एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज वडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर ना।

सेवह तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुझ जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिनका भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुध जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तापह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको।

दात जिन दिन करकै कीती रात खसम वसार है ते कम जात नानक नावै बाज सनात आसा महला पहला जे दर मांगत कूक करे महली खसम सुने भावै धीरक भावै धक्के।

कौन कहिए, सर्व निरंतर रव रहिया, नाल कटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सिष्ट गया, आग्या अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या बड़ा पहया, रतन अपा

याद, जब लग हृदय न आवह जाद, तौ प्रवाह के ही क्या कीजै, जन्म जन्म किस लीजी लीजै रहाउ, मन की मत मता गल मता, जो किस बोलिए सब खतो खता, क्या मुँह लै कीचै अरदास, पाप पुन धोए साखी पास, जैसा तू करहे तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोए, जे ही तू मत देहे ते ही को पावे, तुझे आपे पावे तिवें चलावे, राग रतन परियां परवार, तिस विच उपजै अमृत सार, नानक करते का इहो धन माल, जे को बूजै इहो विचार, आसा महला पहला, कर किरपा अपने घर आया, ता मिल सखियां काज रचाया, खेल देख मन आनंद भया, सहो वी आहण आया, गावो गावो कामणी बिबेक बिचार, हमरै घर आया जग जीवन पतार, रहाव गुरु द्वारे हमरा व्याहो जे हुआ, जा सहो मिलिया ता जानिया, तिहो लोका हमें शब्द रविया है, आप गया मन मानिया, अपना कार्ज आप सवारी, पूर्ण कार्ज ना हुई, जित कार्ज सत संतोख दया धर्म है, गुरमुख बूझै कोई, भणत नानक सबना का पिर एको सोए, जिसनो नदर करे सा सुहागण होए, आसा महला पहला, ग्रहो बन समसर सहज सुपाय, दुर्मत गत पई कीरत थाए, सच पौड़ी साचो मुख नाव, सतगुर सेव पाए निज थाव, मन चूरे खत दर्शन जान, सर्व ज्योत पूर्ण भगवान रहाव, अधिक त्यास भेख बहु करे, दुख बिख्या सुख तन पर हरे, काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा छोड़ नाम निस्तरे, सिफत सलाहन सह

जाय नानक अस्थिर नाम रजाय आसा महला पहला एको सर्वर कमल अनूप सदा बिगासै परमल रूप।

बिन जल सरवर कमल ना दीसै रहाउ। बिरला बूझै पावै भेद, साखा तीन कह नित भेद। नाद बिंद की सुरत समाए, सतगुर सेव परम पद पाए। मुक्तो रातो रंग रवंतो, राजन राज सदा बिकसंतो। जिस तू राख है कृपा तार, बूढ़त पाहन तार है तार। त्रि भवन मह जोत, त्रि भवन मह जानिया। उल्ट पई घर घर मह आणिया। अहनस भगत करे लिवलाए, नानक तिनकै लागै पाए। आसा महला पहला, गुरमत साची हुज्जत दूर। बहुत सियाणप लागै धूर, लागी मैल मिटै सच नाए। गुर प्रसाद रह लिवलाए, है हजूर हाजिर अरदास। दुख सुख

हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ, कर्म धर्म सच साचा नाओ, तां कै सद बलिहारे जाओ, जो हर राते से जन परवान, तिनकी संगत परम निदान, हर वार जिन पाया धन ना।

अठसक मज्जन हर रस रीद गुरमुख निर्मल मैल न लागे नानक हिरदय नाम वड्डी तुर भागे आसा महला पहला निव निव पाई लगो गुरे अपने आत्म राम निहारिया करत बिचार हिरदय हर रविया हिरदय देख बिचारिया बोलो राम करे निस्तारा गुर प्रसाद रतन हर लाभ है मिटै अज्ञान हुए उजियारा रहाउ रवनी रवे बंधन नहीं टूटे है विच हों मैं भरम ना जाई सतगुर मिले ता हों मैं टूटे ता को लेखे पाई हर हर नाम भगत प्रिय प्रीतम सुख सागर उर तारे भगत वछल जग जीवन दाता मत गुरमत हर निस्तारे मन स्यो जूझ मरे प्रभ पाए मनसा मन है समाए नानक कृपा करी जग जीवन सहज भाई लिवलाई आसा महला पहला किसको कह सुनावे है किसको किस समझावे है समझ रहे किसे पढ़ावे है पढ़ गुण बूझे सतगुर शब्द संतोख रहे ऐसा गुरमत रमत शरीरा हर भज मेरे मन गहर गंभीरा रहाउ अनंत तरंग भगत हर रंगा

हर गुण गाया, आत्म चीन रह लिवलाया, आद अपार अपरंपर हीरा, लाल रत्ता मेरा मन तीरा, कथनी कह कह से मुए सो

ग्रास अहलस अंदले दीपक दे पौ जल डूबत चिंत करे कह सुनह जो मानह नाऊं हौ बलिहारे तां कह जाऊं नानक एक कह अरदास जियो पिंड सब तेरे पास जा तू देह जपी तेरा नाउ दरगाह बैसन होए थाउ जा तुद भावे ता दुरमत जाए ज्ञान रतन मन वसे आए नदर करे ता सतगुर मिले प्रणवत नानक पवजल तरे आसा महला पहला पंचपदी दुध बिन तीन पंख बिन पंखी जल बिन उत्पुज काम नाही क्या सुल्तान सलाम विहूना अंधी कोठी तेरा नाम नाही की विसरह दुख बहुता लागे दुख लागे तू विसर नाही रहाउ अखी अंध जीव रस नाही कन्नी पवन ना वाजे चरनी चले पजूता आगे बिन सेवा फल लागे अखर बिरख बाग भोए चोखी

तू ही आसा महला पहला काया ब्रह्मा मन है धूती ज्ञान जनेऊ ध्यान कुस पाती हर नामा जस जाचू नाऊ गुर प्रसादी।

रह भेद गुर बिन सो जी बूझ ना होए साचा रव रहिया प्रभ सोए क्या हौ आखां आख वखाणी तू आपे जान है सर्ब वडाणी नानक एको दर दीवान गुरमुख साच तहां गुदरान आसा महला पहला काची गागर देह दोहेली उपजै बिरसै दुख पाई इहो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै बिन हर गुर पार न पाई तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे तुझ बिन अवर ना कोई हरे

बुरी सखी साजनी के हो चरण सरेमो हर गुर कृपा ते नदर धरी आप विचार मार मन देखिया तुम सा मीत ना अवर कोई ज्यो तू राख है तिव ही रहना दुख सुख देव है कर है सोई आसा मनसा धूब नासक त्रिहो गुण आसमरास पई प्रियावस्था गुरमुख पाई है संत सभा की ओट लही ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप जिस हर हृदय अलख अपेवा नानक राम नाम मन राता गुरमत पाई सहज सेवा आसा महला पहला पंच पदी।

सच नाम जा नव निध पाई, रोवै पूत न कलपै माई, एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार, एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जम पुर जाहे, गुर दीखिया ले जप तप कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे, नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर स्यों रहै समाए, आसा महला पहला, आप करे सच अलख अपार, हों पापी तू बख्शन हार, तेरा भाणा सब किछ होवै, मन हठ कीचै अंत वगोवै रहाउ, मन मुख की मत कूड़ व्यापी, बिन हर सिमरन पाप संतापी, दुर्मत त्याग लाहा किछ लेवहो, जो उपजै सो अलख अपेवहो, ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलिया भगत दिरडाई, सगली सौदी टोटा आवै, नानक राम नाम मन भावै, आसा महला पहला चौपदे, विद्या विचारी तां पर उपकारी, जां पंच रासी तां तीर्थवासी,

मेरा सहो जागै हौं निस भर सोवां इउं क्यों कंत प्यारी होवां। सहो जागै हौं निस भर सोवां रहाउ आस प्यासी सीजै आवा आगै।

तेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावै आत्म राव सच्चा नावण तां थी है जां एनस लागै भाव इक लोकी होर समचरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबहू न खूटस नाहे आसा घर चौथा महला पहला।

धर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए। पीर पे कांबर सालक साधिक छोड़ी दुनिया थाए पए। साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमण लिए। दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए। खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी। तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी। आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मन वासी थिर ना रहे जैसे भवै उदासी। मन मेरा दयाल सेती थिर ना रहे। लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाउ। फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू। पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू। पंच सखी मिल रुदन।

कहाउ हर हर हर कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तरे मधसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पट ले तीरज धड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राओ।

मनै मह मुंदरा खिंथा खिमा हंडावू जो किस करै भला कर मानू सहज जोग निध पावू बाबा जुगता जियो जुग है जुग जोगी परम तंत मह जोगन अमृत नाम निरंजन पाया ज्ञान काया रस भोगं रहाउ शिव नगरी मह आसन बैसो कल्प त्यागी बादम सिंही शब्द सदा धुन सोहै एनस पूरै नादम पत विचार ज्ञान मत डंडा वर्तमान बेभूतं हर कीरत रह रास हमारी गुरमुख पंथ अतीतं सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन पर थर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर तावै कर करनी कस पाईऐ पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चवाईऐ बाबा मन मतवारू नाम रस पीवै सहज रंग रच रहिया एनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहया रहाउ पूरा साच प्याला सहजे तिसह पियाए जा कौ नदर करे अमृत का वापारी होवै क्या मद छूछै भाउ धरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवै मुक्त बैकुंठ है करै किया सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म ना हारै कहो नानक सुन पर थर जोगी खीवा अमृत धारै आसा महला पहला खुरासान खसमा ना किया हिंदुस्तान डराया आपै दोष ना देई करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तैं की दर्द ना आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारी ता मन रूस ना होई रहाओ सकता सिंह मारे पै बगै

सदा सुख होए, गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार, नुगुरे को गत काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर कै शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुखता को लगै ना पीर, जम काल किस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साच समावै, आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गवाए, सतगुर सेवे तिल ना तमाए, निरपहु दाता सदा मन हुए, सच्ची बाणी पाए भाग कोई।

या शब्द समाहे सेवड पागी जिन नाम त्याया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह तिन बलिहार है जाऊं दर साचे साचे गुण गाऊ आपे देवे सहज सुपाए नानक कीमत कहन ना जाए आसा महला तीजा सतगुर विच वड्डे।

आए, हर की मत किन बिद होए, हर अपरम पर अगम अगोचर, गुर कै शब्द मिले जन कोए रहाओ, गुरमुख कीमत जाने कोए, विरले कर्म प्राप्त होए, ऊंची बाणी ऊंचा होए, गुरमुख शब्द बखाने कोए, विण नावे दुख दर्द शरीर, सतगुर भेटे ता उतरे पीर, बिन गुर भेटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिले सजाए, हर का नाम मीठा अतरस होए, पीवत रह पियाए सोए, गुर किरपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए, आसा महला तीजा, मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर, सेवत ही सुख शांत शरीर, शब्द तरे जन सहज सुपाए, किनकै हम सद लाग पाए, जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगहा मिले सुपाए रहाओ, शब्द चाखै साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभ सदा रहया भरपूर, आपे नेड़ आपे दूर, आखण आखै बकै सब कोए, आपे बख्श मलाए सोए, कहने कथन ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विचों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सुवारन हार, आसा महला तीजा, दूजै पाए लगे दुख पाया, बिन शब्दै बिरता जन्म गवाया, सतगुर सेवै सोजी होए, दूजै पाए ना लागै कोए, मूल लागे से जन परवान, अन दिन राम नाम जप हिरदै।

सुख पाए, संत संगत मेल हर गुण गाए, नामे नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मनमुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाए आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाए, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में है लाहा हर जप लै जाए, रहाउ नाम मिहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लो भाई, नाम मिहूनी दुख जले सबाई, सतगुर पूरे बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इथों छुड़किया खौर ना पाए, गर्भ जोन विस्टा का वास, तिथ घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा, नानक हों मैं मारी सदा उदासा, आसा महला तीजा, लाले अपनी जात गुआई।

सोग हरक दोए सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधर रहाउ, करनी कार तुरहु फरमाई, बिन शब्द को थाई ना पाई, करनी कीर्त नाम वसाई, आपे देवै ढिल ना पाई, मन मुख परम भुलै संसार, बिन रासी कूड़ा करे व्यापार, बिन रासी वखर पल्लै ना पाई, मन मुख भुला जन्म गवाई।

रहाउ। सदा सुहागण जो प्रभ पावे, गुर शब्दी सिंगार बनावे, सेज सुखाली अन दिन हर गावे, मिल प्रीतम सदा सुख पावे, सा सुहागण साची जिस साच प्यार, अपना पिर राखे सदा उर तार, नेड़े वेखे सदा हदूर, मेरा प्रभ सर्ब रहया पर।

नानक साच समावै सोए। आसा महला तीजा भगत रत्ता जन सहज सुपाए। गुर कै भै साचै साच समाए। बिन गुर पूरे भगत ना होए। मन मुख रुन्ने अपनी पत खोए। मेरे मन हर जप सदा त्याए। सदा आनंद होए।

अवर ना कोई गुरसागर पूरा भंडार उत्तम रतन जवाहर अपार गुर प्रसादी देवनहार नानक बख्शे बख्शनहार आसा महला तीजा गुर साहिर सतगुर सच सोए पूरै भाग गुर सेवा होए सो बूझै जिसे आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद अज्ञान बनासै अन दिन जागै वेखै सच सोए रहाउ मोह गमान गुर शब्द जलाए।

पछान गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत निरत दुख होए एहा भगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी भवजल तरे गुर कै बचन भगत थाए पाए हर जियो आप वसै मन आए हर कृपा करे सतगुरु मलाए निश्चल भगत हर सियो चित लाए भगत रते तिन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए आसा घर अठवां काफी महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर कै भाणे सतगुर मिले सच सोजी होई गुर प्रसादी मन वसै हर बूझै सोई मैं सहो दाता एक है अवर नाही कोई गुर कृपा ते मन वसै ता सदा सुख होई रहाउ इस युग में निरपो हर नाम है पाईऐ गुर विचार बिन नामै जम कै वस है मन मुख अंध गुआर हर कै भाणै जन सेवा करै बूझै सच सोई हर कै भाणै सलाहियै भाणै मन्नै सुख होई हर कै भाणै जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई आसा।

सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों कृपा करह तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गुआया, तुझे आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझी माहे, तुझ बिन

जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा घर दूजा महला चौथा। किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई। किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई। हमारा तड़ा हर रहया समाई, हम हर स्यों तड़ा किया मेरी हर टेक। मैं हर बिन पख तड़ा अवर न कोई, हम हर गुण गावा असंख अनेक। रहाव जिन स्यों तड़े कर है से जाहे, झूठ तड़े कर पछो ताहे। थिर न रह है मन खोट कमाहे, हम हर स्यों तड़ा किया जिसका कोई समरथ नाहे। यह सब तड़े माया मोह पसारी, माया को लूजह गवारी। जन्म मर है जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सुवारी। कालयुग मह तड़े पांच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए। जिसनों कृपा करे तिस सत संग मलाए, हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए। मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावे, प्राया सिदर अटकले अपना अहंकार वधावे। जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तड़ा धर्म सब सृष्ट जिन आवे। आसा महला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत पाया।

माया मलतारी विण गुण जन्म मुए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मत तत कढ़िए।

गुरमुख परगासा नाम बिना मैं धर नहीं काई नाम रविया सब सास ग्रासा रहाउ नामै सुरत सुनी मन पाई जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सखाई नाम हीन गए मूड नंगा पच पच मुए बिख देख पतंगा आपे थापे थाप उथापे नानक नाम देवै हर आपे आसा महला चौथा गुरमुख हर हर वेल वधाई हल लागे हर रस करसाई हर हर नाम जप अनत तरंगा जप जप नाम गुरमत सालाही मारिया काल जम कंकर भुयंगा रहाउ हर हर गुरमह भगत रखाई गुर तुठा सिख देवै मेरे भाई हउ मैं कर्म किस बिद नहीं जा।

कंधा, सब ने फल कर्म किए दुख तंदा, हर हर हर जस जपै वड भागी, नानक गुरमत नाम लिव लागी, एक ओंकार।

जोगी थोतर वाजे बेन गुरमत हर गुण बोलो जोगी एह मनुआ हर रंग पेन जोगी हर देहो मती उपदेश जुग जुग हर हर एको वरतै तिस आगे हम आदेश रहाउ गाव है राग भांत बहु बोल है एह मनुआ खेलै खेल जो वह कूप सिंचन को बसधा उठ बैल गए चर बेल काया नगर मह कर्म हर बोव हो हर जामै हरिया खेत मनुआ अस्थर बैल मन जोव हो हर सिंचो हो गुरमत जेत जोगी जंगम सिष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लाभ मनुआ पेल आसा महला चौथा कब को पालै घुंगरू ताला कब को बजावै रबाब आवत जात बार खिन लागै हम तब लग समारो नाम मेरा मन ऐसी भगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह ना सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा कब को मेले पंच सत गायन कब को राग धुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे तब लग मेरा मन राम गुण गावे कब को नाचे पाम पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाम पसारत बिलम तिल लागे तब लग मेरा मन राम समारे कब को लोगन को पते आवे लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हिरदय सद त्याव हो ता जय जय करे सब कोई आसा महला चौथा सत संगत मिली है हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया घट चानन अज्ञान अंधेरा जाए हर जन नाचो हो हर हर त्याए ऐसे संत मिले है मेरे भाई हम जन के धोवे है पाए रहाओ हर हर नाम जप हो मन मेरे अन दिन हर लिब लाए जो इच्छो हो सोई फल पाव हो फिर भूख ना लागे आए आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए से संत भले तुद भावे है जिनकी पत पावे है थाए नानक आख नाराजे हर गुण ज्यों आखे त्यों सुख पाए भगत पंडार दिए हर अपने गुण गाहक वणज लै जाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर अठवां की काफी महला चौथा आया मन तुराहो हूं मैं रोई है गुरमुख नाम त्याए अस्थिर हुई है गुरपुरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया रहाओ पूर्व लिखे देहे से आए माया चलन आज के काल तुरहो फरमाया बिरथा जन्म तिना जिन्नी नाम वसारिया जुए खिरण जग के इहो मन हारिया जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया नानक सच्चे सच सच समाया आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम त्याया गुर प्रसादी भुज सच समाया जिन तुर लिखिया लेख तिनी नाम कमाया दर सच्चे सत्यार महल बुलाया रहाउ अंतर नाम निदान गुरमुख पाईऐ अन दिन नाम त्याए हर गुण गाईऐ अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाईऐ हम मैं गर्भ गर्भ आप खुआईऐ नानक आपे आप खुआईऐ गुरमत मन परगास सच्चा पाईऐ राग असावरी घर सोलवा के दो महला चौथा सोधं एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम अन दिन हर नाम कीर्तन करूं सतगुर मोको हर नाम बताया हम हर बिन खिन पल रह ना सको रहाउ हमरे सरवण सिमरन हर कीर्तन हम हर बिन रह ना सको हम एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह ना सके तैसे हर जन क्यों रह हर सेवा बिन
किन्हों प्रीत लाई दूजा भाव रिद धार, किन्हों प्रीत लाई मोह अपमान, हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद, नानक सिमरत हर हर भगवान, सावरी महला चौथा माई, मोरो प्रीतम राम बताव होरी माई, कौ हर बिन खिन पल रह ना सकूं, जैसे कर हर बेल रिझाई रहाउ, हमरा मन बैराग बिरकत भयो, हर दर्शन मीत कै ताई, जैसे अल कमला बिन रह ना सकै, तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई, राख शरण जगदीश्वर प्यारी, मोहे शरदा पूर हर गुसाई, जन नानक कै मन आनंद होत है, हर दर्शन निमक दिखाई।

वख वख परमावै घर की नायक घर वास ना देवै जतन करूं पुरजाई फरेवै रहाऊ

साधुए मनुख पहचावो। तृतीय मता किस करूं उपाया, मैं सब किस छोड़ प्रभ तुही ते आया। महा आनंद अचिंत सह जाया।

परदेश झाग सौदे कहो आया, वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्लै आनी, देख रतन एहु मन लपटानी।

कंत हमारो की लोक समाना, कर मस्तक धार राखियो कर अपना, क्या जाने एहो लोग अजाना रहाओ, सुहाग हमारो अब हुन सोहयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोहयो, आंगन मेरा सोभा चंद, निसबासर प्रिय संग आनंद, बस्तर हमारे रंग चलू।

कहो नानक जोह पिरह सिंगारी थिर सुहागन संग पतारी आसा महला पंजवा दान दे कर पूजा करना लैत देत उनमू कर परना।

तानते मन निर्मल हर हर गुण गाय पये आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलियो सहज सुपाय रहाओ तावत रहे एक एक बुझिया आए बसे अब निश्चल थाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे

करना, मुआ होए तिस निश्चल रहना, जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवखद मुख पाया, गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाउ, काची मटकी बिनस बनासा, जिस छूटै त्रिकुटी तिस निज घर वासा, ऊंचा चढ़ै सो पवै पयाला, तरन पड़ै तिस लगै ना काला, भ्रमत फिरे तिन किछु ना पाया, से अस्तर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुरमिल भए निहाल, आसा महला पंजवां, पुत्री तेरी बिद कर थाटी, जान

चौपदी एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन ना रह कैसे मिलो प्यारी एक पल दिन समो को कब हो ना बिहावे।

निदान अमृत सार साधे ही परपूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राई सुख रैन विहानी सहज सुपाई। आसा महला पंजवा कर किरपा हर प्रगति आया। मिल सतगुर धन पूरा पाया ऐसा हर धन संची है भाई। पाए न जल जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कतहु न जाई रहाओ। तोट न आवे नखुट न जाए खाए खर्च मन रहया अगाए। सो सच साह जिस घर हर धन संचाना इस धन ते सब जग वरसाना। किन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना। जन नानक अंतवार।

सर पर पौसी रात रहन गई फिर हुए प्रभात माया मोहे सोए रहे अभागे गुर प्रसाद को विरला जागे कहो नानक गुण गाई है नीत मुख उजल हुए निर्मल चीत आसा महला पंजवा नौ निद तेरह।

त्यों कर प्रतपाला आसा महला पंजवा जी प्राण धन हर को नाम ईहा ऊहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्त अगावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत भंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत कमावत निहाल।

प्रभ अवनासी घट घट चीन आसा महला पंजवा आनंद बनोद परे पुर तारिया अपना कारज आप सुवारिया पूर समगरी पूरे ठाकुर की।

पूरी बणत बनाई, नानक भगत मिली वड्याई। आसा महला पंजवां, गुर कै शब्द बंधावो।

रहाउ तृप्त अगावन साक्य नाय अठसठ मज्जन संत तुराय सब मैं जानू करता एक साध संगत मिल बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभमान नानक को गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास भई मत पूरी तांते बिनसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर अंधकूप में।

हर रस पीवै अलमस्त मतवारा, आन रसा सब हो शेरे रहाओ। हर रस की कीमत कही न जाए, हर रस साधु हाट समाए। लाख करोरी मिले ना किहे, जिसे प्राप्त तिस ही देह। नानक चाख पये बिस्माद, नानक गुरते आया साद। ईत ऊत कत छोड़ ना जाए, नानक गीता हर रस माहे। आसा महला पंजवां, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे। छुटकै दुर्मते अपनी धारी, होए नमाणी सेव कमावह। ता प्रीतम होवह मन प्यारी, सुन सुंदर साधु बचन उधारी।

ही ब्योहारा भाग्यामान भगत हुए तुम्हारी जो यह मंत्र कमावे नानक सो पौ जल पार उतारी आसा महला पंजवा दो पदे पई प्राप्त मानुख देवरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग पवजल तरण कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाउ जप तप संयम धर्म ना कमाया।

आप सहाये गुण निदान नित गावे नानक सहसा दुख मटाई आसा महला पंजवां औखद खायो हर को नाव सुख पाए दुख बिन सिया थाव ताप गया बचन गुरपूरे आनंद पया सब मिटे वसूरे रहाओ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन त्याया आसा महला पंजवां बांसत नाही सो बेला आई बिन हुक्मै क्यों

पन्या सदा सदाय आत्म परगास साध संगत हर चरण निवास राम नाम नित जप मन मेरे शीतल शांत सदा सुख पाव है किल विख जाही सबे मन तेरे रहाओ कहो नानक जाके पूरन कर्म सतगुर भेटे।

आए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा, काम क्रोध माया मद मत सर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, एह अपने ग्रह भीतर वारी। जन्म मरण चूके सब भारे, मिलत संग भयो मन निर्मल।

ग्रह मंदर महला जो दिसह ना कोई संगार। जब लग जीव है कली काल मह जन नानक नाम समार। आसा घर तीजा महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राज मिलख जोबन ग्रह सूबा रूपवंत जो आनी। बहुत दरब हस्ती अर घोड़े लाल लाख बह आनी। आगे दरगह काम ना आवै छोड़ चले अभमानी। काहे एक बिना चित लाइए ऊठ

छोड चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, अपदेश करे आप ना कमावे, तत शब्द ना पछाने, नांगा आया नांगो जासी।

0: कर डूबे खप खप मोए गवारा।
1: गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा।
2: राग आसा कर पंजवा महला पंजवा।

जन्म जन्म की मल धोवै पराई, अपना कीता पावै इहां सुख नहीं दरगाह ढोई, जमपुर जाहे पचावै निंदक अहला जन्म गवाया, पहुँच ना साकै काहू बातै आगै ठौर ना पाया रहाऊ।

सरोय गोविंद भजन की मत है होरा वर्मी मारी साफ ना मरी नाम ना सुनी डोरा रहाऊ माया की किरत छोड़ गवाई।

कूड़ कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाले आसा महला पंजवा उदम करत हो ऐ मन निर्मल नाचे आप निवारी पंच जना ले वसगत राख मन में है इकंकारी तेरा जन नृत करे गुण गावे रबाब पखावज ताल घुंगरू अनहद।

ई ब्राह्मणि सुदीते श्रेष्ठाईरे पाताले आकाशी सखनी लहबर बूजी खाई रे, तार की बिलाई अवर सखाई।

ते मुक्त भए अंधकूप महा कोरते बाहा पकड़ गुर काढ़ लिए निरपव भए सगल पव मिटिया राखे राख नहारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कार्य।

कृपा जिसको बिपना को पाखै ओहो सुख ओहा वडियाई। जो प्रभु जी मन पानी तू दाना तू सद मेहरवाना नाम मिले रंग माणी।

प्रभ अंतर जामी साध संग हर पाई खोल कवार दिखाले दर्शन पुनरप जन्म ना आई है मिलो प्रीतम स्वामी अपने सगले दुख हरों रे पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या तां कै संग तरों रे रहाओ महा उद्यान पावक सागर भये हरख सोग मह बसना सतगुर भेट भया मन निर्मल जप अमृत हर रसना तन धन थाप कियो सब अपना कोमल बंधन बांधिया गुर प्रसाद भये जन मुक्ते हर हर नाम आराध्या राख लिए प्रभ राखन हार जो प्रभ अपने पाणे जियो पिंड सब तुमरा दाते नानक सद कुर्बान।

बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समरथ वर्णना साको ताकि उपमा जात ना कहोरी। काजर कोठ मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बनेओरी। महामंत्र गुर हृदय बसियो अचर्ज नाम सुनियोरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई। प्रेम भगत नानक सुख पाया

पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोहे मिली हदूर चुका ने हो रहा सखी सहेरी परम गया गुर फिर संग मेरी रहाव निकट आन प्रिय सेज तरी कान कड़न ते शूट परी मंदर मेरा शब्द उजारा आनंद बनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं फिर घर आया।

तेरा ओले। भ्रम के परदे सतगुरु खोले रहाउ, हुक्म बूझ रंग रस माणी, सतगुरु सेवा महानिर्वाणी, जिन तू जाता सो गिरस्त उदा।

अवतार, नरक सुर्ग फिर अवतार, गिरस्त मह चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार, प्रभ कृपा ते मन वस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर की

अनंदा दुख रोग मन सगले नथा रहाउ। कार्य काम बाट काट जपीजै गुर प्रसाद हर अमृत पीजै। दिन सरैन हर कीर्तन गाइय सो जन जम की वाट न पाइय। आठ पहर जिस विसरह नाही गत होए नानक तिस लग पाए।

कोई, सगल श्रेष्ठ अवां के चरण मल धोई। जो प्राणी काहू न आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम। साध संग मन

सूत परोई, कट कट अंतर रव्या सोई, ओपत परलोखिन में करता, आप अलेपा निर्गुण रहता, कर्ण कराम ने अंतर जामी, आनंद करे नानक का स्वामी। आसा महला पंजवा, कोट जन्म के रहे पवारे, दलाब देह जीती नहीं हारे, किल बिख बनासे दुख दर्द दूर, पये पनीत संतन की धूर रहाव, प्रभ के संत उदाहरण जोग, तिस भेटे

पये मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहा बिनस्यो मन का मूर्ख तीठा प्रभु का पाना लागा मीठा गुरपुरे के चरण गहे कोट जन्म के पाप लहे रतन जन्म एहो सफल पया कहो नानक प्रभ करी मया। हासा महला पंजवा सतगुरे अपना सद सदा संहारे गुर के चरण केस संग चारे जागरे मन जागन हारे बिन

मुख हर हर बोले, सो जन इत उत कतह ना डोले, कहो नानक जो राचे नाई, हर माला तां कै संग जाई, आसा महला पंजवां, जिसका सब किस तिसका होए, तिस जन लेप ना व्यापै कोई, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जो किछ करै सोई भल।

कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया। आसा महला पंजवां, जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दू

क्रोवन हार झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हस हस पावन रहाव, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मुका फिर पछताना, त्रिहो गुण में वरतै संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो नानक

जानी पोर पया बहोर पछतानी प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहुरी प्रभ मिलबे की लालसा तांते आलस कहां करो री रहाओ कर्म है अमृत आनन सारे खिसर गयो भूम।

प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद भली बनी, जाके ग्रह सब किछ है पूरन, सो भेटिया निर्भय धनी रहाओ, नाम दृढ़ाया साध कृपाल, मिट गई भूख महा बिकराल।

आनंद ने मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाए मठाई, सोचत साचत रहन बयानी, अनकरंग माया के चितवत, कबहू ना सिमरै सारंग पानी रहाव, द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधिया, काल कै फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया, सो थान मूड निश्चल कर पाया।

उनकै संग हम तुम संग मेल, उनकै संग तुम सब को लोरै, ओस बिना को मुख नहीं जोरै। ते बैरागी कहां समाए, तिस बिन तुही दोहेरी री रहाओ। उनकै संग तू ग्रह महिमा हर, उनकै संग तू होई है जाहर। उनकै संग तू रखी पपोल, ओस बिना तू छुटकी रोल। उनकै संग तेरा मान महत, उनकै संग तुम साक जगत। उनकै संग तेरी सब विद थाटी।

बांधे, ना उस धंधा ना हम तहंदे, ना उस मैल ना हम कौ मैला, उस आनंद ता हम सद केला, ना उस सोच ना हम

गुरु होए भ्रम भंगा, हम ओए मिल होए इक रंगा, आसा महला पंजवा, अनक पांत कर सेवा करिए, जियो प्राण तन आगै धरिए, पानी पक्का करो तज अभमान, अनक बार जाइए कुर्बान, साई सुहागण जो प्रभ पाई, तिसकै संग मिलो मेरी माई, रहाउ दासन दासी की पनिहार।

राम प्रभु की प्रीत सद शोभावंत प्रभु की प्रीत सब मिटि है चिंत प्रभु की प्रीत एह भव जल तरै प्रभु की प्रीत जमते नहीं डरै प्रभु की प्रीत सगल उधार है प्रभु की प्रीत चलै संगार है आपो कोई मिले ना भूलै जिस कृपाल तिस साध संग भूलै।

माया, कर कर अनर्थ बिहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उस्ते डार अवर को दीनी, काच गगरिया अंब मझरिया,

संबाहा निकसिया फूक ता हुए गयो स्वाहा ऊचे मंदर महल अररानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी वड परवार पूत अरतियां मोहे।

जिस खसम दयाल आसा मोहल्ला पंजवा इन स्यों प्रीत करी कानेरी जो मिली है तो वदे वधेरी गल चमड़ी जो छोड़े नाही लाग छुट्टो।

आठ घाट ग्रह बन बन जो है, मन तन लागे होए कै मीठी, गुर प्रसाद में खोटी डीठी, अगरक उसके वडे ठगाऊ, छोड़ह नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन भया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवा, आठ पहर निकट कर जाने।

मेरे भाई वाकी महिमा कथन ना जाई रहाओ। वर्तन जा कै केवल नाम आनंद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र सत्र जा कै एक समान प्रभ अपने बिन अवर ना जाने। कोट कोट अग काटन हार।

चली तां का संग बांचह सुरदेव अमोग दर्श सफल जा की सेव कर जोड़ नानक करे अरदास मोहे संतहा टहल दी जय गुणतास आसा महला पंजवां सगल सूख जप एक नाम सगल धर्म हर के गुण गाम महा पवित्र साधका संग जिस भेट त लागै प्रभ रंग गुर प्रसाद होए आनंद पावे जिस सिमरत मन होए परगासा ताकी गात मित कै

लेहो रलाए नानक आए पए सरनाए आसा महला पंजवा आठ पहर उदक इशनानी सद ही भोग लगाए सुगयानी बिरथा काहू छोड़े नाही।

के लेखा भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा कहो नानक जिस सतगुर पूरा वाजे ता कै अनहद तूरा आसा महला पंजवा दुपदा एक साधु संग सखायो नाम सर्ब मनोरथ पूर्ण काम बुझ गई तृष्णा हर जसै अगानी जप जप जीवा सारग पानी करन करावन सरन परिया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाउ लाल जिवे हर भरे भंडार तोट न आवै जप निरंकार अमृत शब्द पीवै।

सूख सहज मेरा धन सोहागा, कहो नानक मोरी पूरन आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा, आसा महला पंजवा, माथे त्रिकुटी दृष्ट क्रूर, बोले कौड़ा जिहवा की फूड, सदा भूखी पिर जाने दूर, ऐसी स्त्री एक राम अपाई, उन सब जग खाया, हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ, पाए ठगौली सब जग जोहया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीरथ पवे सब तरना, से उबरे जे

वहां पकड़ हम राखा आसा मोहल्ला पंजवा सर्व दुख जब बिसरह स्वामी इहां उहां कामना प्राणी संत तृपता से हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किस दिया तिस चितवत ना।

नाम जपत मन तन सब हरिया, कल मल दुख सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे भाई, हर गुण गाए परम गत पाई। रहाओ साध जना के पूजे पैर, मिटे अपद्र है मन ते बैर, गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वस्या हर का नाम, नानक तिसी ऊपर कुर्बान, आसा मोहल्ला पंजवा, गावले तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जां की सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है, बलिहारी तिस संत प्यारी, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है। रहाओ जां का दान नुखूटे नाही, पली भांत सब सहज समाही, जां की बख्श न मेटे कोई, मन वासाई है साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जां कै पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गही निरभउ पद पाई, सास सास सो गुण निद गाई, दूर ना होई कतहूं जाई, नदर करे ता हर हर पाई, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगे हर धन रास। आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुरपूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की सरनाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अगन बुझी।

गुरबाणी सखी आनंद गावै साचे साहिब कै मन भावै वदी वेल बहु पीढ़ी चाली धर्म कला हर बंद बहाली मन चिंदिया सत

सुनी सच्चे तिस धणी सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए पेख मस्ताक भई

तुम संग भेटिया सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे

आठ पहर गुण गाए साधु संगी है रहाव भोग है भोग अनेक गिण नावै सुनिया हर की भगत बिना मर मर रुनिया कपड़ भोग सुगंध तन मर्दन मालना बिन सिमरन तन शार सर पर चालना महा बिखम संसार बिरलै पेखिया छूटन।

हर कीर्तन आधार निश्चले हो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निदान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जियरे आसा महला पंजवा जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाई है रैन दिन सकर जोड़ हर हर त्याई है नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोए सर्व रहया परपूर सच्चा।

जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई। नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई। आसा महला पंजवां आवहो मीत इकत्तर होए। रस कास सब पुंचह अमृत नाम हर हर जपह।

ठाकर तू ही प्रभ ता केवड भागा ओहो सहेला सद सुखी सब भ्रम पौ भागा हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा करन करावन सगल बिद सो सतगुरु हमारा रहाओ दूजा नाही और को तांका पहो करिये गुर सेवा महल पाईये जग दुत्तर तरिये दृष्ट तेरी सुख पाईये मन माहे निदाना जा को तुम कृपाल पये सेवक से परवाना अमृत रस हर।

संतां की होए दासरी एहो अचारा सिखरी सगल गुणा गुणी उत्तमो भरता दूर ना पेखरी एहो मन सुंदर अपना हर नाम मजीठै रंगरी त्याग सियाण पचातुरी तू जान गोपाल है सांगरी रहाओ भरता कह सुमानिया एहो शिंगार बनाए री दूजा भाव वसारी है एहो तंबोला खाएरी गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बछाएरी आठ पहर कर जोड़ रहो तौ भेटै हर रायरी तिस ही चज शिंगार सब साई रूप अपार री साई

चितवो चितव सर्व सुख पावो आज्ञा पावो के ना पावो। एक दतार सगल है जाचक दूसर कै पह जावो। हों मांगो आनल जावो सगल शत्रपत एको ठाकुर। कौन समसर लावो रहाओ उठो बैसो रह पे ना साको। दर्शन खोज खजावो ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार। तिनको महल दुल पावो अगम अगम अगाध बोध। कीमत परे ना पावो ताकि शरण सत पुरख की। सत गुर पुरख त्यावो भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर। काट्यो बंद गरावो कहो नानक जो साध संग पायो। तो फिर जन्म ना

अर्ग पंथ सुमारी नाम दृढ़ गुरमन मह दिया मोरी तिसा बुझारी दिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत संगत में बसास हुए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक को एहो दान देहो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवनी कथा नैन दर्श पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवां महला पंजवां जिसनो तू अस्तर कर मन है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समगरी सब मिथ्या असनाहा रे मन क्या करह है हाहा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा रहाओ जैसे बस्तर देह ओढ़ाने दिन दोए चार पुराहा पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा आव गया गया पार ब्रह्म की उठ जासी मोहत चसाहा रे मन लेखे चल है लेखे बैस है लेखे लेंदा साहा सदा कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण उठाहा आसा महला पंजवा अपुष्ट बात ते भई सीधरी दूत दुष्ट सजनई अंधकार मह रतन परगासेउ मलीन बुध हसनई जो कृपा गोविंद भई सुख संपत हर नाम फल पाए सतगुरु मिली रहाओ मोहि किरपन को कोई ना जानत सगल भवन प्रगटई संग बैठनो कहीं ना पावत हुन सगल चरण सेवी आड़ आड़ को पिरत ढूंढते मन सगल त्रिशन बुझ गई एक बोल पी खवतो नाही साध संगत सीत लई एक जी गुण कवन वखाने अगम अगम अगमई दास दास दास को करियो जन नानक हर सरनई आसा महला पंजवा रे मूड़े लाहे को तू टीला टीला तोटे को बेग ताया सस्त

गंदन वहन सुनह उर जावह, नाम लैत अलकाया, निंद चिंद को बहुत अमाहयो, बूजी उल्टाया, पर तन पर तन परती निंदा, अखाद खाहे हरकाया, साच धर्म स्यो रुच नहीं आवै, सत सुनत शोहाया, दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, भगत टेक हर नाया, नानक आहे सरन प्रभ आयो, राख लाज अपनाया, आसा महला पंजवा, मिथ्या संग संग लपटाई, मोह माया कर बांधे, जह जानो सो चीत ना आवे, अहम बुद्ध भय आंदे, मन बैरागी क्यों ना अरादे, काच कोठरी माहे तू बसता, संग सगल बिखे।

कारण कोट दिन से दुख पावे है, करी मोह तरंग मान है, फिर बहुर बहुर पछतावे है। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ, पलक दृष्ट देख भूलो, आक नीम को तूमर, जैसा संग बिसियर स्यो है रे, तैसो ही एहो पर ग्रहो, बैरी कारण पाप करता, बस्त रही आमाना, छोड़ जाहे तिन ही स्यो संगी, साजन स्यो बैराना, सगल संसार एह बिद व्याप्यो, सो उबरेओ जिस गुर पूरा, कहो नानक पाव सागर तरेओ, पये पनीत शरीरा, आसा महला पंजवा, दोपदे लूक कमानो सोई तुम पेखेओ, मूड मुग्ध मुकरानी, आप कमाने कौले बांदे, फिर पाछे पछतानी, प्रभ मेरे सब विद आगे जानी, भ्रम के मूसे तू राखत परदा, पाछे जी की मानी रहाओ, जित जित लाए तित तित लागे।

हाउ तिस सेवक कह हो बलिहारी जो अपने प्रभ भावे तिसकी सोए सुनी मन हरिया तिस नानक परसन आवे आसा घर ग्यारवां महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद नटुआ भेख दिखावे बहु बिद जैसा है ओह तैसारी अनक जोन भ्रम्यो भ्रम भीतर।

मोहकम फौज हठलीरे कहो नानक तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चलीरे आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण तुन मुन जन खट बेते अवर ना

ला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमुख न मन ते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग सगल सियानपा भज पार ब्रह्म निरंकार एक साचे

भौजन लंघी है, सदा हर गुण गाओ, जन्म मरण निवारी है, दुख ना जम पुर होए, नाम निधान सोई पाए, कृपा करे प्रभ सोए, एक टेक आधार एको, एक का मन जोर, नानक जपिया मिल साध संगत, हर बिन अवर ना होर, आसा महला पंजवा, जियो मन तन प्राण प्रभ के, दिए सब रस भोग, दीन बंदप जी दाता, सरन राखण जोग, मेरे मन त्याए हर हर नाम, हलत पलत सहाए संगे, एक स्यों लिव लाओ रहाओ, वेद शास्त्र जन त्या

कहां दुख पाया, बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद हर रस, पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिए नीत, सास सास त्याग।

किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यो ज्यो राख है त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग। आप किरपाल किरपा प्रवतारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया।

प्रसाद सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पनीत संगारे जन्म पवंते नरक पड़ंते तिनके कुल उधारे कोई ना जाने कोई ना माने से प्रगट हर द्वारे कमन उपमा देओ कमन वडाई नानक खिन खिन वारे आसा महला पंजवा बावर सोए रहे रहाओ मोह कटांब बिखै रस माते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे।

गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत है।

मोहिना कारण करना तारण धरना एकै एकै सोहिना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोहिना आसा महला पंजवा हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ ना जाई ओह अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक इहो हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत नवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ होए सकारथ हृदय चरण बसाहे एहे मुक्ता एहे जुगता राख हो संत संगाहे नाम त्याग हो सहज समावो नानक हर गुण गाहे आसा महला पंजवा ठाकुर चरण सुहावे हर संतन पावे रहाओ आप गवाया सेव कमाया गुण रस रस गावे एक है आसा दर्श प्यासा आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्याव हो हृदय बसाव हो तिस बिन को नाही प्रव सरनी आईय सर्व फल पाईय सगले दुख जाही जीयन को दाता पुरख बधाता नानक घट घट आही आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम त्यावै सर्व फल पावै सो जन सुखिया हुआ राज कहावै हो।

संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै आसा महला पंजवां घर पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे पकर केस जम उठारियो तद ही घर जावे लोभ बिखिया बिखै लागे हर वित चित दुखाही।

दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लेखे ना परिया जेहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया

प्रब त्यावो ब्रह्म पीत जीत मटावो निद नाम नानक मोरै आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल का।

पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूर्ण भाग आसा महला पंजवा हरख सोग बैराग आनंदी खेल रीद खायो रहाओ खिनहु भय निरभय खिनहु खिनहु उठ तायो खिनहु रस भोगन खिनहु खिनहु तज जायो खिनहु योग ताप बहु पूजा खिनहु परमायो खिनहु कृपा साधु संग नानक।

धूड़ ना रहा, अनन उपाव कर हां, तौ निकसै सरन पैरी सखी, थेर थेर चेत थेर हां, बान ग्रहो समसर हां, अंतर

जिस मथान हां पै पावक पार परान हां निज कार तिसह थान हां हर रस रसह मान हां लाथी तिस पुखान हां नानक सहज समायो रे मना सावरी महला पंजवा हर हर हर गुणी हां जपिय सहज धुनी हां साधु रसन भनी हां।

कह नाई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साच सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, त्रे भवन सूजे आप गवावे, बाणी बूझे सच सुभावे, शब्द विचारे एक लिव तारा, नानक धन सवार नहारा, आसा महला पहला, लेख असंख लिख लिख मान, मन माने सच सुरत वखान, कथनी बदनी पढ़ पढ़ पार, लेख असंख अलेख या

जीवन मुक्त मन नाम वसाए, गुरमुख होए ता सच समाए। जिन तर साजी गगन आकाश, जिन सब थापी।

आचारी जग पंडित बिरला विचारी बिन सतगुर भेटे सब फिरे अहंकारी जग दुखिया सुखिया जन कोई।

वै दुख कोई, सोरो वै जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना।

भ्रांत सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरीजै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुर पूरा गुर मानै मन

नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचारी।

क्या लहस निदान जिसका अन तन सहज ना जाना परम पुलाना फिर पछताना गल पाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर भागे सतगुर राखे से वड भागे।

कहावह बीते बिननावै मन झूठ अनीते कहां चलुहो मन रहोहो करे गुरमुख राम नाम त्रिपतासे खोजत पावहो सहज हरे रहाउ काम क्रोध मन मोह शरीरा लभ लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नामन साच पछाणे अंतर की गत गुरमुख जाने साच शब्द बिन महल ना पछाणे निरंकार मह आकार समावे अकल कला सच साच टिकावे सो नर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाऊं गुर प्रसादी कर्म कमाऊं नामे राता हर गुण गाऊं गुर सेवा ते आप पछाता अमृत नाम वस्या सुख दाता।

खाई अहलस निर्मल हर लिव लाई। राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख सम कर नाम ना छोड़ो। आपे बख्श मलावन हारा रहाऊ कनक कामनी हेत गवारा।

सुख तिस लागे। जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त भय हर रंग। आसा महला पहला एक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने। राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी। रहाव बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार। बंधन कर्म तर्म हों किया, बंधन पोत कलात मन बिया।

साहा संचह धन जाय बिन हर भगत ना पवई थाय बंधन भेद बाद अहंकार बंधन बिन सह मोह विकार नानक राम नाम सरनाई सतगुर राखे बंध ना पाई राग आसा महला पहला अष्टपदियां।

पास एक लाख लहन बैठिया लख लहन खड़िया गरी सुहारे खांदिया मानन से जड़िया तिन गल सिलका पाइया टुटन मोत सरिया धन जोबन दोए वैरी होए जिन्नी

ब्राह्मण जिस वेख नींद ना पाई कहां सोपान तंबोली हरमा हो या शाई माई इस जर कारण कणी विगुत्ती इन जर

कोटी हूं पी वर्ज रहाए, जामीर सुनिया ताया, थान मकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कोयर रुलाया, कोई मुगल ना हुआ अंधा, किने ना परचा लाया।

चारे वणज करहो मकसूद लैहो मत पछो तावहो अवगण छोड़ो हो गुण करहो ऐसे तत् परावहो धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किरस कमावहो तां व्यापारी जानियो लाहा लै जावहो कर्म होवै सतगुर मिलै।

जाननी काट ब्रह्म लुकाना। एक तपसी बन मह तप कर है नित तीरथ वासा आप ना चीन है तामसी काहे भये उदासा। एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावे है बिन गुर शब्द ना छूट ही भ्रम आवे है जावे है। एक गिरही सेवक साधका गुरमती लागे नाम दान इशनान दृढ़ हर भगत सो जागे।

लालच दुख भारी साचो साहिब मन वसे हों मैं बिख मारी दुबदा छोड़ कवाटड़ी मूस हो गए भाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई मनमुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका जन्म है के तारा की है

सच ना पाया, क्या भविय है क्या ढूंढी है, गुर शब्द दिखाया, ममता मोह विसर्जिया, अपने घर आया, रहाऊ सच मिले सचिया।

है मन मुख पत खोई रहाउ जिन्नी ए को सेविया पूरी मत पाई आद जगाद निरंजना जन हर सरनाई साहिब मेरा एक है अवर नहीं पाई किरपा ते सुख पाया।

दास है सच नाम सुहेला आप गया सूझी पई गुर शब्दी मेला रहाउ हों मैं गर्भ गवाई है पाईए विचार साहिब सिउ मन मानिया दे साच आधार अहनस नाम संतोखिया सेवा सच साई ताको बिघन ना लागई।

जो तिस पाया सच्ची सच्ची दात देह दयाल है जिस सेवी दिन रात नाम अमोल है तू उत्तम हो नीच सेवक कांडिया नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया आसा महला पहला आवन जाना क्यों रह क्यों मेला होई जन्म मरण का दुख घणो नित सहसा दोई बिन नावे क्या जीवना हित त्रिग चतराई सतगुर साधना सेविया हर भगत ना पाई रहाउ आवन जावन तौ रह पाइए गुर पूरा राम नाम धन रास दे बिनसै भ्रम पूरा संत जना को मिल रह तन तन जस गाए आदि पुरख अपरंपरा गुरमुख हर पाए नटुए सांग बनाया बाजी संसारा खिन पल बाजी देखिए उजरत नहीं बारा हों मैं चौपड़ खेलना झूठे अहंकारा सब जग हारे सो जिने गुर शब्द विचारा ज्यों अंधले हाथ टोहण।

अधारा अंत सखाई पाया जन मुक्त द्वारा जन्म मरण दुख मेटिया जप नाम वरारी नानक नाम ना विसरे पूरा गुर तारी आसा महला तीजा अष्टपदिया घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सात वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साखा तीन मूल मत रावे तू ता सर्ब वडाणी ता के चरण जपे जन नानक बोले अमृत बाणी रहाओ ते तीस करोड़ी दास तुम्हारे रिद सिद्ध प्राण आधारी ता के रूप ना जाही लखणी।

परम पद पाई है, कथे अकथ कहानी, तू करता किया सब तेरा, क्या तू करे पनाणी, जां को नदर करह तू अपनी, साई सच समाणी, नाम तेरा सब कोई लेत है, जेती आवन जानी, जां तुद पावे ता गुरमुख बूझे, होर मनमुख फिरे आणी, चारे वेद ब्रह्मे कौ दिए, पढ़ पढ़ करे विचारी, ताका हुक्म न बूझे बपड़ा, नरक सुर्ग अवतारी, जुगह जुगह के राजे किए, गाव है कर अवतारी, दिन पी अंत न पाया ताका, क्या कर आख विचारी, तू सच्चा, तेरा किया सब साचा।

तप सार हर जीव मन वसै सब दुख वसार नहार दर साचै दिसै सचियार गुर सेवा ते त्रे पवन सोजी होए आप पछाण हर पावै सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखै उर धारे साची सोभा साच द्वारे सेवड भागी जे गुर सेवा लाए अन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उदरे कुल सबाए नानक साच कह विचार हर का नाम रखो उर तार हर भगती राते मोख द्वार आसा महला तीजा आसा आस करे सब कोई हुक्मै बूझै निराशा होई आसा विच सुते कई लोई सो जागै जागाए सोई सतगुर नाम बुझाया बिन नामै भुख न जाई नामे तृष्णा अग्न बुझै नाम मिलै तिसै रजाई रहाउ कल की

नामे ही सुख उपजै, नामे सरनाई, बिन नामे कोई ना मनिए, मनमुख पथ गुआई, जमपुर बद्दे मारिय है, बिरथा जन्म गुआई, नामे की सब सेवा करे, गुरमुख नाम बुझाई, नाम हो ही नाम मनिए, नामे वडियाई, जिसनो देवै तिस मिले, गुरमती नाम बुझाई, नानक सा

नानिवह दूजा भाऊ सुआव इहो मनुआ क्यों कर वस आवे गुर प्रसादी ठाकिया ज्ञान मती घर आवे रहाव सुहागनी आप सवारियों लाए प्रेम प्यार सतगुर कै भाणे चल दिया नामे सहज सिंगार सदा रावह फिर अपना सच्ची सेज सुपाय फिर कै प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाय ज्ञान अपार सिंगार है सुभावंती नार सा सब रहाई सुंदरी फिर कै हित प्यार सुहागनी विच रंग रखियों सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे भाई प्यार सुहागनी सिंगार बनाया गुण का गलहार प्रेम फिरमल तन लावना अंतर रतन विचार भगत रते से उत्मा जात पत शब्दे होए बिनना वै सब नीच जात है बिष्टा का कीड़ा होए हों हों कर दी सब फिरे बिन शब्द।

ठीक है। बहु विध श्रिष्ट उपाय हुक्मी कार कराईंदा, दूजा किस कही है भाई, बुझना अबुझना तुद किया, ए तेरी सिरकार, एक ना बख्शे मेल लह, एक दरगाह मार कड्डे कूड़ियार, एक तुर पवित पावन है तुद ना मेलाए, गुर सेवा ते सुख उपजै, सच्चे शब्द बुझाए, एक कुचल कुचील विखली पते, नाम हो आप खुआए, ना उन सिद्ध ना बुद्ध है, ना संजमी फिर है उतवताए, नदर करी जिस अपनी तिस नू भावनी लाए, सत संतोख एह संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए, लेखा पढ़ ना पहुंची है कत कहने अंत ना पाए, गुर ते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए, इहो मन देही सोध तू गुर शब्द वीच।

मोहल्ला तीजा अमृत जिना चखायुन रस आया सहज सुभाई सच्चा वी प्रवाहो है तिसनो तिल ना तमाई अमृत सच्चा वरसदा गुरमुखा मुख पाई मन सदा हरियावला सहजी हर गुण गाई रहाऊ मन मुख सदा

भगत निराली अल्लाह दी जापै गुर विचार नानक नाम हिरदै वसै पै भगती नाम सवार आसा मोहल्ला तीजा अनरस मह भुलाया बिन नामै दुख पाई सतगुरु पुरख ना भेट्यो जे सच्ची बूझ बुझाई ए मन मेरे बावले हर रस चख साध पाई अनरस लागा तू फिरह बिरथा जन्म गवाई रहाओ इस युग में गुरमुख निर्मली सच नाम रह लिवलाई बिन कर्मा किश पाइए नाही क्या कर कहया जाई आप पछाण है शब्द मर है मनहु तज विकार गुर सरनाई भज पए बख्शे बख्शन हार बिन नामे सुख ना पाईए ना दुख विचों जाए इहो जग माया मोहे व्यापिया दूजे भरम भुलाए दुहागनी पिर की सार ना जानही क्या कर करह श्रींगार पन दिन सदा जलदियां फिरह सेजै रवै ना पतार सुहागनी महल पाया विचों आप गवाए गुर शब्दी सिंगारियां अपनी सह लिया मलाई मरना मनहु विसारिया माया मोह गुबार मनमुख मर मर जम है पी मर है जमदर होए खुआर आप मलायन से मिले गुर शब्द विचार नानक नाम सुमाने मुख उजली तित सच्चै दरबार आसा महला पंजवा अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंच मनाए पंच रसाए पंच वसाए पंच गुआए इन बिद नगर गुठा मेरे भाई दुरत गया गुर ज्ञान दृढ़ाई रहाउ साच धर्म की कर दीनी वार हरहे मुहकम गुर

सहज सुख के सब हाट, साहा व्यापारी एकै थाट, जे जिया दन को लय ना जगात, सतगुर कर दीनी तुर की छाप, वखर नाम लद खेप चलावो, लै लाहा गुरमुख घर आवो, सतगुर साहु सिख बन जारी, पूंजी नाम लेखा साच संवारे, सो वसै इत कर जिस गुर पूरा सेव, अब चल नगरी नानक देव। असावरी महला पंजवा घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन हर स्यों लागी प्रीत, साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत, रहाव दर्शन की प्यास घणी चितवत अनक प्रकार, करो अनुग्रह पार ब्रह्म हर कृपा धार मरार, मन परदेसी आया मिलियो साध कै संग, जिस वखर कौ चाहता सो पायो नामह रंग, जेते माया रंग रस बिनस जाहे खिन माहे, भगत रते तेरे नाम स्यों सुख पुंचह सब ठाए, सब जग चल तो पेखी निहचलार को नाम, कर मित्राई साध स्यों निहचल पाव है ठाव, मीत साजन सो

चरण कमल बोहित पै लग सागर तरयो ते पेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यो नेह साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास जो तुद पावे सो पला तेरे पाने कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पीते परमानंद आसा महला पंजवा बिरहड़ी घर चौथा संता की जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रभ सिमरिया प्यारी दर्शन कौ बल जाओ जिस सिमरत दुख बीस

सुख दुख तेरी आज्ञा प्यारी दूजी नाहीं जाय। जो तू कराम है सो करी प्यारे, अवर किछ करन ना जाय। दिन रैन सब सुहावने प्यारी, जित जपिए हर नाम साई कार कमावनी प्यारी। तुर मस्तक लेख लखाई एको आप वर्तदा प्यारी, घट घट रह समाई। संसार कूपते उधर लह प्यारे, ना

जलिया जमराज के ही रू आए माया कै संगल बंद लया खखे खुंदकार साहा आलम कार खरीद जिन खर्च दिया बंधन जा कै सब जग बांधिया अवरी का नहीं हुक्म पया गगै गोए गाए जिन छोड़ी गली गोविंद गर्भ पया कड़ भांडे जिन आवी साजी चाड़न वाह तई किया कगै काल सेवक जे काले शब्द गुरु कै लाग रह बुरा भला जे सम कर जाने इन वेद साहिब रमत रह चचे चार वेद जिन साजी चारे खानी चार जुगा जुग जुग जोगी खानी भोगी पढ़िया पंडित आप थिया सच्चे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम उपाय फुलाइन आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया जजे जान मंगत जन जाचे लख चौरासी भीख पविया एको लेवे एको देवे अवर ना दूजा मैं सुनिया।

सब थाई एक वसिया मन माही तत्तै तंच करहु क्या प्राणी घड़ी के मोहत के उठ चलना जूए जन्म ना हारो अपना भाज पढ़ो तुम हर सरना ठठै ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा से जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया डड्डै डंप करहु क्या प्राणी जो किश हुआ सो सब चलना तिसै सरी वो तां सुख पावहु सर्व निरंतर राव रहया तड्डै ताहे उसारे आपे ज्यों तिस पावे तिवें करे कर कर वेखै हुक्म चिल्लाए तिस निस्तारी जां कौ नदर करी नाणै रवत रह घट अंतर हर गुण गावे सोई आपे आप मलाए करता पुनरप जन्म ना हुई तत्तै तारू भवजन होआ ताका अंत ना पाया ना तर ना तुल्हा हम बूढ़स तार ले तार नराया तत्तै थान थनंतर सोई जाका किया सब हुआ क्या परम क्या माया कही है जो तिस पावे सोई भला दद्दै दोष ना देऊ किसै दोष करमा आपणिया जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजै अवर जना तद्दै धार कला जिन छोड़ी हर चीजी जिन रंग किया तिसदा दिया सबनी लिया करमी करमी हुक्म पया नन्नै नाहा भोग नित भोगै ना दीठा ना सम्मलिया गली हों सुहागण पैणे कंत ना कबहू मैं मिलिया पप्पै पातशाह परमेश्वर वेखण कौ परपंच किया देखै बूझै सब किछ जाणै अंतर बाहर रव रहया फप्पै फाही सब जग फासा जम कै संगल बंद लया गुर प्रसादी से नर उबरे जे हर शरणागत भज पया बब्बै बाजी खेलण लागा चौपड़ कीते चार जुगा जी जंत सब सारी कीते पासा ढालने आप लगा पब्बै पाल है से फल पाव है गुर प्रसादी जिन को पौ पया मनमुख फिर है ना चेत है मूड़े लाख चौरासी फेर पया मम्मै मोह मरण मधुसूदन मरण पया तब चेतव्या काया पीतर अवरो पड़िया मम्मा अखर विसरिया यही जन्म ना होवी कद ही जे कर सच पछाण गुरमुख आखै गुरमुख बूजै गुरमुख एको जाणै रारे राव रहया सब अंतर जेते किए जनता जंत अपाई तंदै सब लाई कर्म हुआ तिन नाम लया लल्लै लाई तंदै जिन छोड़ी मीठा माया मोह किया खाना पीना सम कर सहना पाणे तां कै हुक्म पया ववै वास देओ परमेश्वर वेखण कहो जिन वेश किया वेखै चाखै सब किछ जाणै अंतर बाहर रव रहया राड़ै राड़ करह क्या प्राणी तिसह त्यावो जे अमर होवा तिसह त्यावो सच समावो ओस विटोह कुर्बान किया हाहै होर न कोई दाता जी उपाय जिन रिजक दिया हर नाम त्यावो हर

कराई सब किश जाने नानक शायर इव कहिया राग आसा महला तीजा पट्टी एक ओंकार सतगुर प्रसाद अयो अंग सब जग आया काके कंग काल भया रीरी लल्ली पाप कमाने पर अवगण गुण विसरिया मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया।

मेरा जन्म गया अनहोंदा ना उतरायो पांदा अवरा का भार तुद लया जज्जै जोत हिर लई तेरी मूड़े अंत गया पछतावेगा एक शब्द तू चीनह नाही फिर जूनी आवेगा तुद सिर लिखिया सो पढ़ पंडित अवरा नो ना सखाल बिखिया पहला फाहा पया पांदी पिछों दे गल चाटड़िया ससै संयम गयो मूड़ी एक दान तुद कथाई लया साई पुत्री जजमान की सा तेरी एत तान खादै तेरा जन्म गया मम्मै मात हिर लई तेरी मूड़े हौ मैं वड्डा रूप पया अंतर आत्मै ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज भया ककै काम क्रोध भरम्यो हो मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया पढ़ै गुण है तू बहुत पुकार है विन बूझे तू डूब मुआ तत्तै तामस जले ओहो मूड़े थत्तै थान पृष्ठ होआ कग्गै घर घर फिरहै तू मूड़े दद्दै दान ना तुद लया पप्पै पार न पवही मूड़े परपंच तू पलच रहया सच्चै आप खुआयो हो मूड़े एहो सिर तेरे लेख पया पब्बै भवजल डुब हो मूड़े माया विच गलतान पया गुर प्रसादी एको जाने एक घड़ी मह पार पया वावे वारी आईया मूड़े वास देव तुद भी सरिया ए वेला ना लह सह मूड़े फिर तू जम कै वस पया झज्जै कदे ना झूरह मूड़े सतगुर काप देस सुन तू विखा सतगुर बाजो गुर नहीं कोई न गुरे का है नाउ बुरा तद्दै तावत वर्ज रख मूड़े अंतर तेरे निदान पया गुरमुख हो वह ता हर रस पी वह जुगा जुगंतर खाहे पया गगै गोविंद चित कर मूड़े गली किनै ना पाया गुर के चरण हृदय वसाए मूड़े पिछले गुनहा सब बख्श लया हा है हर कथा बूझ तू मूड़े ता सदा सुख होई मनमुख पढ़ै तीता दुख लागै बिन सतगुर मुक्त ना हुई हरारै राम चित कर मूड़े हृदय जिनकै रव रहया गुर प्रसादी जिन्नी राम पछाता निर्गुण राम तिन्नी बूझ लहया तेरा अंत ना जाई लखिया अकथ ना जाई हर कथिया नानक जिन को

मुंद जोबन बालड़िए मेरा फिर रली आला राम तन फिर नेहो कणा रस प्रीत दयाला राम तन फिर मेला हुए स्वामी आप प्रभ कृपा करी सीजा सुहावी संग फिर कै सात सर अमृत भरी कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन अमाहो मुंद सहज सुनो नड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मन तन हर पावे प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसै तौ गुण पछाण है ता प्रभ जान है गुण है वस अवगुण नसै तुद बाज एक तिल रह ना साका कहन सुनन ना तीजे नानका प्रियो प्रियो कर पुकारी रसन रस मन पीजे सखी हो सहेलड़ी हो मेरा फिर बन जारा राम हर नामो वणन जड़िया रस मोल अपारा राम मोल अमोलो सच कर ढोलो प्रभ भावे ता मुंद भली एक संग हर कै करह रलियां औ पुकारी दर खली करन कारण समरथ श्री तर आप कारज सारे नानक नदनी तन सुहागण शब्द अब साधारे हम कर साचा सोहिलड़ा प्रभ आयड़ी मीता राम रावे रंग रातड़िया मन लियड़ा दीता राम अपना मन दिया हर वर लिया ज्यों भावे त्यों रावे तन मन फिर आगै शब्द सुभागै घर अमृत फल पावे बुद्ध पाठ ना पाईऐ बहु चतुराईऐ भाई मिले मन पाणी नानक ठाकुर मीत हमारी हम नाही लोकाणी हासा महला पहला अनहदो अनहद वाजै रुण चुन कारी राम मेरा मनो मेरा मन राता लाल प्यारी राम अन दिन राता मन बैरागी सुन मंडल घर पाया आद पुरख अपरंपर प्यारा सतगुर अलख लखाया आसन बैसन तिर नारायण तित मन राता विचारी नानक नाम रते बैरागी अनहद रुण चुन कारी तित अगम पुरे कहो कित बिद जाइए राम सच संजमो सार गुणा गुर शब्द कमाइए राम सच शब्द कमाइए निज कर जाइए पाइए गुणी निदाना तित साखा मूल पत नहीं डाली सिर सबना परधाना जप तप कर कर संजम थाकी हठ निग्रह नहीं पाइए नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए गुर सागरो रतनागर कित रतन कनेरे राम कर मजनू सप्त सरी मन निर्मल मेरे राम निर्मल जल नहाए जा प्रभ भाई पंच मिले विचारी काम क्रोध कपट बिखिया तज सच नाम उरतारी हौ मैं लोभ लहर लभ थाके पाए दीन दयाला नानक गुर समान तीर्थ नहीं कोई साचे गुर गोपाला हौ बन बनो देख रही त्रिण देख सबाया राम त्रे भवनो तुझह किया सब जगत सबाया राम तेरा सब किया तू ठिर थिया तुद समान को नाही तू दाता सब जाचक तेरे तुद बिन किस सालाही अण मंगिया दान दीजै दाते तेरी भगत भरे भंडारा राम नाम बिन मुक्त ना होई ना

आदि पुरुष अपरम्परु तारे नाम अगमय गोचर अपर अपारा पार ब्रह्म परदानो आदि जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानो कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुकट क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाने अहनस नाम ते आई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हूं मैं ममता माया संग ना जाई राम मात पित भाई सुत चतुराई संग ना संपै नारी शायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारी आदि पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच संभाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण परहर करनी सारी दर सच्चै सत्यारू आवन जावन ठाक रहाए गुरमुख तत विचारू साजन मीत सजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन परगासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन रव रहिया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मेलाया साध सभा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत रति बैरागी चूकै मोह प्यासा नानक हूं मैं मार पतीने विरले दास उदासा राग आसा महल।

ना सहो जान है मरण जीवन की सोजी होई। गुर प्रसादी एको जान है ता दूजा भाव ना होई। मन शांत आई बजी वधाई।

गर्भ लदया जावहि मन तू मत मान करह जे हौ किछ जानदा गुरमुख ने माणा हो अंतर अज्ञान हौ बुद्ध है सच शब्द मल खो हो नमाणा सतगुरु अगे मत किछ आप लखावहि अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवावहि सतगुर कै भाणे करहे कार सतगुर कै भाणे लाग रहो यूं कह नानक आप छड सुख पावह मन निमाणा होए रहो धन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया सो सहो चित आया महा आनंद सहज भया मन तन सुख पाया सो सहो चित आया मन वसाया अवगण सब वसारी जां तिस भाणा गुण प्रगट होए सतगुर आप सवारी से जन प्रवान होए जिन्नी एक नाम दिड़िया दुतिया भाउ चुकाया इयों कह नानक धन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया सो सहो चित आया एक जंत परम भुले तिन सह आप भुलाए दूजे पाए फिर हैं हम मैं कर्म कमाए तिन सह आप भुलाए कुमार।